0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti. Radio Musti.

0: Angel Musty
1: in the mix.
0: Angel Musty feels a musty
1: in the mix.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: देश में तो निकला होगा चांद, परदेश में शायद, लेकिन अभी सूरज निकलने वाला है। बस थर्सडे मॉर्निंग, 28 मई की सुबह हो चुकी है और इस वक्त ठीक 5 बजे है।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: सुबह के 5:05 हो रहे हैं. सर्दीली मौसम की कसम, सुबह सुबह उठना not possible, लेकिन उठ जाते हैं क्योंकि ड्यूटी भी है, आपका प्यार भी है, आपका साथ जो मिलता है. So let me wish you all a very good morning, my dear listeners. नीतू का प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें. ठीक ठाक है आप? सब कुछ ठीक ठाक? ऑल राइट. मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है, थर्सडे मॉर्निंग की शुरुआत, वो भी 28 मई. ओके, लास्ट थर्सडे है इस महीने की. एंड धीरे धीरे साल के बीचों बीच पहुंच जाएंगे जून महीने. अरे बाप रे बाप, टाइम इज फ्लाइंग. लेकिन हमारा और आपका साथ कभी ना छूटेगा, ये पक्का वादा रहा. सो व्हाटएवर यू माइट बी, कुछ तो मैसेजेस आ चुके हैं ऑन 5499-1294 आपके व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए. नीतू आपका इंतजार कर रही है.

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musty.
2: चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको. वेरी गुड मॉर्निंग ज्योति फ्रॉम शत्रुबिनागा साशनी रेखा सुरेखा माधव परिवार. हेज विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग धीरज आयुष विदिशा अश्विन ज्योति हरक परिवार मौदा ब्यासी स्टे ब्लेस्ड आप भी और सूरज शर्मा सजादा भाई आपके पूरे परिवार के नाम. एंड यहाँ पर हमारा प्यार भरा नमस्कार प्रणाम भी आप ही स्वीकार करें. आप है कौन, हैप्पी फर्स्ट डे स्पेशली आपके लिए मिस्टर जयशन तेम्बा जीबन ओमिरान अंगोठिया का शर्वन रामदेवा मैं भी नैन टू रेडियो मस्ती टीम. थैंक यू सो मच. द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी इज टू बी सैटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव. हाँ जी, हम लोग इतने सारे चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, हमको ये चाहिए हमको वो चाहिए, लेकिन जो हमारे पास है उसको भूल जाते हैं, नज़रअंदाज कर जाते हैं. सो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, खुशियाँ होती हैं, उनमें खुश रहना हम सीखेंगे तो लाइफ एकदम बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी. थैंक यू मिस्टर टोनी खुशबुआ से. एंड नमस्कार आपको भी, सुप्रभात. यहाँ पर बहुत सारे नाम हैं. ओके, राम भरोसे किशन जी चित्रकूट वाली दिपकत से और सभी आपके परिवार जितने भी लोग आपको जानते हैं सबको प्रणाम. अ वेरी गुड मॉर्निंग. यही अगला गाना आपके नाम है टू रेडियो मस्ती टीम. थैंक यू. और राजन मोनिका पूनम श्रेया बस आपके पूरे परिवार के नाम. अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: बस ऐसे ही साथ निभाते चलेगा इस सफर को और खूबसूरत बना रहे हैं आपका साथ जो मिल रहा है on 5 for 9, 9, 12, 9, 4.

0: and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Na hum bhul payenge na aap bhul payenge aise gaane to evergreen hote hain. 528. Thank you for your messages and aapka pyar jo milta hai subah subah har roz subah sham. Bon courage to all those going to work. Chalte chalte aapke naam gaana hai Khushnuma Kya Paju family. Good morning to you too. Premila ji kaisi hain from Plandi Papai. और प्यारे गाने आपको अच्छे लग रहे हैं तो डेफिनेटली अगला गाना जो है आपके नाम पति रंजीत सब परिवार के लिए. थ्वाबुचिक से है मिस्टर सुजी.

जीत रंगलाल, आप कहते हैं सभी रंगलाल, गोपी, मंगरू और यहाँ पर है कौन बिसेसो फैमिलीज के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। जॉगिंग के साथ साथ आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल्याणी जी कौतूहल से गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अगला गाना आपके लिए मिस्टर धनेश्वर, प्यारी पत्नी है सुनीता, संजीव, निशा, रेखा, दविद उस परिवार बॉबू से गुड मॉर्निंग आपको। नीमा जीवन फ्रॉम मौदा बेया एंड आप गानों के साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। पति विशाल, बेटे यादव, नीलेश, वीरेश हमारी टीम के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे अहेड। नमस्ते इंदिरा, रेशमा, विमल, अंजु, कृषा, केशव, नील, मायशा, तानिया, मोता, ब्लॉन्श से एज विजुअल प्यारी सी दूतिका फ्रॉम रिविया दे क्रियोल एंड रघुजाना परिवार हमारे संग जुड़े हुए हैं। तो बस जितने भी गाने चल रहे हैं प्यारे प्यारे आपके मूड सेट कर रहे हैं, इसके लिए थैंक यू।

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:33 हो रही है, गोइंग टू वर्क, रास्ते पर है, प्लीज ड्राइव केयरफुली. हाँ, एंड मौसम आपके यहाँ कैसा है? इज इट रेनी, इज इट सनी? अभी तो धूप निकली नहीं है, सूरज निकला नहीं है, लेकिन लेट्स होप कि जैसा भी हो मौसम, आपका मूड अच्छा हो, आपका दिन अच्छे से गुजरे. अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको, सलीम, प्रीतम, बशीर, पिगाली, नौशाद, मोहम्मद अली, फवाज, मुदाबकस एंड एहसान एंड सभी फैमिलीज के नाम. आपके लिए भी हुदा ही बात वालिया और रोज जागृत ननलाल, आप हो फ्रॉम क्यू पेप. सो बस जितने भी हमारे दोस्त इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जस्ट लाइक अब्दुल एंड सायरा बानू, ईद मुबारक आपको.

0: प्यार हो तो वाकई में जिंदगी कट जाती है, भले कुछ हो ना हो हमारे पास, लेकिन जब तक प्यार का साथ है आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आपका दिन कैसा रहेगा बाय द वे?
1: Your daily horoscope, RM2, Radio Musti.
0: तो चलिए शुरुआत आपके साथ।
2: एरीज मेष राशि।
0: वेल, आज आपका आत्मविश्वास और काम करने की क्षमता जो है वो दोनों चरम पर रहेंगे। फैसला आप सोच समझ कर लेंगे, लेकिन किसी के दबाव में आकर लिया गया कदम बाद में परेशानी भी दे सकता है। मन में नई कमाई या साइड इनकम का विचार चल रहा है और अच्छी बात ये है कि उसमें सफलता मिलने के भी संकेत भी मजबूत है।
2: टॉरस वृषभ राशि।
0: राइट, यहाँ पर आज आपका दिन धीरे धीरे लेकिन पक्की सफलता देने वाला रहेगा। जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें अच्छा परिणाम मिलने के योग है। बिजनेस में आगे बढ़ाने के लिए नए विचार मन में आएंगे। परिवार में किसी सदस्य के रिश्ते या फिर विवाह की बात तय होने से घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा और हालांकि संतान

0: थोड़ा जो जिद्दी हैं या फिर मनमौजी व्यवहार आपको चिंता में डाल सकती है, तो आप अपना और बच्चों का भी ख्याल रखें।
1: जेमिनी मिथुन राशि,
0: किस्मत अचानक आपका साथ देती नजर आएगी। लंबे समय से अटका हुआ या फिर डूबा हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। बिजनेस में जो योजनाएं परेशानियां बन रही थी, वे अब धीरे धीरे सही दिशा पकड़ रही है। किसी सहयोगी की बात दिल को चुभ सकती है, दैट्स व्हाई प्रतिक्रिया देने से पहले हजार बार सोचे। बड़ों की सलाह पारिवारिक बिजनेस में आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगी।
1: कैंसर कर्क राशि,
0: वेल आज प्रॉपर्टी और निवेश से जुड़े मामलों में किस्मत आपका साथ देंगी। नई संपत्ति खरीदने का विचार सफल हो सकता है। हालांकि अनजान लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए निजी बात जो है किसी से साझा करने से बचें। परिवार का कोई नाराज सदस्य आज आपके प्यार और समझदारी से मान सकता है।
1: लियो सिंह राशि,
0: आज हर कदम सोच समझकर उठाने की जरूरत है। पुरानी गलतियों से मिली सीख आज आपको सही दिशा दिखाएंगी। आपके निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी, लोग आपसे उम्मीदें लगाएंगे। ये यहाँ पर आपके लिए भी कहा जाता है कि एक साथ कई जिम्मेदारियां आने से भागदौड़ बढ़ेगी, लेकिन आप उन्हें अच्छे से संभाल भी लेंगे।
1: वर्गो कन्या राशि,
0: आज का दिन थोड़ा तनाव भरा रह सकता है। माताजी या फिर पिताजी की सेहत को लेकर चिंता बढ़ सकती है। बिजनेस में किसी नुकसान या रुकावट के कारण भागदौड़ ज्यादा रहेगी। किसी अजनबी पर आंख मूंदकर भरोसा करना मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। हालांकि कानूनी मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं और फैसला आपके पक्ष में भी जा सकता है।
1: लिब्रा तुला राशि,
0: राइट, आज आपका मन मौज मस्ती और खुशियों में डूबा रहेगा। संतान की तरक्की देखकर गर्व महसूस होगा। लंबे समय से अटका कोई काम आज पूरा हो सकता है, जिससे राहत मिलेगी। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में लापरवाही बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना नुकसान हो ही सकता है। एंड यहाँ पर बिजनेस में छोटी मोटी गड़बड़ियां मन को परेशान कर सकती हैं, लेकिन धैर्य से सब कुछ संभल जाएगा।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज रिश्तों में अपनापन और मजबूती बढ़ेगी। भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा और किसी पुराने मुद्दे का समाधान मिल बैठकर निकल सकता है। परिवार के साथ बिताया गया समय आपके मन को सुकून देगा। नौकरी से जुड़ा कोई काम आपको यात्रा पर ले जा सकता है और आपकी सकारात्मक सोच और समझदारी आपको लगातार आगे बढ़ने में मदद करेगी।
1: सजिटेरियस धनुराशि,
0: आज आपका मान सम्मान और लोकप्रियता दोनों बढ़ने वाले हैं। कार्यक्षेत्र में अच्छे काम के लिए आपको सराहना या पुरस्कार मिल सकता है। नए लोगों से दोस्ती होगी, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, मन बेहद प्रसन्न रहेगा और बच्चों के साथ बिताया गया समय आपको भीतर से खुश कर देगा।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज सेहत को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। काम के पीछे भागते भागते आप खुद की देखभाल भूल सकते हैं, इसलिए थोड़ा संतुलन जरूरी है। संतान के लिए नया वाहन या कोई बड़ी चीज खरीदने का विचार बन रहा है, बस खान पान में लापरवाही से बचें, अपने वाणी में मधुरता बनाए रखें।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज धन को लेकर समझदारी दिखाने की जरूरत है। कोई व्यक्ति आपको गलत निवेश या जोखिम भरी योजना में फंसाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए सोच समझकर ही पैसा लगाएं। संतान के करियर को या हो पढ़ाई, उसके लिए बाहर जाना पड़ सकता है और जीवन साथी को नई नौकरी या अच्छा अवसर मिलने से घर में खुशी का माहौल रहेगा। माधवी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन घर में होने के संकेत भी मिल रहे हैं, जिससे वातावरण सकारात्मक पॉजिटिव बना रहेगा।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: फाइनली आज आपकी समझदारी और शांत स्वभाव हर काम को आसान बना देंगे। घर में किसी नए मेहमान के आगमन से खुशी और रौनक बढ़ सकती है। सरकारी मामलों से जुड़ी कोई चिंता खत्म होने के संकेत है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह को लेकर दोस्तों या करीबी लोगों से चर्चा हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को जल्दबाजी से बचना होगा, बॉस की बातों पर खास ध्यान देना होगा, वरना आज आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। सो डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, हैव अ नाइस डे अहेड एंड बेस्ट ऑफ लक।

बस थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार। वेरी गुड मॉर्निंग आपको मिस्टर शाम। इस समय आप स्विट्जरलैंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू इंदिरा और सिनी और आपके पूरे परिवार के नाम। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तू चंदा जी गिव्य दिजोंगी से हैं, बेटे यश आशले बहुदर्शिनी

0: RM2 Radio Mystic.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: 6 बजे है। सुनते हैं सुबह का पहला फ्लैश न्यूज आपसे विधिमान नमस्कार।
6: नमस्कार नीतूषा, सभी सुनने वालों को नमस्कार। संवैधानिक विशेषज्ञ परवेज दुखी का कहना है कि मॉरिशस में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज प्रणाली अपनाने से राजनीतिक संप्रदायवाद कम हो सकता है। उनके अनुसार इस मंडल में सांसद, मेयर, जिला परिषद अध्यक्ष और रोड्रिक्स के चीफ कमिश्नर शामिल हो सकते हैं। उन्होंने फ्रांस की तरह दो चरणों वाले चुनाव का भी समर्थन किया ताकि राष्ट्रपति को 50% से अधिक मत मिल सके। वहीं उन्होंने देश की राजनीतिक और चुनावी परिपक्वता को अब भी बड़ी चुनौती बताया। MFDC के CEO केविन गति का उद्देश्य मॉरिशस को हिंद महासागर का एक प्रमुख सिनेमैटिक हब बनाना है। इसी लक्ष्य के तहत उन्होंने मई में आयोजित विश्व सिनेमा के प्रतिष्ठित आयोजनों में भाग लेकर अफ्रीका, अमेरिका, भारत और यूरोप के कई फिल्म पेशेवरों और निवेशकों से रणनीतिक बैठकें की। ये चर्चाएं अभी भी जारी हैं और जून में कई स्टेक होल्डर्स के मॉरिशस आने की उम्मीद है। देश के जलाशयों में पानी का स्तर चिंता का विषय बना हुआ है। 25 मई तक कुल जलभराव लगभग 76% दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% से अधिक कम है। कम बारिश के कारण कई जलाशयों में जलस्तर घटा है। स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों ने पानी की आपूर्ति बनाए रखने हेतु कई कदम उठाए हैं। समाज सुरक्षा मंत्री अशोक सुभोन ने लाभार्थियों की फाइलों के डिजिटलाइजेशन को मंत्रालय की सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। रोजहिल कार्यालय में शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 18 महीनों में लगभग 10.5 मिलियन दस्तावेज डिजिटल किए जाएंगे ताकि प्रशासनिक प्रक्रियाएं तेज और अधिक प्रभावी बन सकें। आज 10 ज़िलहिज्जा को मॉरिशस का मुस्लिम कौम ईद उल अदा मना रहा है। ये रोज़ हसरत इब्राहिम की सुन्नत के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है। आज का दिन रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के साथ गुजारा जाता है। और विदेश में अमरीकी सेना ने ईरान पर नए हमले किए हैं, जिसमें रणनीतिक बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया है। और आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। मस्करिंस के दक्षिण से दूर एक जोरदार एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह ऊंचाइयों पर कुछ छींटे पड़ने के बाद दिन के दौरान आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 23 से 25, तटवर्ती इलाकों पर 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज रात बादल घिरे रहेंगे और पूर्व, दक्षिण तथा सेंट्रल प्लेटों पर रह रहकर बारिश होगी। देश के ऊंचे इलाकों पर कोहरे भी छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 17 से 19, अन्य इलाकों पर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण के समुद्र में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। आज सुबह 6:36 पर सूर्योदय और शाम 5:38 पर सूरज ढल जाएगा। तो मौसम के हाल के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपसे मुलाकात होगी 6:30, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
7: Rise and shine. Start fresh. Stay

है नींद थी आपकी खुल गई है 6:09 वेलकम बैक एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग प्यार भरा नमस्कार प्रणाम वंस अगेन इट्स योर रेडियो मस्टी राइज एंड शाइन ऑफ कोर्स नीतू आपके साथ और थोड़ी देर तक वंस अगेन बोंको हार्ट टू ऑल दोस गोइंग टू वर्क हाँ ऑलरेडी रास्ते पर हैं प्लीज ड्राइव सेफली ड्राइव केयरफुली एंड किसी के नाम कोई खास पैगाम यहाँ पर तो अब द विशेज बहुत सारे आ रहे हैं तो वेदिता जब आएंगे तो स्पेशल जो होता है सेगमेंट बबदेल के लिए वो आप नाम सिलेक्ट करेगी डेफिनेटली यहाँ पर थैंक यू सो मच मिस्टर सुया एंड बेटा है विकी बहु कीर्ति बेटी श्वेता दामाद रोशन गोइंग टू वर्क बोकुहाज छोटे बच्चे हैरी थी सोनाक्षी अवनी वंश स्कूल जा रहे हैं एंड आप है सुया बिहारी कुंगुमा से अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको ललित अंजीत फैमिली और राम तेरी गंगा मेली वाला गाना आपको अच्छा लगा मिस्टर टोनी थैंक यू सो मच आपने गुनगुनाया हाँ थैंक यू नेक्स्ट गाना आपके लिए चलाते हैं यहाँ पर है कौन वेल रिधि कहती है प्लीज नीतू अगला गाना मेरे सिस्टर्स के नाम आप है श्यामा एंड रितु नीतू के साथ रितु जुड़ी हुई है थैंक यू सो मच चलिए आपका नाम जोड़ देते हैं बदवक विदेशी एनी गाना आपके नाम एंड तो अनुषा

0: RM2.
1: Radio Musti feels a musti.
2: दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, ये तो हमने भी माना. वरुणा, गुड मॉर्निंग माय डियर. A very good morning to you too, Hema, Parushi, Parithi, Nishika, Yanesh, and all the world, all over the world, जहाँ पर रेडियो मस्ती सुने जा रही हैं. क्या बात है. थैंक यू सो मच अमृता फ्रॉम पुएतो साबल, पूरे परिवार के नाम. साथ में वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू. यहाँ पर हैं कौन? ओ, आप ही हो प्यारी सी कविता. आपके मैसेजेस आ रही हैं कुमार एंड देवी चंद फैमिली. एंड नेक्स्ट गाना आपके लिए भी, मिस्टर संजय, आपकी वाइफ देवी के लिए. एंड नेक्स्ट गाना किन के नाम चलाते हैं? आपको ईद मुबारक. जितने भी हमारे मुसलमान भाई बहन हैं सबको ईद मुबारक. नेक्स्ट गाना किन के नाम चलाऊं? वेल, पूजा बिसेसा अपने पति अक्षय से कहना चाहती हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ. हाउ रोमांटिक.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musty.
2: 6:22 6:30 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन. उसके बाद इशारा तो आपको मिल ही गया होगा, आपको बता दिया कि प्यारी सी वेदित आपके साथ जुड़ जाएंगी. अभी के लिए गुड मॉर्निंग आपको दोषिका पति रवि श्वेतवेशा एंड आपके नाम खास तौर से बीना गंगा पूरी परिवार फ्रॉम मोताबा. हैप्पी 90th बर्थडे टू लवली ग्रांडमा एरामा पोलिगादु ऑफ तयाक देव सकुन रविश प्रीशा लवशा डियर वंस की तरफ से ढेर सारा प्यार. एंड यहाँ पर है कौन, मैं देखती हूँ काफी मैसेजेस हैं. पति विशाल काम पर हैं, वो कुगाश टू यू एंड हैव अ लवली जर्नी एंड ड्राइविंग फ्रॉम गुडलैंड्स टू फ्लाक. वाइफ माधवी की तरफ से आपको बेस्ट विशेस, वो कुगाश एंड प्लीज ड्राइव सेफली.

फिट एंड फाइन रहना है, मूड को एकदम टकाटक बनाना है, डांस कीजिएगा, बैठे ही बैठे ही सही, यू कैन डू एनीथिंग। थैंक यू छाया सुकुई सेवास्टिपुर से एंड अली राजा है साथ देने के लिए, थैंक यू पति सुविराज, बेटा श्रेयस, बेटी शेवी और हमारे लिए थैंक यू सो मच। आपके पूरे परिवार के नाम हमें नाइस डे अहेड।

0: नमस्कार, गुरुवार 28 मई 2026 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। संवैधानिक विशेषज्ञ परवेज दुखी का कहना है कि मॉरिशस में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज प्रणाली अपनाने से राजनीतिक संप्रदायवाद कम हो सकता है। उन्होंने फ्रांस की तरह दो चरणों वाले चुनाव का समर्थन किया ताकि राष्ट्रपति को 50% से अधिक मत मिल सके। वहीं उन्होंने देश की राजनीतिक और चुनावी परिपक्वता को अब भी बड़ी चुनौती बताया। MFDC के CEO केविन गति का उद्देश्य मॉरिशस को हिंद महासागर का एक प्रमुख सिनेमैटिक हब बनाना है। इसी लक्ष्य के तहत उन्होंने मई में आयोजित विश्व सिनेमा के प्रतिष्ठित आयोजनों में भाग लेकर अफ्रीका, अमेरिका, भारत और यूरोप के कई फिल्म पेशेवरों और निवेशकों से रणनीतिक बैठकें की। देश के जलाशयों में पानी का स्तर चिंता का विषय बना हुआ है। 25 मई तक कुल जल भराव लगभग 76% दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% से अधिक कम है। कम बारिश के कारण कई जलाशयों में जल स्तर घटा है। स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों ने पानी की आपूर्ति बनाए रखने हेतु कई कदम उठाए हैं। समाज सुरक्षा मंत्री ने लाभार्थियों की फाइलों को डिजिटलाइजेशन को मंत्रालय की सेवाओं के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। रोज हिल कार्यालय में शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 18 महीनों में लगभग 10.5 मिलियन दस्तावेज डिजिटल किए जाएंगे ताकि प्रशासनिक प्रक्रियाएं तेज और अधिक प्रभावी बन सकें। आज 10 ज़िलहिज्जा को मॉरिशस का मुस्लिम कौम ईद उल अदा मना रहा है। ये रोज़ हसरत इब्राहिम की सुन्नत के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है। और विदेश में अमरीकी सेना ने ईरान पर नए हमले किए हैं, जिसमें रणनीतिक बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया है। पेश है अब समाचार विस्तार से। संवैधानिक विशेषज्ञ परवेज दुखी का मानना है कि एक निर्वाचक मंडल यानी एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा गणतंत्र के राष्ट्रपति का चुनाव मॉरिशस में राजनीतिक संप्रदायवाद को कम करने का एक अच्छा तरीका होगा। उनका विचार है कि राष्ट्राध्यक्ष सर्वोच्च नैतिक अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की जांच करने के लिए एक संवैधानिक सुधार आयोग का गठन किया जाएगा। परवेज दुखी के अनुसार इस इलेक्टोरल कॉलेज के मुख्य रूप से 66 सांसद, 5 मेयर, जिला परिषदों के अध्यक्ष और रोड्रिक्स के चीफ कमिश्नर शामिल हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार इन निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच अपना चुनाव प्रचार करेंगे। इसके साथ ही ये संवैधानिक विशेषज्ञ फ्रांस की तरह दो चरणों वाले चुनाव की भी वकालत करते हैं ताकि राष्ट्रपति 50% से अधिक मतों के साथ चुना जा सके। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि देश की राजनीतिक और चुनावी परिपक्वता अभी भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। परवेज दुखी को सुनते हैं, जिनसे बात की राजमिला सीतामणि ने। विवरण सुमेरा अकबर अली का है।
1: चुनौती मौजूद है, अध्यक्ष की नामजदगी जरूरी है ताकि उसूलों पर अमल किया जाए। कम्युनलिज्म के खिलाफ संघर्ष करने का दूसरा तरीका है। मॉरिशस में ये एक बड़ी सच्चाई है जो देश का हिस्सा है। आमतौर पर मतदाता सबसे पहले चुनाव में खड़े उम्मीदवारों का धर्म मजहब देखते हैं जो वो चुनेगा। राष्ट्रपति चुनाव से इस पहलू को खारिज किया जा सकेगा। अक्सर इस मुद्दे के सिलसिले में बेस्ट लूजर की बात भी होती है, जो असल में एक समस्या नहीं है।
2: Dans un second temps, même pas nécessairement dans un premier temps, mais vers l'élection au suffrage universel.

0: celle directe, là, l'électeur n'est pas pour un choix. Les Poubizins choisirent le meilleur pour le pays.
1: Moses Film Development Corporation, MFDC, के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर केविन गति का लक्ष्य मॉरिशस को हिंद महासागर में एक सिनेमाई हब के रूप में स्थापित करना है. इसे हासिल करने के लिए उनकी एक रणनीति विदेशी प्रोडक्शन कंपनियों के बीच फिल्म शूटिंग के लिए एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में मॉरिशस की दृश्यता को मजबूत करना है. केविन गति ने 13 से 21 मई तक विश्व सिनेमा के इन बेहद महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित आयोजनों में भाग लिया. MFDC के CEO ने इस अंतर्राष्ट्रीय मंच का लाभ उठाते हुए अफ्रीका, अमेरिका, भारत और यूरोप से आए निर्माताओं, निर्देशकों, कास्टिंग निर्देशकों, पटकथा लेखकों और निवेशकों के साथ कई रणनीतिक बैठकें की. शुरू की गई बातचीत फिलहाल अभी भी जारी है और जून के महीने में कई स्टेक होल्डरों के मॉरिशस आने की उम्मीद है. केविन गति को सुनते हैं.
2: C'était une mission extrêmement positive, marquée par des rencontres stratégiques.
3: रणनीतिक मुलाकातों की बदौलत ये मिशन बहुत ही सकारात्मक रहा. निर्माताओं, निर्देशकों, वितरण संगठनों और निवेशकों के अलावा अफ्रीकी, बर्तानी, अमेरिकी, फ्रांसीसी, भारतीय और चीनी प्रतिनिधियों ने मॉरिशस में न सिर्फ फिल्मों की शूटिंग करने में दिलचस्पी जाहिर की बल्कि सीरियल को फिल्माने का भी ख्याल आम किया जो लंबी अवधि के लिए हो. एक सिनेमाटोग्राफी कैंपस परियोजना और एक सिनेमा स्टूडियो बनाने पर भी अहम बातचीत की जा रही है.
1: और केविन गति ने बताया कि उन्हें कला और संस्कृति मंत्रालय के साथ साथ फ्रांस में मॉरिशस के राजदूत जोएल होल्ट का भी सहयोग मिला है. वो कैन फिल्म फेस्टिवल के 2027 के संस्करण में मॉरिशस का एक ध्वज स्थापित करने की भी इच्छा रखते हैं. देश के जलाशयों में पानी का स्टॉक लगातार चिंता का विषय बना हुआ है. 25 मई तक कुल जल भराव का स्तर लगभग 76% था जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये लगभग 89% था जो कि 10% से अधिक की गिरावट को दर्शाता है. कुछ जलाशयों में जल स्तर 2025 की तुलना में काफ़ी कम दर्ज किया गया है जो मुख्य रूप से पिछले कुछ महीनों में हुई कम बारिश का परिणाम है. इस स्थिति को देखते हुए अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि उन्होंने स्टॉक को सुरक्षित रखने और पूरे देश में पीने के पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए पहले ही कई कदम उठाए हैं. पानी के उपचार और वितरण को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न इलाकों में लगभग 50 कंटेनराइज प्रेशर फिल्टर्स तैनात किए गए हैं. इसके अलावा नई ड्रिलिंग खोदने के लिए टेंडर भी जारी की गई है. नीतूषा जी हाँ.
4: मई के इस महीने में मोहवाकवा की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. द्वीप का प्रमुख जलाशय केवल 48% तक ही भरा हुआ है. इस वर्ष भी गर्मी में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई. फरवरी जिसे आमतौर पर सबसे अधिक वर्षा वाले महीनों में गिना जाता है उसमें भी सामान्य वर्षा का केवल 27% ही दर्ज किया गया. इस स्थिति का प्रभाव केवल जलाशयों पर ही नहीं बल्कि नदियों पर भी पड़ रहा है. जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण पिछले कुछ वर्षों में गर्मी की बारिश लगातार कम होती जा रही है.
5: Durant 5 dernières années, nous avons gagné 2 ou 3 l'événement de déficit pluviométrique. Actuellement, nous avons un stock total de à peu près de 66% de maximum. Mais l'année dernière, nous avons fini affiche un stockage de à peu près 80-85%. Nous avons un déficit de à peu près 22% quand nous comparons à l'année dernière. Et quand nous comparons à l'année 2024, quand là, nous avons gagné bon l'appli durant la période de janvier, février, mars, nous avons un déficit de plus que 50%.
4: हर साल दोहराई जाने वाली स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को राष्ट्रीय जल नीति में बदलाव लाना पड़ा है. मुख्य उद्देश्य है जल आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाना.
5: Sa réservoir qui nous est rempli durant le mois de janvier, février, mars, c'est ça même ça stock là nous servit durant le mois d'octobre, novembre et décembre. Mais cette fois-ci, nous pas fin réussi rempli ça. Ça veut dire ça stock qui nous est actuellement là nous besoin faire durer le plus longtemps possible.
4: प्रस्तावित समाधानों में नदियों में कंटेनराइज्ड प्रेशर फिल्टर्स की स्थापना भी शामिल है. अब तक लगभग 50 इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं.
5: Ça, il peut aider beaucoup à pallier ban manque dans ban région très déficitaire. Côte, par exemple, si il y a ban forage, c'est-à-dire ban borehole qui peut chuter, bien à partir de là, ce qui peut arriver, c'est que je peux pallier ça ban manque là à travers ban containerized pressure filters. Il y a un ban appel d'offres qui nous finit lancé pour ça, pour faire ban forage, tout ça, pour développer ban

0: forage davantage dans différentes parties de l'île, mais surtout nous pouvons donner priorité dans une région un peu sec.
1: जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक अन्य प्रस्ताव मिनी डैम्स का निर्माण। ऊर्जा मंत्रालय वाटर डिसैलिनेशन की संभावना पर भी अध्ययन कर रहा है। इस संबंध में एक टेंडर जारी किया जा चुका है।
2: सामाजिक सुरक्षा मंत्री अशोक सुभोन ने इसे अपने मंत्रालय की सेवाओं के आधुनिकीकरण में एक बड़ा मोड़ बताया है। बुधवार को रोज हिल कार्यालय में लाभार्थियों की फाइलों के डिजिटलाइजेशन की औपचारिक शुरुआत की गई। इस सुधार का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार करना और उपयोगकर्ताओं के लिए काम को आसान बनाना है। वर्तमान में 3 लाख से अधिक लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा सेवाओं पर निर्भर हैं और हर महीने लगभग 8 लाख भुगतान किए जाते हैं। अशोक सुभों के अनुसार सूचनाओं तक तेजी से पहुंच और फाइलों के अधिक कुशल प्रबंधन को सक्षम बनाने के लिए अगले 18 महीनों में लगभग 10.5 मिलियन दस्तावेजों को डिजिटल किया जाएगा। अशिता रखू।
3: कागजी फाइलों के ढेर से डिजिटल व्यवस्था की ओर रोजिल कार्यालय में सामाजिक सुरक्षा विभाग ने लाभार्थियों की फाइलों के डिजिटलाइजेशन की शुरुआत के साथ एक ऐसी सुधार प्रक्रिया शुरू की है जिसे अधिकारी ऐतिहासिक बता रहे हैं। समाज सुरक्षा मंत्रालय को डिजिटलाइज करने की परियोजना 2013 में ही शुरू हो चुकी थी, पर कुछ हुआ नहीं था। इसलिए अब 10.5 मिलियन फाइल्स को स्कैन किया जा रहा है। इस पहल को एक ऐसे तंत्र के समाधान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जो बड़ी संख्या में आवेदनों और भरे हुए आर्काइव्स की चुनौती का सामना कर रहा है। समाज सुरक्षा मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय है जहाँ इन फाइलों में लोगों का जीवन है। इस सरकार की बड़ी परियोजनाओं में ये एक है और इसे सफल बनाने के लिए काफी साधन उपलब्ध कराए गए हैं। आज सामाजिक सुरक्षा सेवाओं पर 3 लाख से अधिक लाभार्थी निर्भर हैं, जिनके लिए हर महीने लगभग 8 लाख रुपए चुकाए जाते हैं। हम एक ऐसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं जहां लाभार्थी के प्रमाण पत्र के माध्यम से ही उसके फाइल तक पहुँच पाएंगे। ई सोशल सिक्योरिटी परियोजना के तहत चलाया जा रहा ये अभियान बेसिक ओल्ड एज पेंशन लाभार्थियों की फाइलों से शुरू हुआ है। कुल मिलाकर लगभग 1.5 करोड़ फाइलों को करीब 18 महीनों में डिजिटलाइज किया जाना है। इस पहले चरण के लिए 16 अधिकारियों को तैनात किया गया है। हालांकि आवश्यकता बढ़कर लगभग 100 कर्मचारियों तक पहुंच सकती है। वहीं कागजी फाइलों को 10 वर्षों तक सुरक्षित रखा जाएगा, जिसके बाद उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा।
2: मंत्रिमंडल द्वारा पहले ही मंजूरी मिलने के बाद उपभोक्ता संरक्षण के लिए नया कानून अब आकार ले रहा है। उत्पादों की सुरक्षा पर कल एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें व्यापार और उपभोक्ता सुरक्षा मंत्रालय के अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों के साथ साथ कुमिजा और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कुणाल गुजी, अशिता रखू।
3: उपभोक्ता संरक्षण के लिए नए कानून के तहत परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले जिस पहलू पर विचार किया गया वह है उत्पादों की सुरक्षा। कॉर्पोरेट जोखिम या मुनाफे के अनुपालन पर ध्यान देना बहुत आसान है, लेकिन हमें कभी भी वास्तविक मानवीय कीमत को नहीं भूलना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन प्रमाण पत्र उत्पाद की मजबूती जैसे प्रदर्शन मानदंड तथा बाजार निगरानी तंत्र, ये सभी पहलू जिम्मेदार व्यापार सुनिश्चित करने के लिए नए कानून में शामिल किए जाएंगे। उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आयातित उत्पाद मॉरिशस पहुंचने से पहले सुरक्षित और मानकों के अनुरूप हों।
4: प्रोडक्ट सेफ्टी इज अ शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी।
3: उत्पाद सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है। प्रस्तावित महत्वपूर्ण उपायों में असुरक्षित वस्तुओं को वापस मंगवाने से जुड़े कड़े प्रावधान, अनुचित अनुबंध शर्तों पर रोक और कानून लागू करने की क्षमताओं को और मजबूत बनाना शामिल है। आसिम के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों के बीच प्रोटोकॉल को भी स्पष्ट करना आवश्यक है। मॉरिशस उपभोक्ता संघ की एक सिफारिश ये है कि उपभोक्ताओं के लिए सहायता तंत्र स्थापित किया जाए जिसमें कानूनी सहायता भी शामिल हो।
5: Au-delà de la sécurité, la possibilité que je pague une satisfaction, qu'ils soient capables de challenger.

0: सुरक्षा से अधिक असंतुष्टि होने पर आपको अदालत तक जाने का अवसर मिलेगा। उत्पाद के साथ साथ सेवा पर भी बल डाला जा रहा है। उचित लेबलिंग का होना अनिवार्य है। उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय ऐसे कानूनी ढांचे पर विचार कर रहा है जो ऑनलाइन बिक्री, भ्रामक विज्ञापनों और ग्रीन वॉशिंग जैसी मौजूदा समस्याओं के खिलाफ उपभोक्ताओं के अधिकारों को और मजबूत बनाए।
1: आज 10 ज़िलहिज्जा को मॉरिशस का मुस्लिम कौम ईद उल अदा मना रहा है। ये रोज़ हसरत इब्राहिम की सुन्नत के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है। सुबह ईद की नमाज के बाद बेशतर मुसलमान सुन्नत इब्राहिम अदा करते हैं और आज का दिन रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के साथ गुजारा जाता है। सभी मुसलमानों को ईद मुबारक हो। ज़्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में सुमेरा अकबर अली के साथ।
2: 10 ज़िलहिज्जा की तारीख मजहबी इस्लाम में बड़ी अहमियत की हामिल है। खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रखने वाला वाक़या ज़माने हाज़िर तक सभी मुसलमानों की ज़िंदगी में संग मील की हैसियत रखता है। रब के फरमान पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे हज़रत इस्माइल को क़ुरबान करने का हुक्म मिला था। बग़ैर कोई सवाल करते हुए, बग़ैर कोई शिकवा करते हुए खलीलुल्लाह ने ये फरमान कबूल किया था और बदले में अल्लाह ताला उनसे इतना खुश हुआ कि उसने उनका बेटा बख्श दिया। इसीलिए सुन्नत इब्राहिम अदा की जाती हैं। क्यूपिप की अनवरे मदीना मस्जिद से मौलाना मोहम्मद राशिद खान बताते हैं।
3: अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। तो आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और सुन्नत इब्राहिमी अदा कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत ज़ैद इब्ने अरकम वो रवायत करते हैं कि सहाबे किराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर हम ये सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे तो हमें इसमें क्या सवाब मिलेगा? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, हर बाल के बदले में तुम्हें नेकियां मिलेंगी और ये नेकियां तुम्हें जन्नत में ले जाने का जरिया बनेंगी।
2: आज पूरे मॉरिशस में ईद उल अधा के मौके पर दिन का आगाज मस्जिदों में बाजमात नमाज से किया जाता है। सुन्नत इब्राहिम के अलावा आज के रोज रिश्तेदारों के साथ अच्छा वक्त भी गुजारा जाता है। तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक हो।
1: मॉरिशस इस शुक्रवार तक पोर्ट लुई में हिंद महासागर में गिर मिट्टिया मजदूरों की विरासत पर एक इलाकाई कार्यशाला की मेजबानी कर रहा है। कला और संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का विषय है हिंद महासागर में गिर मिट्टिया श्रम की विरासत पर एक संवाद। ये एक ऐसी बैठक है जो इलाके के कई देशों और क्षेत्रों के विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, संस्थागत प्रतिनिधियों और विरासत पेशेवरों को एक साथ लाती है। इसका उद्देश्य भावी पीढ़ियों के लिए इस इतिहास को बेहतर ढंग से संरक्षित करने और प्रसारित करने के लिए एक इलाकाई कार्य योजना तैयार करना है। थिंक रिक्रूटमेंट ने मॉरिशस के रिक्रूटमेंट सेक्टर में अपनी उपस्थिति के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक समारोह के साथ अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई। इस कार्यक्रम में ने कंपनी के सफर, उसकी उपलब्धियों और साथ ही रोजगार बाजार में उसके योगदान को याद करने का अवसर प्रदान किया। इसके अधिकारियों ने इस क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए समर्थन, मार्गदर्शन और नवाचार के अपने मिशन को जारी रखने की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। फिंक रिक्रूटमेंट के संस्थापक और निदेशक अनिल लोकी को सुनते हैं, जिनसे बात की निर्मा नारायण रेड्डी ने। विवरण अदिति अवतार का है।
4: थिंक रिक्रूटमेंट का मॉरिशस के नौकरी क्षेत्र पर एक बहुत बड़ा प्रभाव है, खासकर होटल और पर्यटन सेक्टर पर। हमने नए डिग्री होल्डरों और पेशेवरों के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संभावनाएं प्रस्तावित की हैं। हमारी एजेंसी ने स्थानीय क्षमताओं और अंतर्राष्ट्रीय मांगों के बीच अंतर को कम करने में अहम योगदान दिया है।
5: La compétence locale et exigence mondiale.
1: और विदेश में यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने पुष्टि की है कि अमरीकी सेना ने ईरानी मुल्क की 4 आत्मघाती ड्रोन्स को मार गिराया है जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास खतरा पैदा कर रहे थे। इसके साथ ही अमरीकी बलों ने एक रणनीतिक बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में एक ईरानी ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर भी हमला किया जो 5वां ड्रोन लॉन्च करने ही वाला था। ईरानी मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार बंदर अब्बास के पूर्व में विस्फोटों की आवाज़ें सुनी गईं।

और आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। मस्करिंस्की दक्षिण से दूर एक जोरदार एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आज सुबह ऊंचाइयों पर कुछ छींटे पड़ने के बाद दिन के दौरान आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 23 से 25, अन्य इलाकों पर 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज रात बादल घिरे रहेंगे और पूर्व दक्षिण तथा सेंट्रल प्लेटो पर बारिश होगी। ऊंचे इलाकों पर कोहरा भी छाया रहेगा। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 17 से 19, अन्य इलाकों पर 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण के समुद्र में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। सूर्योदय 6:36 पर और आज शाम 5:38 पर सूरज ढल जाएगा।

0: मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम कविश को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

निजेशुक समाचार सुनिए। फ्रांस में 75 साल के 75 years old के श्री महेश दुकारन, जो पहले मुसलमो कुंजू प्रेंदे पपाए रहते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे आज दिन के 1:30 बजे फ्रांस से उठाकर जों शोकोल दे विल्टानस की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30। La chapelle ardente de Moura Petite Rivière met 64 salle qui 64 years old qui shrimati umavati talu pedaishi nam budhan aur jumita nam se zyada jani jati thi ki mrityu ho gayi hain. Ve kahol alian vakwa rehti thi. Unki arthi aaj subah 9:30 baje La chapelle ardente de Moura Petite Rivière se uthakar balon sulfurineux number 5 ki shmshan bhumi di jai jayegi. Cremation today at 9:30. नंबर 127 बाउंड्री रोड सेंट पैट्रिक कैट्रोबोन में 66 साल के 66 years old के श्री सिवलाल सिबालक, जो सिलाल नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 9:30 बजे उनके बेटे ऋषि सिबालक के घर नंबर 127 बाउंड्री रोड सेंट पैट्रिक कैट्रोबोन से उठाकर गांधी पालमा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30। आर्यमंदिर रोड पिछड़ आफ्रे में 77 साल की 77 years old की श्रीमती कुसमती रमेसर, जो खुम खुमवा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे आज सुबह 10 बजे उनके घर आर्यमंदिर रोड पिछड़ आफ्रे से उठाकर मोमास्काल पिछड़ आफ्रे की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। रॉयल रोड नोवेल फ्रांस में 83 साल के 83 years old के श्री रदाशुर फुलमुन, जो प्रेम नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे आज दिन के 1:30 बजे उनके बेटे रमेश फुलमुन के घर रॉयल रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर महाराजानी रोजबेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30। ईटू जिना स्ट्रीट लाफेम बॉम्बू में 64 साल की 64 years old की श्रीमती शांताबाई बिहारी, पैदायशी नाम लक्सिमो और जुमीला नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे आज दिन के 1 बजे उनके घर ईटू जिना स्ट्रीट लाफेम बॉम्बू से उठाकर मोताए सेंट पियर बॉम्बू की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। इकूप बोरिक्लेन मोसेलमो सेंट आंद्रे में 82 साल की 82 years old की श्रीमती शांति ब्रज मोहन, पैदायशी नाम सालिक और जो साधु मिनुजिए नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके बेटे अमरदश ब्रज मोहन के घर इकूप बोरिक्लेन मोसेलमो सेंट आंद्रे से उठाकर बॉमो शांति रोज की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। नॉर्दर्न बाउंड्री कैट्रोबोन में 40 साल के 40 years old के श्री प्रीत गुरुदयाल, जो आकाश नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 10 बजे उनकी माँ मावती गुरुदयाल के घर नॉर्दर्न बाउंड्री कैट्रोबोन से उठाकर बेतो कुदगाद की शमशान

उम्मीद दी जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 10 एम। आलिशा कबोंबू में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड के श्री सादेव जीतन, जो कॉल नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके भाई सुचिल जीतन के घर आलिशा कबोंबू

0: में 57 साल के 57 years old के श्री मनोज कुमार मिदिदीन जो कुको नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके भाई रितेश मिदिदीन के घर मिदिदीन लेन सेंट पॉल फिनिक्स से उठाकर एलिब्रियन कास्टेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। शिवाला रोड रुनियो मोहल पिचराफ्री में 70 साल के 70 years old के श्री धनेश्वर राम कलावन जो देवानंद नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर शिवाला रोड रुनियो मोहल पिचराफ्री से उठाकर बेलमों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। नंबर 12 सराफिन लिसालिन पोटलुई में 83 साल की 83 years old की श्रीमती लक्ष्मी देवी वीरापेन जो आका देवी नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दोपहर 3 बजे उनके घर नंबर 12 सराफिन लिसालिन पोटलुई से उठाकर लिसालिन की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। काना वेन्यू कथकोको में 80 साल के 80 years old के श्री हरि प्रसाद रामहित जो महाराष्ट्र नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके बेटे रामहित जयदत्त के घर काना अवेन्यू कथकोको से उठाकर बुशों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। ब्रांच रोड न्यू ग्रोव में 64 साल की 64 years old की श्रीमती गोइंदा मानाइडू रामासोमी पैदाइशी नाम रोसामाल और जो देवी रामासोमी नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उनके पति श्री रोमी रामासोमी के घर ब्रांच रोड न्यू कोव से उठाकर प्लेन मानियों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1:30। पदाहत लेन फ्लाक में 71 साल की 71 years old की श्रीमती सरस्वती अपादू पैदाइशी नाम तिचौ की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे नीरज अपादू के घर पदारत लेन फ्लाक से उठाकर बुशों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। नंबर 23 एवेन्यू पाव कत्र बोन में 67 साल के 67 years old के श्री राज सुखदेव जो राज नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे रिक्षिवंश सुखदेव के घर नंबर 23 एवेन्यू पाव कट्रोबोन से उठाकर फिनिक्स की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। मस्की रोड रोजबेल में 47 साल के 47 years old के श्री कृष्णा उचित जो बीबी नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 10 बजे उनके भाई विक्रम उचित के घर मस्की रोड रोजबेल से उठाकर मारीजानी रोजबेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। डॉक्टर मनीलाल फोबाक रोड फोंजुसाक में 76 साल के 76 years old के श्री नारायणन जमनुदू जो नारायण नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 12 बजे उनके घर डॉक्टर मनीलाल फोबाक रोड फोंजुसाक से उठाकर त्रियोले की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट नून। बैंक रोड गुडलैंड्स में 87 साल की 87 years old की श्रीमती मनित्यामन विरासु पैदाइशी नाम एंकुत्सामी और जो रंभा नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके घर बैंक रोड गुडलैंड से उठाकर बेलमो की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। सोलफेरिनो नंबर 2 वाकुआ में 77 साल के 77 years old के श्री माधो राधा जो छोटे नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर सुल्फेरिनो नंबर 2 वाकवा से उठाकर बालों सुल्फेरिनो नंबर 5 के शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: Welcome to RM2
2: Radio Musti.
3: Radio Musti.
2: North, South,
3: 103.5.
2: East, West,
3: 96.4.
2: Center,
3: 99.4.
1: RM2
3: Radio Musti.
1: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Musti.
1: Feel the Musti. Feel the Musti.
4: घड़ी मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 7 बजे हैं।

0: भाई बचपन में हमने भी ये गाने बड़े गाए हैं और ये साउंड तो सबको पता है, धुमता ना ना ना ना धुमता ना ना ना, याद आया कुछ?
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: थर्सडे 28th of May, जी बिल्कुल, ये महीना भी धीरे धीरे करके हमें ठाठ बाय बाय करता हुआ निकल रहा है। सुबह के 7:04 हुए हैं और हाँ देखा, मैं भी डर गई कि ये महीना तो खत्म हो रहा है। हाँ संडे तक है, कहता है संडे तक हूँ, वीकेंड मना के जाऊँगा, लेकिन फिर भी

0: जाते जाते कुछ हसीन पल देकर जाऊंगा। तो यहाँ पर हम आपके पलों को हसीन बनाने के लिए आ गए हैं लेकर मॉर्निंग बीट और रेडियो मस्ती। मैं हूँ वेदिता, साथ रहूंगी आपके 9 बजे तक। सो मेक श्योर आप मेरे साथ जुड़े रहे। जानती हूँ घर का काम काज, आंटीज जो हैं अभी इधर उधर नाश्ता बना रही हैं, टिफिन तैयार करिए, भागते हुए इनका टाइम निकलता है। अंकल जी आपको मैं देख रही हूँ, थक तो नहीं गए? नहीं ना, चलो जोश देती हूँ मैं आपको हमारे गीतों के साथ। अभी यहाँ पर धूमता ना ना ना तो हो गया, तो चिन चिन चू कर ले थोड़ा।
1: Morning beat.
2: Oh God, one more remix.
1: A good beat for your morning show.
3: RM2, Radio Musti in the mix.

ऑलराइट, झल्ला वल्ला तो हो गया, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो गाना है ये किस फिल्म से लिया गया है? अगर मुझे सही जवाब दे दिया तो आपको मौका मिलेगा जीतने का वाउचर वर्थ 1000 रुपीज, हेल्थ ऑफ माइंड स्पिरिचुअल मसाज ऑफर्ड बाय एमजे इवेंट्स ऑफ मैन, जहां पर आप ज्यादा डिटेल्स के लिए 5767734 पे कॉल कर सकते हैं। गिफ्ट वाउचर वर्थ 1000 रुपीज हेल्थ ऑफ माइंड स्पिरिचुअल मसाज के लिए। जल्दी से बताइए गाना किस फिल्म से लिया गया है।

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: एंड यस माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए एक बहुत ही आसान सा सवाल हम लेकर आए थे। गाना बजाया, बोला फिल्म का नाम बता दो, सबको पता है कि ये फिल्म है इश्क़ज़ादे। क्या बात है, सही जवाब तो सबने दिया, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो लकी ड्रॉ करना पड़ेगा। यहां पर एक नाम यहां पे निकालना पड़ेगा और चलिए देखते हैं यहां पर कौन है जिन्होंने दिया।

0: है हमें सही जवाब। तो यहाँ पर हमने जैसे आपसे कहा था कि यू प्ले विद एमबीसी एंड विन अ गिफ्ट वाउचर ऑफ 1,000 रुपीज हेल्थ ऑफ माइंड स्पिरिचुअल मसाज ऑफर्ड बाय एमजे इवेंट्स ऑफ मैन। एंड यहाँ पर सही जवाब देकर विनर बनी है मधुशी राम राद फ्रॉम गुडलैंड्स। कंग्रेचुलेशंस, आपको ये वाउचर मिल रहा है और आपको ये वाउचर बाय पोस्ट भेज दिया जाएगा। और हमारी जो प्रोडक्शन असिस्टेंट है वो हमें इशारा करिए कि डोंट वरी, मैं कॉल करके बता दूंगी। चलो ठीक है, वो आपको बता देंगे सारा डिटेल्स, लेकिन वेट करना पड़ेगा, ये पोस्ट द्वारा ही आएगा। अब अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो यू कैन कॉल ऑन 5767734। सो आपको मिल रहा है गिफ्ट वाउचर वर्थ 1,000 रुपीज हेल्थ माइंड स्पिरिचुअल मसाज ऑफर्ड बाय एमजे इवेंट्स ऑफ मैन।
1: RM2 रेडियो मस्ती,
2: हिट म्यूजिक ओनली।
3: रेडियो मस्ती फील्स अ मस्ती।
4: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

0: un petit madame chez là. Et Formelaine, nous gagnons beaucoup plus.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musty.
3: चलो इट्स टाइम टू वेलकम मैडम शेला जो खाली हाथ नहीं आती हमारे लिए क्या लेकर आती हैं भाई यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यस वी आर प्लेइंग विद फॉर्मलेट और आपको मिल सकता है एक स्पेशल फॉर्मलेट गिफ्ट हैम्पर और जिसमें है आपको मिल सकता है फॉर्मलेट हॉट चॉकलेट फॉर्मलेट फैमिली सीरियल फॉर्मलेट मिल्क पाउडर और एक एक्सक्लूसिव मग जी हाँ ये वो ट्रीट है जो आप अपने फैमिली के साथ इंजॉय कर सकती हैं चीयर्स या चलिए अभी क्या है ना कि अभी मौका मिलेगा आपको क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सवाल सवाल क्या हाँ सवाल मैं पूछूंगी लेकिन जवाब तो हमारे भाई साहब आपको बता देंगे थोड़ी देर में आपको बस चूज करना है जितने लोगों ने ध्यान से नहीं सुना फिर से सुनो और मुझे बताओ अभी मैं आपके लिए एक प्रोमो चलाऊंगी उसमें उसका हिंदी अनुवाद ये है कि इसमें आपको मुझे 3 टैगलाइन जो है वो आपको नोट करना पड़ेगा और मुझे कॉल करना पड़ेगा 4028035 पर कत्सों दो कत्सों मैथ खान सैक पर जहाँ पर वो कहते हैं और ज़्यादा आसान और ज़्यादा तैयारी और ज़्यादा स्वादिष्ट तो यहाँ पर आपको फॉर्मलाइन की तरफ से मिल सकता है ये गिफ्ट हैम्पर लेकिन वो 3 टैगलाइन जो है आपको मुझे बताने हैं तो ध्यान से सुनिए फिर मुझे कॉल कीजिए 4028035 पर
4: L'habitude qui jamais pousse en zé, mon tea time avec Formland.
0: Ah ben oui, madame Sheila, ou toujours bien smart.
4: Et comme au son du travail, une appli réconfortant qui retrouve la famille autour d'une bonne préparation avec Formland.
0: Mmh, où fais-moi faire?
4: Astérix Formland Hot Chocolate, la vie encore plus tamam. Encore plus simple.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: इसीलिए तो कहती हूँ मासी जी, गली गली में ढूंढोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, रेडियो सुनोगे तो यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट मिलेगा आपको। तो चलिए, हमने पूछा था आपसे, तीन टैगलाइन आपको मुझे बताना है, हमने आपके लिए प्रोमो भी चलाया और यहाँ पर चलिए देखते हैं हमारे साथ कौन है। हेलो, गुड मॉर्निंग।
3: हेलो,
2: गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग,
2: हाँ जी बताइए आपका नाम।
3: मैं हूँ सुनीता।
2: कहाँ से बोल रही हैं?
3: त्वाबुचिक से।
2: त्वाबुचिक 3 ओली?
3: नहीं, तो अभी चिक यूनियन वेल से।
2: अच्छा, यूनियन वेल।
3: यस,
2: ठीक है जी। और बताइए, आपने हमारा प्रोमो ठीक से सुना?
3: हाँ।
2: मदम शैला ने आसानी से आपको सब एक्सप्लेन कर दिया, बताइए अब। आपने क्या सीखा मदम शैला से, आपने क्या सीखा बताइए?
3: आप एक फॉर्म लाइन लावी, प्लीज तमाम, प्लीज पासिल, प्लीज सैप, प्लीज प्रिपरेशन ए, प्लीज गोमा।
2: हाँ जी, आपने अपना भी एक टैगलाइन ऐड कर दिया, बहुत अच्छी बात। लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और मैं कहूँगी कॉन्ग्रेचुलेशंस अभी फॉर्मलेट के साथ। देर इज सो मच फन, देर इज सो मच मोर। यहाँ पर अभी आपको मौका मिलेगा एंजॉय करने का फॉर्मलेट मिल्क, फैमिली सीरियल और हॉट चॉकलेट, और इसके साथ साथ आपको मग भी मिल रहा है। ये गुडी बैग है और इसे आपको अपने आईडी कार्ड के साथ आकर MBC कलेक्ट करना पड़ेगा। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जीता है ये गिफ्ट हैम्पर एंड अपनी फैमिली के साथ।

0: साथ एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली को ट्रीट कीजिएगा और मदम शेला को मत भूलिएगा, ठीक है
1: जी? बिल्कुल,
0: थैंक यू, और मुझे भी मत भूलिएगा।
1: आपको शुभ दिन,
0: शुभ दिन, बाय बाय
1: बाय।
2: Comme dit Madame Sheila, il faut blend, nous gagnons beaucoup plus.
3: Morning Beat. A good beat for your morning show. James.
4: RM2, Radio Musty, in the mix.
0: और चलिए जो लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं अभी आज, या तो फिर जिनका बर्थडे आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, डोंट फॉरगेट लोरो हाइपर मार्केट की तरफ से एक वाउचर लेकर हम आए हैं, जल्दी से उनका नाम और उनका फोन नंबर हमें भेजें।

0: Every sport pack and DSTV English Plus add-on at only 500 rupees per month for 6 months, then 900 rupees per month. Contractual period for 24 months plus current month. Offer subject to conditions, valid in Mauritius, VAT included. More info on Canapi stores and till shops and canapi.com.
1: RM2
2: Radio Musti.
1: A good beat for your morning show. Come on. RM2
2: Radio Musti.
3: चलिए जी, यहाँ पर कोई है, इनसे भी बात कर लेते हैं, देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं। और जैसा हमने कहा था कि आज का दिन किसी के लिए बहुत खास स्पेशल हो सकता है। चलो लाइन मिलाया, लाइन मिल गई, अब देखते हैं। हेलो
4: हेलो, नमस्कार
3: नमस्कार, मिस्टर कविराज
4: जी।
3: मिस्टर कविराज, आपके वाइफ ने हमसे एक लहंगा खरीदवाया है, लिया है, तो उन्होंने कहा पहले आप, हेलो
4: जी जी जी,
3: तो उन्होंने कहा कि एक लहंगा है जो उनको बहुत पसंद है हमारे शॉप में।
4: ओके,
3: तो आप वो 1 लाख का लहंगा उनके लिए खरीदना चाहेंगे?
4: 1 लाख का?
3: हाँ, 1 लाख।
4: ओके, मज़े स्पेशल है तो खरीदना पड़ेगा।
3: आपने पकड़ लिया, झूठ मत बोलो। गुड मॉर्निंग कविराज जी, नमस्कार, कैसे हैं?
4: आपकी आवाज इतनी पॉपुलर है।
3: बाप रे, लगता है आवाज बदलनी पड़ेगी मुझे, आवाज बदलनी पड़ेगी। कोई बात नहीं मिस्टर कविराज, सुनिए।

0: from Radio Masti.
1: मुझे तो लगा कि आपने पहचान लिया और आप कहेंगे विदिता जी आप लहंगा खुद ही रख लो, मैं आपके लिए खरीद देता हूँ फिर मैं फंस जाती. लेकिन हैप्पी बर्थडे टू यू. आपकी वाइफ वंदना ने एक्चुअली ये सरप्राइज के लिए हमें मैसेज भेजा था. सो आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. आज का दिन क्या प्लान क्या है आज आपका?
2: थैंक यू. अब अभी काम पर जा रहे हैं तो फिर शाम को अभी प्रिया या
1: बर्थडे है. बर्थडे आज तो घर पे ही आप
2: वीकेंड को रिजर्व करेंगे.
1: क्या
2: स्पेशल होगा तो
1: टू
2: इन वन सेलिब्रेशन होगा.
1: क्या बात है, लाइन की डबल धमाका होगा.
2: जी जी.
1: अच्छा ठीक है, मुझे उन्होंने बताया. आप रहते कहाँ हो?
2: हम टैगोर रोड लाल माटी रहते हैं.
1: अच्छा लाल माटी रहते हैं, ठीक है आ जाएंगे. नहीं ठीक है. सो आपको यहाँ पर मिल रहा है लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से एक वाउचर जो आपको एमबीसी कलेक्ट करने आना है सुबह 9 से 3:30 बजे के बीच अपने आईडी कार्ड के साथ. अदरवाइज मेरी जो प्रोडक्शन असिस्टेंट है वो आपको कॉल करके सारी डिटेल्स दे देंगी. आपके पास आज और कल का टाइम है, आप आकर अपना जो वाउचर है कलेक्ट कर सकते हैं. नहीं तो हमारी पूरे रेडियो मस्ती टीम की तरफ से आई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, बहुत सारा प्यार एंड खुश रहिए और ऐसे रेडियो मस्ती सुनते रहिए. थैंक यू.
2: थैंक यू. थैंक यू फॉर मेकिंग इट स्पेशल फॉर मी.
1: अरे ऑलवेज हमारा काम. थैंक यू.
2: वेरी स्पेशल थैंक टू माय लवली वाइफ. शी थॉट ऑफ मी अर्ली मॉर्निंग इवन दो शी हैज ऑलरेडी लेफ्ट फॉर वर्क वेरी अर्ली.
1: शाम को मिलिएगा उनसे एक जादू की झप्पी और एक प्यारी सी पप्पी देके कहिएगा थैंक यू. थैंक यू जी. बाय बाय. हैव अ गुड डे. बाय.
2: बाय बाय.
3: A good beat for your morning show. Come on. Morning Beat. RM2.
4: Radio Musty. Musty.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आपको बताएं कि यहाँ पर हम पीछे नहीं हटते, हम सबके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। चलो, कई बार हम सवाल पूछते हैं आपसे, आप जवाब नहीं दे पाते हो, या कभी बार आपके पास जवाब होता है, आप गाड़ी में ड्राइव कर रहे होते हो तो मौका मिस कर देते हैं। ये एक मौका है जो आपको पूरा दिन मिलता है। यस, MBC प्ले 1.0 ये जो नया वर्जन है, इसे आपको डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है, और जब आपको मैसेज आता है MBC OTT का, उसका स्क्रीनशॉट करके आप 5491294 व्हाट्सएप पे जरूर भेजिएगा। क्या मिलेगा आपको, चलिए जानते हैं, क्योंकि 29 को होने वाला है हमारा लकी ड्रॉ। और यहां पर हेलीकॉप्टर में बैठकर दो लोग सैर करेंगे, और ज्यादा डिटेल्स
3: à l'occasion lancement MBC Play, préparez-vous pour décoller. MBC, en collaboration avec Mauritius Helicopter Limited, peut offrir à la sens des grands gagnants pour un pot d'étiquette Saken pour un hélicoptère Joyride exceptionnel dans Région CIDES, l'île Maurice. Pour participer, download l'application MBC Play et crée un compte. Depuis les 18 jusqu'à les 28 mai, reste à l'écoute ban radio MBC. Chaque jour, ban animateur radio pour inviter ban auditeur à voyer un screenshot de message confirmation qu'ils ont fini recevoir par SMS après qu'ils ont créé un compte MBC Play. Tous les jours, un participant peut sélectionner en direct pour répondre à une question. Si vous donnez une bonne réponse ou vous qualifiez parmi les finalistes et que vous pouvez dans la chance, participez dans le grand final le 29 mai. MBC Play avec vous partout. Pour plus d'informations, téléphone l'eau 400D 8000. Conditions applicables.
0: RM2
1: Radio Musti.
3: National Women Entrepreneur Council organise 3 expos ventes à l'occasion Fête des Mères, les 28, 29 et 30 mai à Victoria Urban Terminal pour lui, depuis 8h matin jusqu'à 5h30 tantôt. Les 29 et 30 mai à Piazza, à côté Food Court Tribeca, depuis 10h matin jusqu'à 8h soir. Et les 29

0: Place taxi, flac. Depuis 9h grand matin jusqu'à 5h30 tantôt. Bonne femme entrepreneur pour vendre ce produit local et que nous invite à venir découvrir le savoir-faire mauricien. Entrée gratis. Stay tuned. L'opaz Facebook NWEC Mauritius.
1: RM2 Radio Musti.
2: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसा
3: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो, द फ्लो एक्सपर्ट।
4: Sports news, latest updates.
2: Sports news.
1: Radio Musti in the mix.
0: मैं जानती हूँ सभी इंतजार कर रहे हैं कि अरविंद कब आएंगे, कब आएंगे। मैं तो सोच रही मेरे करण अर्जुन भी साथ में आएंगे। चलो कोई बात नहीं, इनका वेलकम करते हैं। जानते हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड में क्या चल रहा है। गुड मॉर्निंग अरविंद।
5: गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स, द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। विला के बाद अब पैलेस में भी यूरोपियन ग्लोरी। क्रिस्टल पैलेस के लिए पहली यूरोपियन ट्रॉफी। कॉन्फ्रेंस लीग के फाइनल में क्रिस्टल पैलेस ने 1-0 से रायो वालेकानो को हराया। सेकंड हाफ में जॉन फिलिप मातेता का गोल। बॉस ओलिवर ग्लासनर के लिए इससे बेहतर फेयरवेल नहीं हो सकता था। उसके साथ पैलेस ने FA कप, कम्युनिटी शील्ड और कॉन्फ्रेंस लीग जीता। इस जीत से क्रिस्टल पैलेस अगले सीजन यूरोपा लीग में खेलेगा। कॉन्फ्रेंस लीग क्रिस्टल पैलेस के नाम, यूरोपा लीग विला के नाम। सबसे कीमती यूरोपियन ट्रॉफी यूरोपियन चैंपियंस लीग, जिसमें आर्सेनल इंग्लैंड के लिए हैट्रिक पूरा करने आया है। फाइनल इस शनिवार को है 8 बजे। इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच में कल जमैका ने इंडिया को 2-0 से हराया। आज इजिप्ट का मुकाबला फुटबॉल यूनियन ऑफ रशिया से है। रिपब्लिक आयरलैंड खेलेगा कतर के खिलाफ। ट्रांसफर न्यूज, न्यूकासल यूनाइटेड का एंटोनी गोर्डन जा रहा है बार्सिलोना में। डील 70 मिलियन के करीब है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। वर्ल्ड कप में जाने से पहले गोर्डन बार्सिलोना का खिलाड़ी हो जाएगा। क्रिस्टल पैलेस के कॉन्फ्रेंस लीग जीतने में एडम वॉल्टन का लाजवाब परफॉर्मेंस रहा। उसी के शॉट पर गेंद रिबाउंड होकर मातेता के पास आया। टोमास टुरेल ने वॉल्टन को इंग्लैंड के स्क्वाड में नहीं रखा। इसको लेकर टोमास टुरेल के सिलेक्शन पर प्रश्न उठ रहे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड की पहली साइनिंग बहुत जल्द, अटलांटा के ब्राजीलियन मिडफील्डर एडेसन के साथ समझौता लगभग तय हो गया है, फाइनल हो गया है। कैसेमिरो का हमवतन एडेसन उसके स्थान पर आ रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के और दो मिडफील्ड टारगेट हैं, ब्राइटन का कॉलुस बालेबा और वेस्टहैम का मैथ्यूस फर्नांडेज। एलियट एंडरसन के लिए अब मैनचेस्टर यूनाइटेड रेस में नहीं है। सिटी ज्यादा पैसा देकर उसे साइन करने वाला है। लिवरपूल का डिफेंडर, स्कॉटलैंड का कप्तान एंडी रॉबर्टसन को साइन करने के लिए टोटनहम हॉटस्पर सबसे आगे है। टेनिस, फ्रेंच ओपन का पहला झटका वर्ल्ड नंबर 2 एलेना रिबाकीना सेकंड राउंड में हार गई लुलिया इस्तारोदुबसेवा के खिलाफ। कल इगा श्वातेक, वितोलिना, जोकोविच, बेरेव, फिर डेमिनो, सियेरा, कास्पर रूड, बेंसिच, रुब्लेव जीत पाए। आज यानिक सिनर का मुकाबला सेरुंडोलो से है। सबालेंका खेलेगी जाकेरो के खिलाफ। कोको गोफ वर्सेस शेरिफ। क्रिकेट, IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने फिर से अपना जलवा दिखाया। केवल 15 साल का है वैभव, पर बैटिंग का

0: अच्छा बन गया है। कल सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ टीनेज सेंसेशन वैभव ने केवल 29 गेंदों में 93 रन की बौछार की, 29 बॉल्स 93 रन्स। इसमें 12 छक्के 12 सिक्सर्स रहे उसकी इनिंग्स में। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंग्स को भी नहीं छोड़ा 3 लगातार छक्के मार के, पर क्रिस गेल के एक रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया फास्टेस्ट आईपीएल सेंचुरी का, पर आईपीएल में सबसे ज्यादा सिक्सर का रिकॉर्ड उसने अपने नाम किया। वैभव सूर्यवंशी के इस शानदार परफॉर्मेंस के बल पर राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। अब राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा फाइनल में जाने के लिए, जहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इंतजार कर रहा है। सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें, क्रिस्टल पैलेस जीत गया यूरोप में कॉन्फ्रेंस लीग, अगले सीजन यूरोपा लीग में होगा। और बेबी बॉस वैभव सूर्यवंशी का कमाल राजस्थान रॉयल्स के लिए, ये वैभव सूर्यवंशी कमाल कर रहा है, लाजवाब लड़का, लाजवाब बिहार का बंदा वैभव सूर्यवंशी, क्रिकेट का राजकुमार। हैव अ वंडरफुल टाइम लिस्टिंग रेडियो मस्ती, टेक केयर, बाय बाय।
1: थैंक यू सो मच अरविंद, आपसे वैसे थोड़ी देर में मिलेंगे हम वर्ल्ड कप स्पेशल के लिए और शाम को भी, तो मिलते हैं और थैंक यू सो मच।
2: दिस मैगजीन वाज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
3: मॉर्निंग बीट चेंज RM2, Radio Musti, in the mix.

0: के यहाँ पर जहाँ भोजपुरी में समाचार सुने जा संवैधानिक विशेषज्ञ परवेज दुखी बोले लन की मोशस में राष्ट्रपति के चुनाव खातिर इलेक्टोरल कॉलेज प्रणाली अपनाए से राजनीतिक संप्रदायवाद कमती हो सकेला। उनका अनुसार ई मंडल में सांसद मेयर जिला परिषद अध्यक्ष और रोड्रिक्स की चीफ कमिश्नर शामिल हो सकी। वो फ्रांस नियन दू चरण होला चुनाव के भी समर्थन करेलन ताकि राष्ट्रपति के 50% से जस्ती मत मिले सकी। वहीं वो देश के राजनीतिक और चुनावी परिपक्वता के अब भी बड़का चुनौती बतैलन। शब्द हमर सोच से आगे निकल गल रहल यानी हम अपन भावना में बह के उ बोल दिली जे हमर इरादा में नहीं रहल। संसद में मंगल के सांसद जुआना बेहौशे संगे होल तीखा बहस के बाद श्रम मंत्री रिजाउद्दीन फेसबुक पर ई बात बोलन। संसदीय प्रश्नकाल के दौरान एफएमपी के सदस्य मंत्री के मां के देखभाल खातिर रखल गल एगो बांग्लादेशी महिला काम करवा के मामला उठैलन और वो इस संकेत दिले रहलन कि वो कथित तौर पर ही अवैध रूप से बंधक बना के रखल गल रहल। रिजाउद्दीन ई आरोप के सिरे से खारिज कर देवल गल और वो आपा खोते हुए विशेष रूप से बोलन मुपेन और जिसों कोलों। आज फजीर के प्रकाशित अपन संदेश में मंत्री अपन माँ पर होल हमला के जिक्र करलन जो उनका अनुसार घिनौना रहल बकीर कर बावजूद उ कोलों शब्द के इस्तेमाल करे परी खेद व्यक्त करलन। याद दिलावर दे जाला की संसदीय कार्य के दौरान स्पीकर व्यवस्था बनायलन जकर बाद रिजाउद्दीन अपन कहल होल शब्द के वापस ले ली रहलन। एमएफडीसी के सीईओ की विंगति के उद्देश्य मॉरिशस के हिंद महासागर के गो प्रमुख सिनेमैटिक हब बनाए के है। इसी लक्ष्य के तहत मई में आयोजित विश्व सिनेमा के प्रतिष्ठित आयोजन में भाग लेके अफ्रीका अमेरिका भारत और यूरोप के कई फिल्म पेशेवर और निवेशक से रणनीतिक बैठक करलन। देश के जलाशय में पानी के स्तर चिंता के विषय बनल बाटे। 25 मई ले कुल जल भराव लगभग 76% दर्ज करल गल बा जे पिछला बरिस की तुलना में 10% से जस्ती कमती बाटे। स्थिति से निपटाए खातिर अधिकारी लोग पानी के आपूर्ति बनाए रखे हेतु कईन कदम उठावत हवन सब। समाज सुरक्षा मंत्री लाभार्थी लोग के फाइल के डिजिटलाइजेशन के मंत्रालय की सेवा के आधुनिकीकरण की दिशा में एगो बड़का कदम बतैलन। रोजहिल कार्यालय में शुरू करल गल ई परियोजना के तहत आवत 18 महीना में लगभग 10.5 मिलियन दस्तावेज डिजिटल करल जाए। आज 10 जिल हिजा के मॉरिशस के मुसलमान कौम ईद उल अदा मनावत हवन स ई रोज हसरत इब्राहिम के सुन्नत के हवाले से बड़का अहमियत के हामिल है। आज के दिन रिश्तेदार और करीबी दोस्त संगे गुजारल जाला। और दूसर देश के खबर में अमरीकी सेना ईरान पर ही नवा हमला कर ले बाटे जिमे रणनीतिक बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में एगो सैन्य ठिकाना के निशाना बनावल कर बाटे। देश विदेश के खबर संगे भोजपुरी में समाचार समाप्त भल अपन ध्यान खातिर धन्यवाद नमस्ते।
1: Morning beat.
2: Oh God, one more remix.
1: A good beat for your morning show.
3: RM2 Radio Musti in the mix.

0: इस भीड़ भाड़ से निकल के ठेला ठेली से निकल कर आपको कहीं आना है तो वो है आपका रेडियो मस्ती.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musty.
0: यहाँ तो सिर्फ आपको मौके मिलते हैं इनाम जीतने का, खुश होने का, और यहाँ पर कोई आपको ठेला ठेली करने की ज़रूरत नहीं है. बस हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे प्रोग्राम सुनने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर मौका मिले आपको पार्टिसिपेट करने का हमारे क्विज़ में. और बस यहाँ पर गेम्स भी हमारे पास बहुत सारे गेम्स आज लेकर आए हैं, तो पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा एंड खुश रहिए. और क्या चाहिए हमें. 8:09 हुए हैं, जाना नीचे होगी आज मौसम कैसा रहेगा. कौन, अरे विधि माए ना, चलिए मिलते हैं.
1: It's the weather broadcast with winners.
3: On est tous winners.
4: मस्करिंस्की दक्षिण से दूर एक जोरदार एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहर बह रही है. अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह ऊंचाइयों पर कुछ छींटे पड़ने के बाद दिन के दौरान आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा. अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 23 से 25, तटवर्ती इलाकों पर 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. आज रात बादल घिरे रहेंगे और पूर्व दक्षिण तथा सेंट्रल प्लेटों पर रह रहकर बारिश होगी. देश के ऊंचे इलाकों पर कोहरे भी छाए रहेंगे. न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 17 से 19

0: avant tout défi de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
1: दोस्तों, कभी किसी को इतना भी मत तोड़ो कि उसके दर्द का असर ही खत्म हो जाए, क्योंकि जब इंसान हद से ज्यादा टूट जाता है ना, तो फिर ना आंसू निकलते हैं ना शिकायतें, सिर्फ एक खामोशी रह जाती है जो अंदर ही अंदर सब कुछ खा जाती है। जिंदगी में हर इंसान इमोशंस के साथ जीता है। जब कोई अपना बार बार इग्नोर करे, इंसल्ट करे या दिल दुखाए, तो एक वक्त के बाद इंसान रिएक्ट करना छोड़ देता है। और जब किसी को दर्द महसूस होना कम हो जाए, समझ लेना वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा टूट चुका है। इसलिए रिश्तों में लफ्ज़ों का ध्यान रखो, क्योंकि जख्म चाकू से कम और बातों से ज़्यादा लगने लगता है। और जब आपकी बातें किसी को इतना दर्द दें, तो याद रखिएगा, जो इंसान हर बात पे चुप रहने लगे, ज़रूरी नहीं है कि वो कमज़ोर हो, क्योंकि तूफान से पहले एक खामोशी छा जाती है, वो इंसान चुप होता है। लेकिन जब ये तूफान आता है ना, आपके कही हुई बातें, आपने जितना भी दुख दर्द उनको दिया, उन सब का बदला वो तूफान एक न एक दिन जरूर लेता है।
0: Avant de défi, de long shift, de premier pas qui capable sens tous audi, il y a toujours une pause, un souffle, un moment. Nescafé first. Après tout fait une différence. Li pas une simple tasse, li un nouveau départ, un nouveau énergie, un nouveau vision. Peu importe ta mission, peu importe ta question, commence par une bonne décision. Nescafé. Avant ton défi, ton long shift, commence par une bonne décision. Nescafé.
2: RM2, Radio Musti.
3: Hit music only.
4: Radio Musti feels a Musti.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty
0: Morning Beat.
2: बाप रे बाप, इतने सारे गेम्स हैं, इतने सारे गिफ्ट्स हैं। चलो आपको मौका देते हैं गेम में पार्टिसिपेट करने का और गिफ्ट जीतने का। तो चलो आज आखिरी दिन है, हम आखिरी दिन नहीं, कल तो ड्रॉ होने वाला है ना। आपको नहीं चाहिए वाउचर गिफ्ट 4000 की? ओके, मैं बताती हूँ, डिटेल्स में बताती हूँ। अरे टाइम तो दो ना, ऐसे ऐसे कैसे कैसे चलेगा। चलो भाई, ये गेम आपके लिए लेकर आए हैं हम, और यहाँ पर आपको मौका मिलेगा जीतने का क्या, अ गिफ्ट वाउचर वर्थ 4000 रुपीज Plongée sous-marine offered by MJ Events of Man. So join us at Captain Mimi's Diving Center at the Tour Beach as from Monday to Friday. Dive kijiye, mesmerizing experience hoga. Zara details 5713-6761 par. Abhi kya na ki aapka naam shortlist karenge. अभी शॉर्टलिस्ट करेंगे, पहले आपको मुझे मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने मुझे सही जवाब दिया तो आपका नाम शॉर्टलिस्ट होगा कल के बड़े से लकी ड्रॉ के लिए, फिर आपको ये नाम मिल जाएगा। चलो देखते हैं, सुबह के 8:25 ऑफिस पहुंच गए, चलो जल्दी करो मेरे सवाल का जवाब दो।

0: देखो मैं आपको एक सीक्वेंस दे रही हूँ, एक ड्रीम लाइक अंडर वाटर सीक्वेंस है, ओके। और करना क्या है, आपको सोचना है कि इसमें ऋतिक रोशन नजर आ रही है विद द ब्यूटिफुल बाबरा मोरे। जी हाँ, बाबरा मोरे। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये कौन है। जी हाँ, आपको मुझे बताना है कि आपको क्या लगता है कि ये कौन है, कौन सी मूवी है। कौन है क्या मतलब, कौन है विदिता, कौन सी मूवी है, क्या खा के आई हो। बादाम खाना भूल गए मॉर्निंग में, सॉरी। नहीं, कभी कभी ब्रेकफास्ट भी भूल जाती तो लोगों का दिमाग खाना शुरू कर देती हो। क्या सोच क्या रहे हो बताओ, ऋतिक रोशन बाबरा मोरी अंडर वाटर सीक्वेंस है। आप मुझे बताओ फिल्म का नाम क्या है।
1: मॉर्निंग बीट
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: पता है बहुत सारी दुआएं दे रहे हो, बहुत सारा प्यार दे रहे हो, और थैंक यू सो मच. मुझे पता है मैं बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि मैंने

0: आपसे सवाल किया और मैंने गाना भी चला दिया था कि आपके लिए काम आसान हो जाए। जी हाँ, ये था कार्ड्स फिल्म का गाना और मैंने आपसे पूछा था कि वो कौन सी मूवी है जिसमें एक अंडर वाटर सिक्वेंस होता है फीचरिंग ऋतिक रोशन एंड बाबरा मोरी। एक ही फिल्म है जिसमें बाबरा मोरी ने उनके साथ काम किया, वैसे इस मूवी में कंगना रनौत भी है, रिमेंबर। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, द राइट आंसर इज काइट्स। अब किसका नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है चलिए देखते हैं। यहाँ पर सही जवाब दिया है आपने, आपका नाम शॉर्टलिस्ट होता है कविता सुकन जो रहती है खोशनुआ। तो कविता जी मैं आपको बता दूं कि आपका जो नाम है ये शॉर्टलिस्ट हुआ है कल के ड्रॉ के लिए जो होने वाला है, और मैं आपको बताऊं अगर आप की जीत होती है कल ड्रॉ में तो आपको मिल सकता है गिफ्ट वाउचर वर्थ 4,000 रुपीज प्लोंजे सुमारिन ऑफर्ड बाय एमजे इवेंट्स। जी हाँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं कैप्टन मिमीज डाइविंग सेंटर को, ये थ्रू ओबिश में है, मंडे से फ्राइडे आप जा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये जो मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस है ये तो करके ही पता चलेगा कि आपने क्या जिया उस पानी के अंदर। ज़्यादा डिटेल्स के लिए 5713-6761 पे आप कॉल कर सकते हैं, ड्रॉ कल होने वाला है, भूलिएगा नहीं। ऑल द बेस्ट। एंड मैं आपको बताऊं कि यहां पर बस हम इंतजार कर रहे हैं कल का, और ये जो गेम है आपके लिए हम लेकर आए हैं एमजे इवेंट्स ऑफ मान की तरफ से।
1: RM2 Radio Mystique।

0: हाँ जी मैं इधर ही हूँ इधर ही हूँ इधर ही हूँ। वो मैं आपके लिए गिफ्ट लेने गई थी, वो जब टिकट हाथ में होता है ना तो मज़ा आता है। गाना सुना आपने, इट्स ब्यूटीफुल सॉन्ग, जुबिन नौटियाल की आवाज़ कितनी अच्छी है, वाओ। सोचो रेडियो पे सुन के इतना अच्छा लग रहा है, अब ये इंसान अगर आपके सामने परफॉर्म करे और मौका मिले आपको कि कॉन्सर्ट में जाने का, वो भी एक प्लैटिनम टिकट आपको मिले, तो कितना मज़ा आएगा, आएगा ना? आई हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इसीलिए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्लैटिनम टिकट। जी हाँ, द गेम इज पावर्ड बाय ग्रेविटी जीरो एंड ticketbox.mu। अब बताओ कौन जाना चाहेगा? हाथ ऊपर करोगे तो मुझे दिखाई नहीं देगा। करना क्या है आपको, बस मुझे मैसेज करना पड़ेगा, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो सैटरडे 30th मे जुबिन का कॉन्सर्ट होने वाला है, ये कहाँ पे होने वाला है, कौन सी जगह पे इनका कॉन्सर्ट होने वाला है, जल्दी करो मुझे बताओ और फिर उसके बाद ये टिकट ले जाओ। टिकट कैसे मिलेगा? अरे अभी हम ड्रॉ करेंगे ना, तो सारे जितने हमारे लोगों ने हाथ उठाया था जवाब देने के लिए, अरे गाड़ी चला रहे हो, हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ बस आपसे पूछा था, बगल वाले को बोल दो ना, मोबाइल दे दो, बोल दो मेरे नाम से जवाब भेज दे। तो आप मुझे ये बताओ कि जुबिन नौटियाल लाइव कॉन्सर्ट जो है वो कहाँ पे होने वाला है। अगर आपने मुझे सही जवाब दे दिया तो सोचो जुबिन आपके सामने परफॉर्म करेगा और फिर उसके बाद शायद वो गिटार भी बजाएगा। भाई गिटार बजाने वाले सिंगर्स जो होते हैं ना बड़े बड़े अच्छे लगते हैं, हाँ तो पियानो भी बजाता है, हारमोनियम भी बजाता है, ड्रम्स भी बजाता है और कितने सारे अवार्ड्स भी जीत चुका है। कौन देखना चाहेगा इनका कॉन्सर्ट, कौन जाना चाहेगा, जल्दी करो मुझे अपने जवाब भेजो कि ये जो 30th मई को इनका कॉन्सर्ट होने वाला है, ये कॉन्सर्ट कहाँ पे होने वाला है। 549 1294 जल्दी से भेजो जवाब।
1: RM2 Radio Musti In the mix Radio

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: बेजुबान नहीं रहने का वक्त आने पे सब कुछ बोलने का, खुश रहने का, खुश कर दूं आपको। मैंने आपसे एक सवाल किया था, मैंने पूछा था कि जुबिन नौटियाल का जो कॉन्सर्ट होने वाला है, लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है 30 मई को, ये कहाँ होने वाला है। सही जवाब सब ने दिया। द राइट आंसर इज SBICC पाई। तो यहाँ पर आप भी जानना चाहते होंगे कि कितने बजे, तो ये रात 8 बजे होने वाला है। और द कॉन्सर्ट इज प्राउडली ऑर्गेनाइज बाय ग्रेविटी जीरो एंड इन कोलैबोरेशन विद ticketbox.mu। अगर आप चाहते हैं अपना टिकट बुक करना, रुको मैं बताती हूँ किसके जीत हुई, बड़े उतावले हो रहे हैं, रुको भाई, थोड़ा पेशेंस रखो। हाँ, तो अगर आपको अपने टिकट्स बुक करने हैं तो आप क्लिक करें ऑन www.ticketbox.mu, okay, and for reservations call on the hotline number 214-6464-274-6464। इस पे आप कॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जुबिन नौटियाल का जो कॉन्सर्ट है, इसमें जो प्लैटिनियम टिकट है, इसको असिस्ट करने के लिए कॉन्सर्ट कौन है जिसका नाम आया है, देखते हैं। ये है करिश्मा मोतिया फ्रॉम लावोंचिया। कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। एंड यहाँ पर आपको ये प्लैटिनम टिकट मिल रहा है, आप जाकर इस कॉन्सर्ट को एंजॉय कर सकते हैं, गा सकते हैं, झूम सकते हैं, नाच सकते हैं। और इनके जो गाने हैं, चाहे वो रोमांस हो, सैडनेस हो, चाहे वो कोई अच्छा मैसेज हो, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इनकी आवाज़ में। तो इस कॉन्सर्ट को मिस मत करना, जल्दी जाओ अपना टिकट बुक करो। और हाँ बिल्कुल, इनके साथ क्या पता आपको मौका मिल जाए। कभी कभी सिंगर्स क्या करते हैं, स्टेज छोड़ के नीचे गाना गाने लगते हैं, तो सबको पिक्चर लेने का भी टाइम मिल जाता है, मौका मिल जाता है। और मिले ना मिले, लाइव कॉन्सर्ट जब कोई सिंगर गा रहा हो, उसके कॉन्सर्ट में जाके झूम जाना बहुत बड़ी बात होती है। चलो, ऑल द बेस्ट गाइज एंड कंग्रेचुलेशन टू यू करिश्मा। ये तो करिश्मा हो गया रे। हाँ चलो, इसी के साथ एक और गेम के साथ मैं आ रही हूँ। मुँह ऐसे लटकाने की जरूरत नहीं है। इस गाने के बाद एक और गेम होगा, क्या पता वहाँ पर आपको मौका मिल जाए इनाम जीतने का।
1: रेडियो मस्ती इन द मिक्स। रेडियो मस्ती फील्स अ मस्ती इन द मिक्स।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: वेलकम टू रेडियो मस्ती. वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? वैसे मुझे किसी ने एक सवाल किया था, बोला आपके कॉकरोच कैसे हैं. अच्छा जी, कॉकरोच एंडरएस्टिमेट कर रहे हो कॉकरोच को. पता है वो बेफिक्र घूमता है. पता है कॉकरोच को ऐसे अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए. वो आपके घर में रहता है, आपका खाना खाता है और रेंट भी नहीं देता. कुछ लोग इनसे इतना डरते हैं कि इनको देख के खुद घर से बाहर निकल जाते हैं. तो पूछो, घर का मालिक कौन, आप या कॉकरोच? है, ऐसे नहीं करना चाहिए. चलो कोई बात नहीं, अभी हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं. हम लेकर आए हैं एक और गेम. रॉजर्स कैपिटल के साथ हम खेल रहे हैं और आपको मौका मिल सकता है यहाँ पर एक इनाम जीतने का. वाउचर है 1000 रुपीज़ का फ्रॉम डोमिनोज पिज्ज़ा. मुंह में पानी आ गया, भूख लग गई. चलो भाई देखते हैं किसको मिलेगा आज मौका. ये

0: वाउचर जीतने का, अभी आपको मैं एक सवाल पूछूंगी, आप मुझे सही जवाब देना, फिर उसके बाद देखते हैं कौन ले जाएगा ये इनाम। सो यू हैव टू टेल मी, कैन वी बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम ड्रैगन इलेक्ट्रॉनिक्स यूजिंग नूला? कैन वी बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम ड्रैगन इलेक्ट्रॉनिक्स यूजिंग नूला? सही जवाब 5491294, पूरे नाम और पते के साथ देना।
1: Morning beat.
2: Oh God! One more remix.
1: A good beat for your morning show.
3: RM2 Radio Musty in the mix.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: जी बावली तो हम हो जाते हैं जब वहाँ पर इतने सारे लिसनर्स हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं. थैंक यू सो मच. हाँ अभी देखो मैं लकी ड्रॉ करने जा रही हूँ. इनाम तो एक को ही मिलेगा. मैंने पूछा था कैन बी बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम ड्रैगन इलेक्ट्रॉनिक्स यूजिंग न्यूला. आपका जवाब है यस. तो आपने बिल्कुल सही जवाब

दिया, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं विनर कौन है। तो आज की देखा, यहाँ पर विकास ज्यादा खुश हो रहा है आपसे। तो यहाँ पर विनर है जो आहिर बीपन प्रवेशा, जो कि रिव्या जी पर्स हैं। कंग्रेचुलेशन, सही जवाब दिया आपने, मिल रहा है आपको एक वाचर वर्थ 1,000 rupees फ्रॉम डोमिनोज पिज्जा। ये गेम आपके लिए लेकर आए थे रॉजर्स कैपिटल की तरफ से। एंड रिमेम्बर, रॉजर्स कैपिटल होल्ड्स अ लाइसेंस फ्रॉम द फाइनेंशियल सर्विसेज

0: News and the greatest mix of music.
1: Radio Masti feels a Masti.
2: मेरे जाने का टाइम हो गया है, विकास के आने का टाइम हो गया है. मिलते हैं आपसे अब मंडे मॉर्निंग 7 बजे. ख्याल रखिएगा अपना. बाय बाय. ठीक है.

0: 9 a.m.
1: देश विदेश की खबरें आपसे भी धीमा नमस्कार
2: नमस्कार नीतू शाह सभी को नमस्कार। संवैधानिक विशेषज्ञ परवेज दुखी का कहना है कि मॉरिशस में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज प्रणाली अपनाने से राजनीतिक संप्रदायवाद कम हो सकता है। उन्होंने फ्रांस की तरह दो चरणों वाले चुनाव का भी समर्थन किया ताकि राष्ट्रपति को 50% से अधिक मत मिल सके। शब्द मेरी सोच से आगे निकल गए थे,

0: यानी मैंने अपनी भावनाओं में बहकर वो कह दिया जो मेरा इरादा नहीं था। संसद में मंगलवार को सांसद जुआना बेहोंशे के साथ हुई तीखी बहस के बाद श्रम मंत्री रेजा उद्दीन ने फेसबुक पर ये बात कही। संसदीय प्रश्नकाल के दौरान एफएमपी की सदस्य ने मंत्री की मां की देखभाल के लिए रखी गई एक बांग्लादेशी महिला कर्मचारी का मामला उठाया था और ये संकेत दिया था कि उसे कथित तौर पर अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया था। रिजाउद्दीन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। आज सुबह तड़के प्रकाशित अपने संदेश में मंत्री ने अपनी मां पर हुए हमलों का जिक्र किया जो उनके अनुसार घिनौने थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कोलों शब्द का इस्तेमाल करने पर खेद व्यक्त किया। एमएफडीसी के सीईओ के विंगति का उद्देश्य मॉरिशस को हिंद महासागर का एक प्रमुख सिनेमैटिक हब बनाना है। इसी लक्ष्य के तहत उन्होंने मई में आयोजित विश्व सिनेमा के प्रतिष्ठित आयोजनों में भाग लेकर अफ्रीका, अमेरिका, भारत और यूरोप के कई फिल्म पेशेवरों और निवेशकों से रणनीतिक बैठकें की। देश के जलाशयों में पानी का स्तर चिंता का विषय बना हुआ है। 25 मई तक कुल जल भराव लगभग 76% दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% से अधिक कम है। स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों ने पानी की आपूर्ति बनाए रखने हेतु कई कदम उठाए हैं। आज 10 ज़िलहिज्जा को मॉरिशस का मुस्लिम कौम ईद उल अज़हा मना रहा है। ये रोज़ हसरत इब्राहिम की सुन्नत के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है। आज का दिन रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के साथ गुजारा जाता है। और विदेश में अमरीकी सेना ने ईरान पर नए हमले किए हैं, जिसमें रणनीतिक बंदर का शहर बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: Happy mornings and music is out. हम तो आपके साथ जुड़ी जाते हैं. वैसे सबसे बड़ी बात यही है कि another day, another set of opportunities all waiting for you. तो जरूरी है कि दिल खोल कर इस दिन को आप गले से लगा लें और जो भी मुश्किलें परेशानी उसको भुला दें भाई. सोल्यूशन ढूंढने निकल पड़े क्योंकि सोल्यूशन मिल ही जाता. तो फुल फिल्मी अंदाज के अंदर राम राइट है. तो कुछ गाने जरूर चलेंगे साथ साथ में, अपनी बातचीत थोड़ी होती रहेगी. यस इट्स ऑल अबाउट ये ब्रिजिंग द गैप. नहीं तो साफ होता है कि बहुत कुछ कहना होता है, चुप भी नहीं रहना होता है, लेकिन कहें तो किससे कहें. अरे ए, मैं हूं ना. 9 से 12 के बीच में चलेंगे कुछ कमाल के गाने और वहीं पर वी ऑल सेट टू एंटरटेन यू. और ये याद दिला दें कि बहुत ध्यान रखना है, पानी पीते रहो, गर्म कपड़े पहनकर अपने आप को बिल्कुल फिट एंड फाइन रखो और सही टाइम पर सही रिजल्ट भी मिलेगा. यस इट्स ऑल अबाउट डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम. म्यूजिक इज ऑन सनशाइन.
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती.

0: ready for the biggest World Cup ever.
1: 2026 FIFA World Cup.
0: पहली बार होगी 48 टीम्स, 104 मैचेस. रेडियो मस्ती की टीम के साथ
1: चलिए
0: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको.
1: रेडियो मस्ती के साथ रोड टू द वर्ल्ड कप.
2: भैया हर कोई बिल्कुल एक्साइटेड है. वर्ल्ड कप, इतनी सारी तैयारी और इतनी सारी टीम्स और पहली बार के लिए इतनी सारी टीम्स और इतने सारे मैचेस. बहुत कुछ है बताने के लिए, चाहे हम टीम की प्रोफाइल की बात करें, प्लेयर प्रोफाइल की बात करें और कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात करें. सब कुछ है यहीं पर. स्पोर्ट्स गुरु अरविंद हमारे साथ. चलो, कहाँ चलना है?
3: चलो वर्ल्ड कप की ओर. वर्ल्ड कप शुरू होने में 14 दिन रह गए हैं. फीफा पर आरोप है आर्टिफिशियली inflating ticket prices or misleading fans. New York और New Jersey के attorneys ने investigations शुरू किए. इधर Liverpool का खिलाड़ी Jeremy Frimpong Netherlands के World Cup squad में नहीं है. Ronald Koeman की टीम में ज्यादातर Premier League के खिलाड़ी हैं. 15 खिलाड़ी Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch और Cody Gakpo टीम में शामिल हैं. FIFA World Cup में बेहतरीन गोलकीपरों में Lev Yashin, ओलिवर कान, Gianluigi Buffon और मैनुअल न्यूयर जैसे महारथी चट्टानों के नाम आते हैं. टॉप गोलकीपर अवार्ड गोल्डन ग्लोव अवार्ड कहलाता है. पहले इसको लेव याशिन अवार्ड कहा जाता था. लेव याशिन द ब्लैक स्पाइडर और द ब्लैक पैंथर, सोवियत यूनियन नेशनल टीम का गोलकीपर. अभी तक वो अकेला गोलकीपर है बालों दो जीतने वाला. पेनाल्टी किंग, 151 पेनाल्टीज सेव्ड, ये भी रिकॉर्ड है. 270 क्लीन शीट्स. यूएसएसआर के साथ 1956 मेलबर्न ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल, 1960 में इनॉग्रल यूरोपियन चैंपियनशिप वर्ल्ड कप में 4 फीफा वर्ल्ड कप सोवियत यूनियन के साथ, 1958, 1962, 1966 और 1970. फीफा ने उसे गोलकीपर ऑफ द 20th सेंचुरी वर्ल्ड टीम सम्मान दिया था और फ्रांस फुटबॉल ने ग्रेटेस्ट गोलकीपर ऑफ ऑल टाइम. इस प्रकार जो बेहतरीन गोलकीपर रहे पिछली बार कतर में अर्जेंटीना का एमिलियानो मार्टिनेज, 2018 में थिबो कुर्टुआ, 2014 में मैनुअल न्यूयर, उसके पहले इकेर कासियास, फिर Gianluigi Buffon 2006 में, 2002 में ओलिवे कान, 1998 में फाबियन बार्थेज, 1994 में मिशेल प्रुडोमे. ओलिवर कान वो अकेला गोलकीपर है जिसने बेस्ट गोलकीपर मतलब गोल्डन ग्लोव के साथ गोल्डन बॉल भी जीता है. तो इस बार 2026 वर्ल्ड कप में बेहतरीन गोलकीपर कौन होगा, एक साथ देखेंगे. सो चलो वर्ल्ड कप की ओर. लिव इट विद एमबीसी.
2: Yes, the stage is all set. और क्या होगा, आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी यहीं पर.
0: FIFA World Cup 2026, 11 जून से 19 जुलाई. Catch all the news, views, previews and latest updates.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: अरे मॉर्निंग की कमाल की शुरुआत हुई है. फुल झागास. अभी तो विकास आपके साथ और आओगे और फिर से याद दिलाने के लिए यू नीड टू पार्टिसिपेट. अरे साहब जरूरी है कि अगर आप एक उड़ान लेना चाहते हैं, स्विंग में भी विंग है, और आप सोचिए अगर उड़ान लेना चाहते हैं मॉरिशस हेलीकॉप्टर लिमिटेड के साथ, यानी कि एक कपल के लिए ये मौका आ सकता है. बस आपको MBC प्ले 1.0 डाउनलोड करना है. उसके बाद जो आप जैसे ही साइन इन करते हैं आपको MBC OTT की तरफ से एक मैसेज आता है, और अपने मोबाइल फ़ोन पर उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर हमें व्हाट्सएप के जरिए 5499-1294 भेज देना है. जैसे हमेशा कर रहे हैं कि पिछले मंडे से हमने शुरुआत की थी और ये आज चलेगा, आज शाम के शो तक, और फिर आपको मौका मिलेगा कि आप शामिल हो पाए इन द ड्रॉ और नाम आ जाए, क्या पता शॉर्टलिस्ट हो जाए, क्या पता, लेकिन गिव इट अ ट्राई.
3: À l'occasion lancement MBC Play, préparez-vous pour décoller. MBC, en collaboration avec Mauritius Helicopter Limited, peut offrir à l'essence des grands gagnants pour un pot des tickets de Saken pour un hélicoptère Joyride exceptionnel dans région Sud-Est, l'île Maurice. Pour participer, download l'application MBC Play et crée un compte. Depuis les 18 jusqu'à les 28 mai, reste à l'écoute ban radio MBC. Chaque jour, ban animateur radio pour inviter ban auditeur à voir un screenshot de message confirmation qu'ils ont fini recevoir par SMS après qu'ils ont créé un compte MBC Play. Tous les jours, un participant peut sélectionner en direct pour répondre à une question. Si vous donnez une bonne réponse ou vous qualifiez parmi les finalistes et que vous pouvez dans la chance, participe dans le grand final le 29 mai. MBC Play.

0: अच्छा तारीख क्या है? 28। हाँ करण जौहर। चलिए इसी बात करेंगे बस थोड़ी देर में, लेकिन अभी के लिए फिलहाल जान लेते हैं सितारों की चाल।
1: Your daily horoscope, RM2, Radio Musti.
0: Right, शुरुआत करते हैं with
2: Aries, मेष राशि।
0: भाई आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो कमाल का काम करने वाला है। हर फैसला आप सोच समझ कर लेंगे, लेकिन किसी के दबाव में आकर लिया गया कदम बाद में परेशानी दे सकता है। मन में नई कमाई या साइड इनकम का विचार चल सकता है, और अच्छी बात है क्योंकि उसमें सफलता मिलने के संकेत भी हैं। जीवन साथी के साथ आप कोई उपलब्धि या प्रमोशन पाकर घर का माहौल खुशनुमा बना पाएंगे।
2: टॉरस, वृषभ राशि।
0: भाई आज का दिन धीरे धीरे लेकिन पक्की सफलता देने वाला रहेगा। जिस काम में हाथ डालेंगे वहीं पर अच्छा परिणाम मिलने के योग है। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मन में जो विचार बबल के तौर पर पुटुक पुटुक निकल रहे हैं उनको आने दीजिए। परिवार में किसी सदस्य के रिश्ते या विवाह की बात तय होने से घर में उत्सव जैसा माहौल बना रहेगा।

0: जेमिनी मिथुन राशि।
1: आज तो दिन कमाल है रे। हाँ वैसे अचानक से ऐसा लग रहा है किस्मत साथ देती आ रही है। लंबे समय से अटका हुआ या डूबा हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। ओ जी वेरी गुड, बल्ले बल्ले आगे चले। हाँ बिजनेस में जो योजना परेशानी का कारण बन रही थी वो धीरे धीरे सही दिशा पकड़ सकती है, यानी कि मुश्किलों का काम तमाम पकड़ लो कमान।
0: कैंसर कर्क राशि।
1: भाई प्रॉपर्टी और निवेश से जुड़े जो मामले हैं उसमें किस्मत आपका साथ दे सकती है। नई संपत्ति खरीदने का विचार कर रहे हैं तो सफल हो सकते हैं, हालांकि अनजान लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए निजी बातें किसी से साझा करने से बचें।
0: लियो सिंह राशि।
1: लियो जो भी काम मिले उसको समय रहते कर दियो, हर कदम सोच समझ कर उठाने की जरूरत है। पुरानी गलतियों से मिली सीख आज आपको सही दिशा दिखा सकती है। आपकी जो डिसीजन मेकिंग क्षमता है ना वो मजबूत रहेगी और लोग आपसे उम्मीद लगाकर बैठेंगे। संतान को नौकरी या करियर के कारण घर से दूर जाना पड़ सकता है, एक साथ कई जिम्मेदारी आने से भागा दौड़ी थोड़ी सी बिजी हो सकते हैं।
0: वर्गो कन्या राशि।
1: आज का दिन थोड़ा सा स्ट्रेस लेकर आ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, चैलेंजेस के लिए आप ओपन रहते हैं। वेरी गुड। बिजनेस में किसी नुकसान या रुकावट के कारण भागा दौड़ी थोड़ी बढ़ सकती है, किसी अजनबी पर आंख मूंद कर भरोसा करना मुश्किलें बढ़ा सकता है, इसलिए सतर्क रहें।
0: लिब्रा तुला राशि।
1: भाई आज आपका जो मन है वो मौज मस्ती और खुशियों में डूबा रहेगा। संतान की तरक्की देखकर गर्व महसूस होगा। वेरी गुड। लंबे समय से अटका कोई काम भी है तो वो भी पूरा हो सकता है। स्टूडेंट है तो पढ़ाई में लापरवाही करने से बचना होगा हमेशा की तरह, नहीं तो नुकसान हो सकता है। बिजनेस में छोटी मोटी गड़बड़ियां मन को परेशान कर सकती हैं, लेकिन धैर्य रखेंगे, कूल हेड से सब डिसीजन लेंगे तो अच्छा होगा।
0: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: रिश्तों में अपनापन और मजबूती बढ़ेगी, भाई बहन का पूरा साथ मिलेगा और किसी पुराने मुद्दे का समाधान मिल बैठ कर प्यार मोहब्बत से हो जाएगा। परिवार के साथ बिताया गया समय आपके मन को सुकून देगा।
0: सजिटेरियस धनु राशि।
1: मान सम्मान और लोकप्रियता दोनों बढ़ने वाली है। ओ जी पॉपुलैरिटी, वेरी नाइस। कार्य क्षेत्र में अच्छे काम के लिए आपको सराहना या पुरस्कार मिल सकता है। नए लोगों से दोस्ती होगी और सामाजिक दायरा बढ़ेगा। मन बेहद प्रसन्न और बच्चों के साथ बिताया गया मन को अच्छा लगने वाला समय देगा, भीतर से खुशी देगा। पिता आज आपको कोई जिम्मेदारी भरा काम दे सकते हैं।
0: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: सेहत को इग्नोर मत करो, नहीं तो भारी पड़ सकता है। काम के पीछे भागते भागते सांस तो भूल जाएगी, लेकिन साथ साथ में खुद की देखभाल करना भी आप भूल जाएंगे, इसलिए थोड़ा संतुलन, थोड़ा सा बैलेंस। संतान के लिए नया वाहन या कोई बड़ी चीज खरीदने का विचार बना सकते हैं। वेरी गुड। खान पान में लापरवाही से बचें और अपनी वाणी को मधुर बना के रखिए।
0: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: भाई धन को लेकर समझदारी दिखाने की जरूरत है। कोई व्यक्ति आपको गलत निवेश या जोखिम भरी योजना में फंसाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए सोच समझ कर पैसा लगाए। संतान के करियर या पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ सकता है और जीवन साथी को कोई नई नौकरी या अच्छा अवसर मिलने से घर में खुशी का माहौल।
0: पाइसेस मीन राशि।
1: आपकी समझदारी और शांत स्वभाव ना हर काम को आसान बना देता है। वेरी गुड। घर में किसी नए मेहमान के आगमन से खुशी और रौनक बढ़ सकती है। सरकारी मामले से जुड़ी कोई चिंता खत्म होने के संकेत है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह को लेकर दोस्तों या करीबी लोगों से चर्चा हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को जल्दबाजी से बचना होगा और मैनेजमेंट की बातों पर खास ध्यान देना होगा। ऑल द बेस्ट।
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स रेडियो।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: तो यहाँ पर कुछ मैसेजेस गुड मॉर्निंग और सांगर हमारे साथ देने फ्रांस से हेलो हाउ इज इट गोइंग। वैसे मैंने सुना कि हीट वेव बहुत कमाल का चल रहा है, नहीं इवन भारत की तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी है और ये लोग सोच रहे हैं कि इससे कैसे बचें। अब मॉरिशस में जहाँ पर थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चलने लगी है वो बात अलग है कि अब अभी ठंड अभी अपना असर पकड़ना बाकी है, लेकिन फिर भी यू हैव टू टेक योर प्रिकॉशंस। गर्म कपड़े अपने आप को कवर करके रखें। रेडियोमसी टीम बहुत सारा प्यार है अब्दुल इंसार अबानो के लिए, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं फ्रॉम द टीम। रिचिता हमारे साथ दे रही हैं बलमा से, हेलो गुड मॉर्निंग। चलिए इन्होंने भी अपना मैसेज भेज दिया, वेरी गुड। अरे एमबीसी प्ले डाउनलोड करने के बाद उन्होंने मैसेज भेज दिया तो उनको भी नोट कर लेते हैं। और भूलिए मत कि आज रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइट्स के अंदर आपको मौका मिल सकता है सुनने का कि क्या आपका नाम शॉर्टलिस्ट होता फॉर द डे। उसके बाद फाइनल्स यानी कि कल होने वाला है 29th हेलीकॉप्टर राइड, डोंट फॉरगेट। चित्रेशा आपको भी स्वागत, थैंक यू फॉर योर मैसेज, गुड मॉर्निंग। और मेरे पर नीरव आ गए और गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग आपको भी। सरिता जी आपको भी स्वागत आपका, एंजॉय द सॉन्ग फैमिली के साथ, वेरी वेरी गुड। और मेरे पर खुशी है फूफा फूफू दादी नाना नानी संगीता मामू सब यश साथ दे रहे हैं। यालेश गुड मॉर्निंग टू यू। और ज्योति जी शादो बनारस से हमारे साथ दे रही हैं गुड मॉर्निंग। नीता जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं एंड जितने भी लोग हमारे साथ देते हैं उनको थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर, बस ये दिखाना कि यू डू केयर।
1: RM2 रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक,
3: रेडियो मस्ती feels a mystique.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: हाँ भाई, बड़ी मूवी आने वाली है जून 26 को बड़े पर्दे पर, लेकिन अभी बहुत सारी बातें हो रही है इसके बारे में। भाई मेकर्स ने ऑफिशियली ड्रॉप किया हाईली एंटीसिपेटेड होता है बेटा टीजर ऑन May 15th। आप पता ही, वैसे इस मूवी में यही सब होने वाला है, उल्टा सीधा। वैसे ऑडियंस बहुत खुश हो गए, कहते हैं कि आजकल तो ये जो कॉमेडी क्या चल रहा है ना, कमाल का। और स्टार स्टडेड जो कास्ट है वो तो कमाल ही है, परेश रावल, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, यानी कि तीनों लोग आते तो हेरा फेरी वाली याद आ ही जाती है। लीड एक्टर अक्षय कुमार ने रैप अप किया अपना मैसिव और एक्सटेंसिव शूटिंग स्केड्यूल, अभी पोस्ट प्रोडक्शन चल रही है और प्रमोशनल एक्टिविटीज कमाल की रफ्तार पकड़ रही है, देखते हैं क्या होता है। एंटीसिपेट क्या था वो?
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: कुछ होता है राहुल तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती,
2: RM2 रेडियो मस्ती।
3: The time is brought to you by
4: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
3: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
5: North, South,
6: 103.5.
5: East, West,
6: 96.4.
5: Center,
6: 99.4.
0: RM2
1: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
5: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
7: Okay, good morning. Time check. Exactly 10 a.m. मिलते हैं विधिमा से, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
8: नमस्कार विकास, सभी को नमस्कार। संवैधानिक विशेषज्ञ परवेज दुखी का कहना है कि मॉरिशस में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज प्रणाली अपनाने से राजनीतिक संप्रदायवाद कम हो सकता है। उन्होंने फ्रांस की तरह दो चरणों वाले चुनाव का भी समर्थन किया ताकि राष्ट्रपति को 50% से अधिक मत मिल सकें। शब्द मेरी सोच से आगे निकल गए थे, यानी मैंने भावनाओं में बहकर वो कह दिया जो मेरा इरादा नहीं था। संसद में मंगलवार को सांसद जुआना बेहोंशे के साथ हुई तीखी बहस के बाद श्रम मंत्री रिजा उतिम ने फेसबुक पर यह बात कही है। संसदीय प्रश्नकाल के दौरान FMP की सदस्य ने मंत्री की मां की देखभाल के लिए रखी गई एक बांग्लादेशी महिला कर्मचारी का मामला उठाया था और ये संकेत दिया था कि उसे कथित तौर पर अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया था। रिजा उतिम ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था और आपा खोते हुए विशेष रूप से कहा था मुपेना जिसोकोलो। आज सुबह तड़के प्रकाशित अपने संदेश में मंत्री ने अपनी मां पर हुए हमलों का जिक्र किया जो उनके अनुसार घिनौने थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कोलो शब्द का इस्तेमाल करने पर खेद व्यक्त किया। याद दिला दे कि संसदीय कार्यों के दौरान स्पीकर ने व्यवस्था बनाई थी जिसके बाद रिजा उतिम ने अपने कहे हुए शब्दों को वापस ले लिया था।

0: आज 10 ज़िलहिज्जा को मॉरिशस का मुस्लिम कौम ईद उल अदा मना रहा है। ये रोज़ हज़रत इब्राहिम की सुन्नत के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है। सुबह ईद की नमाज के बाद बेशतर मुसलमान सुन्नत इब्राहिम अदा करते हैं और आज का दिन रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के साथ गुजारा जाता है। MFDC के CEO केविन गति का उद्देश्य मॉरिशस को हिंद महासागर का एक प्रमुख सिनेमैटिक हब बनाना है। इसी लक्ष्य के तहत उन्होंने मई में आयोजित विश्व सिनेमा के प्रतिष्ठित आयोजनों में भाग लेकर अफ्रीका, अमेरिका, भारत और यूरोप के कई फिल्म पेशेवरों और निवेशकों से रणनीतिक बैठकें की। देश के जलाशयों में पानी का स्तर चिंता का विषय बना हुआ है। 25 मई तक कुल जल भराव लगभग 76% दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% से अधिक कम है। स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों ने पानी की आपूर्ति बनाए रखने हेतु कई कदम उठाए हैं। और विदेश में इजरायली सेना ने हिजबुल्ला के खिलाफ नए हमलों से पहले दक्षिणी लेबनान के बड़े हिस्सों के लिए निकासी आदेश जारी किए हैं और इन क्षेत्रों को युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है। 17 अप्रैल को संघर्ष विराम लागू होने के बाद से ये सबसे बड़ा निकासी आदेश है, जो लेबनानी क्षेत्र के लगभग 14% हिस्से को कवर करता है। टेनी खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। कालीमाई रोड दीपिने में 28 साल के 28 years old के श्री लीलेश्वर आमाता, जो कौशिक नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे आज दिन के 2 बजे उनके पिता श्री परमेश्वर आमाता के घर कालीमाई रोड दीपिने से उठाकर पितों के शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। एवेन्यू फ्लॉम्बायों इजिडो रोज में 48 साल के 48 years old के श्री आनंदेव जोवाता, जो गासो नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दोपहर 3 बजे उनकी मां श्रीमती देविका जोवाता के घर एवेन्यू फ्लॉम्बायों इजिडो रोज से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। तमिल टेम्पो रोड सुरीनाम में 66 साल के 66 years old के श्री धीरज बंचाराम, जो चांद नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर तमिल टेम्पो रोड सुरीनाम से उठाकर सुयाक की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: MBC Play.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: लीज आप पहुंच गए इन द सेकंड आवर 10:16 AM 28th of May. हाल चाल कैसे हैं भाई? गुरुवार हम तो कहते हैं, कोई भी हो वार, हम बिल्कुल तैयार करने के लिए म्यूजिक की बौछार. और वैसे हमको

0: दी है ना, एमबीसी प्ले आपको डाउनलोड करना है, एमबीसी प्ले 1.0, और उसके बाद आप शामिल हो सकते हैं द लकी ड्रॉ, जहां पर आपको मौका मिल सकता है टू टेक अ हेलीकॉप्टर राइड, और फिर ऊपर से जो नजारे देखेंगे, ओए होए होए होए, सोचिए और पार्टिसिपेट कीजिए। बस डाउनलोड करना है एमबीसी प्ले 1.0, और साथ साथ में भेजना है वो जो मैसेज आएगा एमबीसी ओटीटी की तरफ से, स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल फोन पर और भेजिए यहाँ पर, एंड आज शाम के शो के अंदर 4 to 5:30 के बीच में आपके जो ड्रॉज हैं वो कर दिए जाएंगे, उस 5:30 के बाद फोन आएगा, देखते हैं किसको हो सकता है आपको। सो ऑल द बेस्ट, एंड बस थोड़ी देर में एक गेम होने वाला है जहां पर आप जी सकते हैं जुबिन नौटियाल के लिए एक कॉन्सर्ट, राइट, एक कॉन्सर्ट आने वाला है जुबिन नौटियाल, नॉट टू फॉरगेट 30th of May SBICCPI में कुछ रिलेटेड क्वेश्चन होगा, डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट और जीते इनाम फॉर जुबिन नौटियाल्स कॉन्सर्ट। अभी चलते हैं अगले गाने की तरफ, एंड नॉट टू फॉरगेट अपने साइड पर जो हो रहा है उसके बारे में बताते रहिए 549 and 1294 पर।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती
2: मैं
1: जुबिन नौटियाल लाइव इन मॉरिशस ऑन सैटरडे 30th ऑफ मे एट SVICC पाए विनर ऑफ द बेस्ट सिंगर अवार्ड ऑफ 2025. Join us for a rocking concert with the best singer in Bollywood of our time. Do not miss it. Get your tickets at Ticket.

0: RM2
1: Radio Musti.
0: Fashion tips powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments. Welcome to RM2.
1: Musti Mornings, Radio Musti.
2: जैसे फैशन की बात करें तो कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है, उसका फंडा बहुत सिंपल है दोस्तों। कंफर्ट होना चाहिए और थोड़ा सा मैं हीरो हूं वाला कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। राइट, बॉलीवुड स्टेशन RM2 आपके साथ। लेडीज के लिए टिप ये कि अगर मॉर्निंग थोड़ी कूल हो तो पास्टल कुर्ती के साथ साथ लाइट डेनिम जैकेट, ये बहुत कमाल की लगती है। कूल भी लगती है और अप टू डेट भी लगती है, क्लासी और साथ में ऑफिस एंट्री भी बॉलीवुड के फुल ऑन स्टाइल के साथ। एंड जेंट्स, प्लेन सॉलिड शर्ट के स्लीव्स फोल्ड करके क्लीन सीकर्स और साथ साथ में स्मार्ट वॉच पहन लो, बस वो कॉर्पोरेट वाली लुक आ ही जाएगी। ओवर साइज शर्ट्स पहनना पसंद करती हैं कई लड़कियां और पैंट्स अभी फुल ट्रेंड में है, स्टाइलिश भी, पूरा दिन कंफर्टेबल भी। राइट बॉयज, ये बात है कि परफ्यूम इतना नहीं लगाए कि लगे कि ये तो बॉटल में नहा कर आया है, नॉट रियली। बस ये होना चाहिए कि आपकी प्रेजेंस फील हो और हर कोई कहे कि क्या खुश हवा और साथ साथ में झोंका। सबसे इम्पोर्टेंट फैशन टिप जो ये है कि अपने कॉन्फिडेंस को फुल ऑन हाई रखो, उसके बाद फैशन अपने आप दिखने लगेगा।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स। RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: to Radio Musti.
1: एक पॉपुलर गाना और ये है जुबिन नौटियाल की आवाज के अंदर। बस आपको बताना है कि जो गाना है 2021 की कौन सी मूवी से लिया गया है। काफी आसान हो गया ना। राइट, हियर्स अ चांस टू विन अ टिकट फॉर जुबिन नौटियाल्स कॉन्सर्ट। प्लैटिनम टिकट 5499-1294 पर।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: राइट ये क्वेश्चन आंसर पूछ रहे थे और गाना चलाया था हमने तू मेरा हो गया है कौन सी मूवी से लिए गया है। द करेक्ट आंसर इज तड़प तड़प तो रहे हैं बहुत सारे फैंस जो भी नौटियाल के आने वाले हैं SVICC पाए में एंड दिस इवन ब्रॉट यू बाय ticketbox.mu। राइट तैयार हो जाइए क्योंकि ये ग्रेविटी जीरो का एक बहुत ही कमाल का इवेंट है। जब बात करते हैं हम जो भी नौटियाल की तो बहुत ही कमाल के

0: पॉपुलर प्लेबैक सिंगर है और उनकी सोलफुल जो आवाज है, इमोशनल जो वॉइस है, वो कमाल की, यानी कि अमेजिंग। उत्तराखंड से आकर एक पैशन अपने साथ लेकर शुरू हो गए यंग एज से ही, क्लासिकल म्यूजिक हो या फिर इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार, पियानो, हारमोनियम, ड्रम्स, सब कुछ। और जुबिन को बहुत पसंद किया जाता है जब वो ब्लेंड करते हैं रोमांस को साथ में सैडनेस एंड साथ में मेलेडी, अपने सिंगिंग स्टाइल में बनाते हैं उनको फेवरेट इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। प्लेबैक सिंगर फॉर राता लंबिया, हम जानते हैं बहुत ही कमाल के सुपर हिट गाने वर्ल्ड वाइड, उनकी लाइव परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल कर रही है, चार्ट टॉपिंग बॉलीवुड नंबर्स। हार्टफेल्ट वॉइस एंड स्टेज प्रेजेंस के लिए तैयार हो जाइए, अभी था मौका जीतने का एक प्लैटिनम टिकट। एंड दिस इज फॉर जुबिन नौटियाल्स कॉन्सर्ट सैटरडे 30th of May 8 PM SVICC पाए, अनफॉरगेटेबल इवनिंग जुबिन नौटियाल के साथ। तो सही जवाब देकर बन गया लकी वन कौन, जवाब था तड़प 2021 की मूवी, और आप बन गए लकी विनर। ये है श्वेता और खाजा राइट प्लेइंग द होस्ट से, कांग्रेचुलेशंस क्योंकि आपने जीत लिया एक प्लैटिनम टिकट वर्सेस द स्पेक्टेकुलर जुबिन नौटियाल लाइव इन कॉन्सर्ट। The concert is proudly organized by Gravity Zero, collaboration with Ticketbox.mu. अपनी tickets book कर सकते हैं on www.ticketbox.mu या फिर reservation के लिए call कर सकते हैं hotline on 214-6464. Congratulations, एक बार फिर से श्वेता जी अपने आईडी कार्ड के साथ एमबीसी आना होगा और ये इनाम हो गया आपके नाम। डोंट फॉरगेट अपना आईडी कार्ड और जल्दी जल्दी, क्योंकि आज 28 होगी, 30 तारीख को कॉन्सर्ट है, तो जल्दी आइए ये टिकट ले जाइए। याद दिला दें, दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्राफिटी जीरो इन कोलैबोरेशन विद ticketbox.mu। एक बार फिर से कांग्रेचुलेशंस, द गेम वाज पावर्ड बाय ग्राफिटी जीरो एंड ticketbox.mu।
1: Welcome to Radio Musti. Check this out. The latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Musti feels a Musti.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: ओके, गुड मॉर्निंग, टाइम चेक, इट्स 11 एएम। स्टूडियो में प्रतिमा, उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
4: नमस्कार विकास, सभी को नमस्कार। शब्द मेरी सोच से आगे निकल गए थे, यानी मैंने भावनाओं में बहकर वो कह दिया जो मेरा इरादा नहीं था। संसद में मंगलवार को सांसद जोआना बेरांजे के साथ हुई तीखी बहस के बाद श्रम मंत्री रिजा उतिम ने फेसबुक पर ये बात कही। संसदीय प्रश्नकाल के दौरान FMP की सदस्य ने मंत्री की माँ की देखभाल के लिए रखी गई एक बांग्लादेशी महिला कर्मचारी का मामला उठाया था और ये संकेत दिया था कि उसे कथित तौर पर अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया था। रिजा उतिम ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था और आपा खो दिया था। आज सुबह तड़के प्रकाशित अपने संदेश में मंत्री ने अपनी मां पर हुए हमलों का जिक्र किया जो उनके अनुसार घिनौने थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कुलों शब्द का इस्तेमाल करने पर खेद व्यक्त किया। आज 10 ज़िलहिज्जा को मॉरिशस का मुस्लिम कौम ईद उल अदा मना रहा है। ये रोज़ हसरत इब्राहिम की सुन्नत के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है। सुबह ईद की नमाज के बाद बेशतर मुसलमान सुन्नत इब्राहिम अदा करते हैं और आज का दिन रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों के साथ गुजारा जाता है। देश के जलाशयों में पानी का स्टॉक लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। 25 मई तक कुल जल भराव का स्तर लगभग 76% था, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये लगभग 89% था, जो कि 10% से अधिक की गिरावट को दर्शाता है। कुछ जलाशयों में जल स्तर 2025 की तुलना में काफ़ी कम दर्ज किया गया है, जो मुख्य रूप से पिछले कुछ महीनों में हुई कम बारिश का परिणाम है। इस स्थिति को देखते हुए अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि उन्होंने स्टॉक को सुरक्षित रखने और पूरे देश में पीने के पानी की आपूर्ति बनाए रखने के

0: ये पहले ही कई कदम उठाए हैं। मॉरिशस इस शुक्रवार तक पोर्ट लुई में हिंद महासागर में गिर मिट्टिया मजदूरों की विरासत पर एक इलाकाई कार्यशाला की मेजबानी कर रहा है। कला और संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का विषय है हिंद महासागर में गिर मिट्टिया श्रम की विरासत पर एक संवाद। इसका उद्देश्य भावी पीढ़ियों के लिए इस इतिहास को बेहतर ढंग से संरक्षित करने और प्रसारित करने के लिए एक इलाकाई रोड मैप तैयार करना है। और विदेश में इजरायली सेना का कहना है कि उसने दक्षिणी लेबनान पर नए हमले किए हैं जिसमें उसने हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का दावा किया है। लेबनान के सबसे बड़े शहरों में से एक टायर के सामने आए सोशल मीडिया वीडियो में ढहे हुए भवनों के आसपास धूल से सने लोगों की भारी भीड़ जमा दिखाई दे रही है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: वैसे बड़ा मजा आता है कि अब रेडियो के जरिए हम और आप तो मिलते हैं, लेकिन जब हमारे यहाँ पर विजिटर्स आते हैं, और अभी कोंगोमा से आई थी एक टीम, छोटे छोटे बच्चे छुट्टी पर हैं, घूम रहे हैं फिर रहे हैं, और वहीं पर माता जी, पिताजी एंड कुछ और लोग, लेकिन ऑलवेज नाइस, पता लगता है कि वो रेडियो के साथ कनेक्टेड रहते हैं। MBC रेडियो हमेशा आपके साथ 24/7। थैंक यू सो मच। चलिए साथ ऐसे का दिन, और 2026 में सोचिए 5 महीने यूं ही अब करें तो क्या करें, यही करें कि बाकी जो महीने बचे उनको आराम से प्यार से बिताएं और हर लम्हे को यादगार बनाएं स्पेशल मोमेंट्स म्यूजिक के साथ। तो इस घंटे में भी कुछ मस्ती जारी रहने वाली है। अरे म्यूजिक की बारी है, लेकिन साथ साथ में बी टाउन की कुछ खबरें, हाउस होल्ड डेको टिप्स एंड आपके मैसेजेस।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: हाँ, वैसे बॉलीवुड की जो दुनिया बहुत ही कमाल की है, क्योंकि जैसे एक मूवी चल गई तो किस्मत ही बदल गई हमारे एक्टर्स की। वी टॉकिंग अबाउट सैयारा अनीत पड्डा। मैं काफ़ी उनके लिए हेक्टिक शूट्स एंड लॉक शेड्यूल से भरा हुआ था। अभी उन्होंने एक हॉरर कॉमेडी शक्तिशालिनी पे काम करा है और कहते हैं कि ऐसा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। जब कहा कि ये फाइनल लेग होगा इस शूटिंग

0: ऑन द 27th of May, यानी कि खत्म काम। लेटेस्ट एडिशन है और इसमें देख पाएंगे अनीत को एक बहुत ही चैलेंजिंग डबल रोल के अंदर। वो कैरेक्टर निभाती है शक्ति का, एक बहुत ही ऑर्डिनरी सी महिला है जो ट्रांसफॉर्म होती है इनटू अ सेवियर, और शालिनी एक डेंजरस स्पिरिट है। हाँ, रिवेंज है, लड़ाई झगड़ा है और साथ में कुछ कॉमेडी भी। चलिए देखते हैं क्या कमाल होता है, लेकिन बड़ा मजा आने वाला है ये लोगों का कहना है। और कहते हैं एक अनीत का जो क्लाइमैक्स सीन है बहुत ही कमाल का है, और शूटिंग हुई है ग्वालियर मुरैना में मध्य प्रदेश में, और सिग्निफिकेंट पोर्शन जो उन्होंने शूट किया है वो ढोलपुर बारखंडी में, ये राजस्थान के अंदर है। नाना पाटेकर सीमा बिस्वास ने यूनिट को ज्वाइन किया था मई के अंदर। चलिए देखते हैं अब शक्ति शालिनी खत्म होने के बाद एक और एक्साइटिंग कोलैबोरेशन के लिए बिल्कुल तैयार है अनीत पड्डा, सैयारा डायरेक्टर मोहित सूरी के साथ और को स्टार आहान पांडे। अब ये होंगे उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। चलिए देखते हैं क्या कमाल करते हैं, क्या सैयारा का मैजिक इज गोना बी बैक।
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: अच्छा, कल हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, बहुत बहुत जरूरी है बात।

0: करना। वैसे उनके बारे में सोचिए जो अभी अकेले हैं, हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद अपना साथी खो दिया हो और आप कहते हैं हाँ कल ही तो गए थे, लेकिन अभी जब वीडियो कॉलिंग का फ़ायदा है, अभी ज़माना है कि कभी भी आपको मन करे तो ट्रेन ट्रेन कर सकते हैं, तो क्यों नहीं उनके टाइम में और उनका स्केड्यूल भी जान लीजिए, क्यों नहीं अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमारे बड़े बूढ़े। और ये भी सच है कि जब आप छोटे थे तो उन्होंने कितनी मेहनत की, सब कुछ देखा कि कैसे आपको बिजी रखें, पढ़ाएं सिखाएं और साथ साथ में आपको ऑक्यूपाई कराएं, फिर चाहे एक्टिविटीज़ हो पढ़ाई में जिसमें भी, लेकिन अभी आपकी बारी है। बस ये सोच लो अगर जैसे उन्होंने हमें रखा था जब हम छोटे थे, क्या हम अपने बड़े बूढ़ों को नहीं रख सकते, सोचने वाली बात है, एक क्वेश्चन है। और एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज यहाँ पर आया है नलनी का, उन्होंने कहा कि आज मेरी मम्मी थोड़ी बीमार हैं, कभी कभी कुछ भूल जाती हैं, लेकिन मैं फिर ये सोचती हूँ कि जब मैं छोटी थी और इतनी समझ नहीं थी तो मम्मी ने हाथ पकड़ कर चलना सिखाया नहीं, कितनी सच बात है, और फिर इसलिए ये टॉपिक सामने आ गया। थैंक यू सो मच नलनी। हाँ वैसे ये सच बात है कि अपना टाइम निकालना उनके लिए, लेकिन ये तो अपने ही है ना, अपनों के लिए तो टाइम निकालना ही होता है। सबसे बड़ा नेटवर्क होता है फैमिली नेटवर्क, और ये तब करता है वर्क जब इसमें प्यार का पानी आप डालते रहते हैं और जो रूट्स हैं उनको सींचते रहते हैं। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है उनके बारे में सोचना जिन्होंने हमेशा हमारे बारे में सोचा। सो अगर आपको कुछ कहना है तो 5491294 पर, और ये जो प्यार का सिलसिला आपका जो साथ मिला यूँ ही चलता रहे 24/7।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio

0: household and decoration tips brought to you by Lolo Hypermarket.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.
0: जैसे आप घर हो या दिल, थोड़ी सी सफाई, थोड़ा सा स्टाइल और लाइफ हो जाती है एकदम सुपर हिट। तो चलिए दोस्तों, टाइम है कुछ प्रैक्टिकल हाउसहोल्ड और डेकोरेशन टिप्स का, बिल्कुल इजी, क्लासी और बजट फ्रेंडली स्टाइल में। लिविंग रूम में अगर स्पेस छोटा लगता है तो फर्नीचर को रीअरेंज करना बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, और मिरर्स यूज करेंगे तो एकदम से इंस्टेंटली लगेगा ज्यादा ओपन, बिल्कुल मूवी सेट वाली फील। किचन काउंटर का ओवरलोड अगर हो गया है, आपको लगता है कि चीज़ें आपने रख दी हैं और ये ओवरलोड आंखों में खटकता है, तो रोज़ यूज़ होने वाली चीज़ें ही बाहर रखिए। क्लीन काउंटर, काम मूड और क्लासी किचन वाइब्स। बेड पर दो या तीन मैचिंग कुशन रखिए, बस ज़्यादा नहीं। कभी कभी सिंपल लुक ही सबसे रिच लगती है। और बाथरूम में एक छोटा सा इंडोर प्लांट या सेंटेड कैंडल रखिए और देखिए कैसे ऑर्डिनरी बाथरूम बन जाता है स्पा का कॉन्सर्ट। वहीं पर अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा टाइडी अप बिजनेस करना चाहते हैं तो रोज हर हफ्ते कुछ मिनट रखिए जहां पर म्यूजिक लगाएं, फैमिली को बुलाएं और घर को क्विक रिफ्रेश दीजिए ऐसे ही स्टाइल में। हाउसहोल्ड एंड डेकोरेशन टिप्स ब्रॉट टू यू बाय लोलो हाइपरमार्केट।
3: लोलो Saveur marine, gambas, ucette, 1 kg de Madagascar, 899 roupies. Sea Harvest, fish fingers, 300 grammes, 50 roupies 50. Ola, cream cheese, 200 grammes, 96 roupies 95.

0: Disco never dies.
1: हाँ, डिस्को नेवर डाइज। और यहाँ पर जो राइमिंग है, जो रिदम है, जो वाइब है, जो फीलिंग है, दैट आल्सो सेज़ ऑन आरएम 2 पर 24/7 म्यूजिक।

0: आइए सुनते हैं समाचार विदिमा के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिनिशा, सभी को नमस्कार। मॉरिशस में टेलीकम्युनिकेशन एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। ICTA ने देश भर में 3G मोबाइल सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की घोषणा की है। सरकार द्वारा मंजूर किया गया ये फैसला मोबाइल ऑपरेटरों के अनुरोधों के बाद दिया गया है, जिन्होंने पहले ही अपने नेटवर्क को हटाना शुरू कर दिया है। इसे पूरी तरह और अंतिम रूप से बंद करने की समय सीमा देर से देर 2028 तक तय की गई है। इसका उद्देश्य 4G और 5G नेटवर्क के विस्तार को गति देने के लिए जगह खाली करना है, ताकि अधिक तेज और अधिक विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। हालांकि अधिकांश मॉरिशस वासियों के पास पहले से ही आधुनिक स्मार्टफोन है और उन्हें कोई बदलाव महसूस नहीं होगा, लेकिन पुराने उपकरणों के मालिकों को इसके लिए तैयार रहना होगा। एक बार नेटवर्क बंद हो जाने के बाद केवल 3G के अनुकूल फोन और साथ ही कुछ व्हीकल ट्रैकर्स या कनेक्टेड डिवाइस भी पूरी तरह से काम करना बंद कर देंगी। आज ईद उल अधा मनाई जा रही है, जिसे बकरीद भी कहा जाता है। ये दिन इस्लाम का सबसे ख़ास और मुकद्दस त्यौहार है। ये त्यौहार इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को मनाया जाता है। ये मुख्य रूप से कुर्बानी, समर्पण और अल्लाह के प्रति अकीदत का पर्व है। इस मुबारक मौके पर मुस्लिम कौम के लोग अपने परिवार, अजीज़ों और रिश्तेदारों के साथ खुशियाँ बाँटते हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। पिछित रिविया में स्थित बेट ऑनलाइन सट्टा केंद्र में हुई हिंसक डकैती की जांच में एक नया मोड़ आया है। पिछित रिविया की CID और FIU वेस्टर्न ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें उस प्रतिष्ठान का एक कर्मचारी भी शामिल है, जिस पर इस साजिश में शामिल होने का संदेह है। ये घटना मंगलवार 26 मई की है। चाकू से लैस दो व्यक्ति अचानक आउटलेट के भीतर घुस आए और 2 लाख रुपये से भरा एक लिफाफा लेकर फरार हो गए। इस दौरान कैशियर को कोई चोट नहीं आई। जांच के दौरान आउटलेट के CCTV फुटेज को भी खंगाला गया। शुरुआती इनपुट्स के अनुसार एक कर्मचारी को बिना कैश काउंटर में

0: पैसे जमा किए सट्टा लगाते हुए देखा गया था। बताया जा रहा है कि चारों संदिग्धों ने नकाबपोश डकैती और इस साजिश में अपनी अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। प्लानमानियों के रहने वाले एक 44 वर्षीय व्यक्ति से कनाडा इमिग्रेशन से जुड़े एक कथित धोखाधड़ी के मामले में एफसीसी द्वारा पूछताछ की जा रही है। संदिग्ध ने कथित तौर पर कई पीड़ितों को कनाडा में नौकरी दिलाने और वहां भेजने का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठे थे। कुल ठगी गई राशि लगभग 3.5 मिलियन रुपए आंकी गई है। उसके घर पर की गई छापेमारी के दौरान दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। एफसीसी को ऑनलाइन फेक प्रोफाइल का इस्तेमाल किए जाने का भी संदेह है। अन्य पीड़ितों से भी एफसीसी के समक्ष सामने आने और अपनी शिकायत दर्ज कराने की अपील की गई है। विदेश की खबरों में केन्या की राजधानी नैरोबी से लगभग 120 किलोमीटर पश्चिम में स्थित गिलगिल के एक बोर्डिंग स्कूल में आग लगने से 16 छात्रों की मौत हो गई है। घायल होने के बाद अन्य 74 छात्रों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और यूके की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी के अनुसार 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर शुरू किए गए आक्रमण के बाद से अब तक लगभग 5 लाख रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। हालांकि फरवरी में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि 2022 से अब तक यूक्रेन ने 55,000 सैनिक खोए हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ ही 12 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। रिशलियो में 80 साल के 80 years old के श्री केवल चेदी, जो वाल नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे रिशलियो से उठाकर गांधी पालमा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। सोल्फेरिनो नंबर 2 वाकुआ में 77 साल के 77 years old के श्री माधो राधा, जो छोटे नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर सोल्फेरिनो नंबर 2 वाकुआ से उठाकर बालों सोल्फेरिनो नंबर 5 की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। फ्रांस में 75 साल के 75 years old के श्री महेश डुकारन, जो पहले मुसलमान कुंजू प्लैंडे पापाए रहते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1:30 बजे फ्रांस से उठाकर जों शोल दे विल टैनर्स की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30। कालीमाई रोड दीपिने में 28 साल के 28 years old के श्री लीलेश्वर अमाता, जो कौशिक नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके पिता श्री परमेश्वर अमाता के घर कालीमाई रोड दीपिने से उठाकर पितों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। अवेन्यू फ्लॉम्बॉयों इजिडो रोज में 48 साल के 48 years old के श्री आनंदेव जोवाता, जो गासों नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे उनकी मां श्रीमती देविका जोवाता के घर एवेन्यू फ्लॉम्बॉयों इजिडो रोज से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। तमिल टेम्पल रोड सुरीनाम में 66 साल के 66 years old के श्री धीरज बंचाराम, जो चांद नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर तमिल टेम्पल रोड सुरीनाम से उठाकर सुयाक की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Retro Rhythm. RM2.

0: Retro Rhythm.
1: स्टूडियो की घड़ी में 12:11 हो चुके हैं, माय डियर लवली लिसनर्स. हाँ जी, हम आ गए हैं आप लोगों का साथ देने के लिए इन दिस ब्यूटीफुल शो, एंड दैट्स योर लवली रेट्रो रिदम. जी हाँ दोस्तों, हैप्पी फ्राइडे टू ऑल ऑफ यू. आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती, जहां म्यूजिक सिर्फ बजता नहीं है, दिल में उतर जाता है. मैं हूं आपका आजय, यानी कि आजय की निशा गई है साथ देने के लिए. और वक्त आ गया है नॉस्टैल्जिया का वॉल्यूम फुल करने का, क्योंकि ये आज टाइम है फॉर योर रेट्रो रिदम. सो विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून. नमस्कार और गिनेशा का प्रणाम स्वीकार कर लीजिए. 60s के भी गाने, 70s, 80s या 90s के वो एवरग्रीन बॉलीवुड

बॉलीवुड गाने, वो मेलोडीज जो आज भी दिल को टच करते हैं, वो बीट्स जिनके बिना फ्राइडे आफ्टरनून इनकम्प्लीट होती है, तो हम लेकर आए हैं खासकर आप लोगों के लिए। तैयार हो जाइए एक म्यूजिकल टाइम मशीन राइड के लिए माय डियर, जहां किशोर दा की मस्ती होगी, लता जी की मैजिक होगी, रफी साहब का रोमांस होगा और पुराने बॉलीवुड का असली स्वैग होगा, जिसे उषा उथप्पा के खूबसूरत आवाजों में। वैसे फिलहाल के लिए अगर अभी आप लंच खा रहे हो, सो बोन अपेटाइट टू यू माय डियर। रेट्रो रिदम का साथ हर मूड बनेगा सुपर हिट अभी। और हाँ, आज गाने सिर्फ बजेंगे नहीं, यादें भी वापस लेकर आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, क्योंकि रेट्रो रिदम स्टार्ट शुरू हो चुके हैं आपके और हमारे बीच में, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती पर 5499 1294 पर। स्टार्ट सेंडिंग मी योर डेडिकेशंस।

0: बिल्कुल जी, खूबसूरत गानों का ये सिलसिला बस चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में ऑन RM2 रेडियो मसी। माफ़ी गुस्ताखी, माफ़ मेरी जान, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज फ्राइडे है, मैंने हैप्पी फ्राइडे भी बोल दिया। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, माफ़ी मांगूंगी और लेट्स सेलिब्रेट दिस ब्यूटीफुल थर्सडे टुगेदर। वैसे देखा जाए तो रोज़ एक अच्छा ही दिन होता है। यू शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव अबाउट एवरी डे, थिंक पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव एंड जस्ट बी पॉजिटिव इन लाइफ।
1: रेट्रो रिदम।
0: I really hope that you are keeping good. 12:24 ho chuke hain to all those who are having their lunch. Bon appetit, yummy yummy khana kha rahe ho ji, and the show is live on TikTok or into Radio Masti. Hamara saath dene ke liye bahut bahut shukriya ji. Aur aaj ke din hamare jitne bhi musalman bhai behan hain mana rahe hain Eid ul Adha. Bilkul aap sun rahe hain Radio Masti aur hamari puri team ki taraf se aap sabhi ko Eid ul Adha ki dher sari shubhkamnaen, mubarakbad hain aap sabhi ko, aapke parivar walon ko. Allah tala kare aapki har dua kabool करे और आपके घर को खुशियों से भर दे, और हमारी तरफ से lots of love and happiness। ये पाक त्योहार आपकी जिंदगी में खुशियां, बरकत और मोहब्बत लेकर आए। वैसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस ईद को प्यार और शुक्रान के साथ मनाइए। सो ईद उल अदा मुबारक हमारे पूरे टीम की तरफ से। सो माय डियर लवली पीपल, यू नो द नंबर राइट, 5499124 पर कीप ऑन सेंडिंग मी योर डेडिकेशंस। एंड हियर वी गो, द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू क्रिश्ती फ्रॉम रिविया डी क्रेयोल। हस्बैंड विक्रम के लिए, आपके बच्चे के लिए, बच्चों का नाम है कौशल एंड कौशिक, एंड टीम के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वन अब्दुल जी एंड सैरा बानू जी, विशिंग ऑल डियर फ्रेंड्स ईद उल अदा मुबारक। आपको भी मुबारकबाद देती हूँ मेरी जान, एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। जाना मेरी जाना, द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू एंड फॉर रीमा, जिनीता, शिष्टान, सिनी, सिल्विया और यूवी कृषि सिवसगन परिवार फ्रॉम फ्लैक। लव यू माई ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू टू। हे डियर, ईद मुबारक आपको भी, एंड दैट्स आवर फेस। यू आर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड शी इज सेलिब्रेटिंग हर 66th बर्थडे टुडे। भर भर दिन आए फिल्म फर्ज, कोशिश करेंगे टू प्ले दैट। दैट्स कमिंग फ्रॉम अहमद एंड विशिंग हर लॉन्ग गुड हेल्दी एंड लवली लाइफ। So just stay tuned and stay connected, and here we go. The next one goes out to you, my dear.

RM2 रेडियो मस्ती बारह बज के 37 मिनट्स हो चुके हैं। खूबसूरत लवली सॉन्ग स्पेशली फॉर यू ऑन दिस ब्यूटीफुल थर्सडे आफ्टरनून। माय डियर जी, हाँ थर्सडे है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि फ्राइडे वाला वाइब्स मुझे मिल रहा है इन खूबसूरत गानों से। तो चलिए जी, जस्ट स्टे कनेक्टेड ऑन योर नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑन द कीप ऑन एंजॉयिंग द गुड म्यूजिक एंड इफ यू आर एट वर्क

0: Retro Rhythm.
1: 5499 पर चलिए जी, लेट्स चेक इट आउट, किसने किसको याद किया है आज के दिन, थर्सडे 28th of May 2026। वैसे आज बहुत सारे जो हमारे दोस्त लोग हैं, जो हमारे मुसलमान भाई बहने हैं, मना रहे हैं ईद उल अदा। सो बकरीद मुबारक आप सभी लोगों को, और साथ साथ में वी हैव सम ब्यूटीफुल डेडिकेशन यहाँ पे। एंड अगला गाना जो है डैट मैन के लिए, हस्बैंड डैट मैन के लिए डेडिकेट करना चाहेंगे जेविन के लिए, एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम ज्ञानी जो मिडलैंड से हमारा साथ दे रहे हैं। एंड वेल आई जस्ट लव दिस नाइस एंड लवली गाने जो आप प्ले कर रहे हो, एंड दैट्स कमिंग फ्रॉम रागिनी। थैंक यू सो मच, अगर आप इस शो को एंजॉय कर रहे हो तो अच्छी बात है मेरी जान। हमेशा की तरह स्वीट स्वीट गाने बज रहे हैं, और हमारी बहन शोभा अनुराधा लक्ष्मी और आपके लिए भी, हम रेडियो मस्ती की टीम के लिए भी डेडिकेट करना चाहेंगे Happy Thursday to you, Anita from Ficon Flag. And we do have next one, Sweetie and Kamlesh ke liye, grandchild Sheshna, Johanna and Rohan ke liye, and that's coming from Ragini from Mosalma, Sans Souci. And Sangar from France, thank you so much for choosing us as your radio partner. A face from Australia jo hai, hanji humne aapka message padhe, and you're saying thank you for that. You're most welcome, my dear. Hey Mauritius, and yes, music acha lag raha hai aapko. So एक गाना है जो आपको आपको स्कूल की यादें दिलाती है, नॉस्टैल्जिया ऑफ कोर्स। थैंक यू वेरी मच माय डियर, एंड आई फॉरगॉट टू टेल यू, ऑफ कोर्स आप नहीं भी बताते तभी हमें पता चलता है, फ्रॉम द सिटी ऑफ लव, अ बिग फैन ऑफ कोर्स ऑफ पुराने गाने, एंड दैट्स मिस्टर डेव जो हमेशा हमेशा हम लोगों का साथ देते रहते हैं, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। तो चलिए जी, इट्स अ थर्सडे एंड द वाइब इज एब्सोल्युटली ऑल इज गोल। आप ट्यून हैं अपने रेडियो मस्ती पर, जहां हर गाना एक कहानी है और हर मेलोडी हमेशा एक इमोशंस बन ही जाते हैं। और अग्नी शाह जो है ऑन द माइक साथ दे रहे हैं, और अगले एक घंटे के लिए आई विल बी आपका साथ देने के लिए। और पुराने बॉलीवुड को हम थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं, जस्ट इमेजिन बेल बॉटम्स, कैसेट टेप्स, डिस्को लाइट्स या फिल्मी रोमांस का वो जमाना, सब कुछ वापस आ रहा है इन योर रेट्रो रिदम। बस यूं ही साथ देते रहना, और वैसे ही एंजॉय करते रहना हर एक खूबसूरत गाने को जो हम पेश कर रहे हैं आप लोगों के लिए।
0: RM2 Radio Musti.

0: सत्ते पे सत्ता से लिया गया ये खूबसूरत सा गाना इस मूवी से, ऑफ कोर्स सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग आशा भोसले, किशोर दा और आरडी बर्मन की आवाजों में, भूपिंदर की आवाजों में, सपन चक्रवर्ती एंड बासवन उनके इतने सारे कोरस, और ये गाना स्पेशली जाता है फॉर यू मिस्टर चावला जो हमारा साथ दे रहे हैं, मिस्टर राहुल चावला है, वी गॉट दिस वन वाज स्पेशली फॉर यू ब्रो।
1: Join the RMG team at Dream Prize Boulet Rouge Flag this Saturday, 30th May from 11 a.m. to 2 p.m. Come and celebrate Mother's Day with gifts, new products tasting and games. Guess the fruits and win with Eagle Brand. Eagle Brand, the art of spice. RMG
2: Radio Musti.
3: Nile nile ambar par chand jab aaye pyar barsa.
4: Purane gaane सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते।

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती RM2
1: रेडियो मस्ती।
3: Chez Loulou, Save Marine, crevette headless, 31, 40, 500 grammes, du Madagascar, 375 roupies. Save Marine, catouf, filet 1 kg du Madagascar, 580 roupies. Mojo, food cocktail, 820 grammes, 90.

0: आइए सुनते हैं समाचार आशिता के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले स्थानीय खबरें। प्रणमानियों की 44 वर्षीय निवासी कुमार आनंद से इस समय FCC द्वारा पूछताछ की जा रही है। ये जांच कनाडा इमिग्रेशन प्रक्रिया से जुड़ी कथित धोखाधड़ी के मामले में की जा रही है। आरोप है कि संदिग्ध ने लोगों को कनाडा में नौकरी और वहां भेजने का साझा का झांसा देकर कई पीड़ितों से पैसे हासिल किए। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने फर्जी ऑनलाइन फाइल्स का इस्तेमाल कर कई लोगों को निशाना बनाया। अब तक करीब 35 लाख मॉरिशन रुपए की धोखाधड़ी का अनुमान लगाया गया है। हालांकि जांचकर्ताओं का मानना है कि ये रकम और बढ़ सकती है। संदिग्ध के घर पर की गई तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। FCC के अनुसार आरोपी ने इन गतिविधियों से आर्थिक लाभ उठाया हो सकता है, जो अफियामला 2002 और FCC एक्ट 2023 के तहत अपराध की श्रेणी में आ सकती हैं। FCC ने बताया कि इसी तरह के मामलों में अन्य पीड़ितों के भी सामने आने की संभावना है। संस्था ने सभी प्रभावित लोगों से आगे आकर जांच में सहयोग करने की अपील की। मॉरिशस में दूरसंचार सेवाएं अब एक नई दौर में प्रवेश कर रही हैं। इक्टा यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्राधिकरण ने पूरे द्वीप में 3G मोबाइल सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की घोषणा की है। सरकार द्वारा मंजूर किया गया ये फैसला मोबाइल ऑपरेटरों की मांग के बाद

0: अदली आ गया है, जिन्होंने अपने नेटवर्क को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। 3G सेवा को पूरी तरह बंद करने की अंतिम समय सीमा वर्ष 2028 तक तय की गई है। इसका उद्देश्य 4G और 5G नेटवर्क के विस्तार के लिए अधिक स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराना है, ताकि लोगों को तेज और अधिक भरोसेमंद इंटरनेट सेवाएं मिल सकें। हालांकि अधिकांश मॉर्शन पहले से ही आधुनिक स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें कोई खास बदलाव महसूस नहीं होगा, लेकिन पुराने उपकरणों का उपयोग करने वाले लोगों को तैयारी करनी होगी। 3G नेटवर्क बंद होने के बाद केवल 3G पर चलने वाले मोबाइल फोन, कुछ वाहन ट्रैकर्स और अन्य कनेक्टेड डिवाइस हमेशा के लिए काम करना बंद कर देंगे। पच्चीस रिविया में स्थित बेट ऑनलाइन आउटलेट में हुई लूटपाट मामले की जांच में नया खुलासा हुआ है। पच्चीस रिविया की CID और FIO वेस्टर्न की टीम ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में जुआ केंद्र का एक कर्मचारी भी शामिल है, जिस पर वारदात में शामिल होने का संदेह है। ये घटना मंगलवार 26 मई को बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार चाकू से लेस 2 लोग इस बेट ऑनलाइन केंद्र में घुस आए और करीब 2 लाख मॉरिशन रुपए से भरा लिफाफा लेकर फरार हो गए। इस दौरान कैशर को कोई चोट नहीं पहुंची। जांच के दौरान पुलिस ने केंद्र के CCTV फुटेज की भी जांच की। शुरुआती जांच में एक कर्मचारी को पैसे कैशबॉक्स में जमा किए बिना जुआ खेलते हुए देखा गया। पुलिस के अनुसार चारों आरोपियों ने इस नकापोश लूट और साजिश में अपनी अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है। मामले की जांच अभी जारी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केन्या की राजधानी नैरोबी से लगभग 120 किलोमीटर पश्चिम में स्थित गिलगिल प्रांत के बोर्डिंग स्कूल में लगी भीषण आग में 16 छात्रों की मौत हो गई। घटनास्थल पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने पत्रकारों को भी ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस हादसे में घायल हुए 74 अन्य छात्रों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रही सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। 80 साल के 80 years old के श्री केवल चेदी जिन्हें वाल के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे रिशल्यू मुगा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन चिड़िया 2 PM। सोल्फेरिनो नंबर दो वाकुआ में 77 साल के 77 years old के श्री माधो राधा जिन्हें छोटे के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर नंबर 2 सोल्फेरिनो वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बालों सोल्फेरिनो नंबर 5 की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टूटिया 2 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति मानी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Retro Rhythm.
2: RM2.

That's your retro rhythm. जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है इन दिस ब्यूटीफुल शो, जहाँ हर सुर है टाइमलेस और हर गाना पूरे गोल्ड. आज हम लेकर आए हैं बॉलीवुड के वो एवरग्रीन जेम्स जो जनरेशन से जनरेशन तक सुपरहिट ही रहते हैं. दिल को रिलैक्स करने वाली सॉफ्ट मेलोडीज, डांस फ्लोर हिला देने वाले डिस्को ट्रैक्स और वो रोमांटिक क्लासिक्स जो सीधा हार्ट हिट कर लेते हैं. तो अगर आप फिलहाल गाड़ी चला रहे हो, हम तो बस इतना कहेंगे सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि दिस म्यूजिकल जर्नी इज गोइंग टू बी स्ट्रेट टू द गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड. और हमेशा याद रहे कि ओल्ड सॉन्ग्स नेवर गेट ओल्ड एंड दे बिकम लेजेंड्स. बिल्कुल जी, रेट्रो रिदम का जो सेकंड आवर है स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती पर. सो वंस अगेन अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. नमस्कार जी और गिनीशा का प्रणाम. सो माई डियर एंड लवली लिसनर्स, 5499-1294 पर कीप ऑन सेंडिंग मी योर डेडिकेशंस.

0: रेडियो मस्ती
1: फ्रेश फ्लोरा मैरिनी फ्लोरिस्ट विशेस यू अ हैप्पी मदर्स डे. RM2
0: रेडियो मस्ती.

0: Retro Rhythm.
1: गिने चुने नगमे लेकर आए हैं आप लोगों के लिए स्पेशली इन योर रेट्रो रिदम। जी हाँ दोस्तों, गिनेशा साथ दे रही हैं ऑन द माइक और आई गॉट सम ब्यूटीफुल एंड लवली मैसेजेस जो आपने भेजे हैं 15491294 पर। धनेश्वर जी, उनकी पत्नी सुनीता और देव रेखा संजीव, निशा रानी, मीना ऋषि और देवदोसिन सनिचर और काउलिसा परिवार भी हमारा साथ दे रहे हैं फ्रॉम बॉम्बू। थैंक यू सो सो मच एंड हे आई होप यू आर डूइंग गुड एंड सिलेक्शंस ऑफ सुपर गिने, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशली कनिष्का फॉर यू माई डियर एंड हियर वी गो द नेक्स्ट वन। विश्वानी डुमन के लिए वकवा से अच्छे अच्छे गाने सुन रहे हैं, सो ये गाना हो जाए स्पेशली फॉर योर सिस्टर इंदिरा, शारदा और सहेली नीला, प्रतिभा, शुभा और गीता के लिए। थैंक यू सो सो मच एंड वी डू हैव नेक्स्ट वन फॉर यू बिंदू, स्वीटू, लड्डू, लिसनिंग रेडियो मस्ती को एंड क्लीनिंग अप द किचन। सो कुराज टू यू माई ब्यूटिफुल एंड द फैमिली के लिए पूजा, प्रीतिश एंड संतनु, वी आर एक्चुअली टुगेदर, और हस्बैंड का मूड ऑफ है, लव यू ऑल, कोई बात नहीं, उनका मूड खिलखिला करेंगे अगले गाने के साथ। सो बर्थडे सॉन्ग फॉर मिथिला ऑफ ग्रोबियो सेलिब्रेटिंग फर्स्ट बर्थडे, सो हैप्पी बर्थडे टू यू एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम दादा आनंद एंड साधना आपकी दादी की तरफ से। अगला गाना जो है स्पेशली फॉर यू हेमा एंड वो बोलते हैं द सॉन्ग्स आर रॉकिंग, प्रोग्राम इज रॉकिंग एज यूजुअल एंड आई नेवर मिस योर प्रोग्राम, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग ट्यून ऑन योर नंबर वन रेडियो स्टेशन। मीठी निकित, जियाना, रियाना एंड भोला, विहान, कनिष, शिवंश, कियांश, शिव, गुरु, सिटल एंड फैमिली की तरफ से जो बुआ रूज पॉम्पले मुझसे साथ दे रहे हैं अगला गाना आप लोगों के नाम एंड वी डू हैव राजा के लिए ये अगला गाना नीना की तरफ से। नेक्स्ट वन है एवरी चॉइस, एवरी गाने बहुत ही अच्छा है, नाइस चॉइस एंड स्वीट गाने, अमर फ्रॉम ग्रांड रिट्रीट भी साथ दे रहे हैं। तो चलिए जी, ये थे आपके कुछ प्यारे प्यारे डेडिकेशन एंड आई एम गोइंग टू प्ले वन ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर यू एंड इट्स टेकन फ्रॉम द मूवी यालगार। हाँ जी, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट एज वेल एंड चलिए साथ में लेट्स ऑल एंजॉय दिस वन।

0: Such a beautiful and mesmerizing song, especially आप लोगों के लिए कुमार सानू की आवाज में. बिल्कुल जी, अगर आप उनके die hard fan हैं, I'm pretty much sure कि आप रेडियो के उस तरफ गुनगुना रहे होंगे और अपने प्यार को जरूर याद कर रहे होंगे.
1: Retro rhythm.
0: तो चलिए जी, चेक योर टाइम. स्टूडियो की घड़ी में 1:44 हो चुके हैं. यू आर लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन, यानी कि रेडियो मस्ती. जी हाँ, एंड इट्स मी किनिशा, ऑन द माइक साथ दे रही हूँ. और फिलहाल के लिए आई गॉट योर डेडिकेशंस, जो आपने बड़े प्यार से लिखे हैं, किसी को याद करते हुए, किसी को जहन में रखते हुए, कि चलिए उनके नाम में एक गाना डेडिकेट किया जाए इन दिस ब्यूटिफुल शो ऑन रेडियो मस्ती, क्यों नहीं. सो वी हैव संगर फ्रॉम फ्रांस, बोलते हैं नॉस्टाल्जिया. जी हाँ, ऐसे गाने जब बजते हैं ना, तो वाकई खींच के लेके जाते हैं आपको अपने खूबसूरत जिंदगी के उस पल में, जहाँ पे आप हमेशा मुस्कुराते रहते थे. तो चलिए जी, द नेक्स्ट वन गोज आउट टू ऑल वंडरफुल मदर्स आउट देयर, विशिंग ऑल ऑफ देम हैप्पी मदर्स डे इन एडवांस, एंडलेस सपोर्ट. एंड चलिए जी, ये है हमारे प्यारे लिसनर की तरफ से, जिनका नाम है गायत्री. एंड सिमला फ्रॉम ला सोस क्या बोन, कैसे हो मेरी जान. अगला गाना के पूरे परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, एंड सभी रेडियो मस्ती के स्टाफ के लिए, खासकर आपके लिए धन्यवाद जी. एंड यू टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड एंजॉय द रेस्ट ऑफ द शो. टुडे लिटिल बेबी का जन्मदिन है, वो शीता. दैट्स अ लवली नेम, वो शीता वेदांशी होरोधन. सो विशिंग यू अ मैजिकल बर्थडे माई डियर, एंड बेस्ट विशेज टू यू. एंड आई जस्ट वांट टू विश अ हैप्पी 90th birthday to lovely grandma, jinka naam hai Erama Poligadu, jo rehti hai Tayak mein. Dharan Shweta Ravish Prushala Vishana Padu families ki taraf se. And Chandrani Preeti Sabichulan Harak Parivar ke liye, jo Aus Jonse ke rehne wali hai. The next one goes out to you. And here we go, without wasting no time, let's hit the next one on Radio Mastish.

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनीशा टू से गुड बाय टू यू. इजाजत दीजिए मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स. फिलहाल नीलमणि आने वाली है इन योर बॉम्बे डायरीज, या जहाँ पे वो लेकर आई है बहुत सारे नए बॉलीवुड गाने, योर डेली बॉलीवुड गॉसिप्स, हॉट एंड स्पाइसी गॉसिप्स के लिए. सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड. डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.

0: तो आइए सुनते हैं समाचार आशिता के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचार में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। अमरीकी दूतावास ने राजीव गांधी साइंस सेंटर के सहयोग से पिछले गुरुवार यानी 21 मई 2026 को फ्रीडम 2050 कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम अंतरिक्ष नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित था। सम्मेलन और संवाद सत्रों के माध्यम से इस पहल का उद्देश्य ये दिखाना था कि विज्ञान और टेक्निक किस तरह शिक्षा को बदल सकती हैं और युवाओं को भविष्य के स्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित से जुड़े करियर के लिए तैयार कर सकती हैं। सम्मेलन और संवाद सत्रों के माध्यम से इस पहल का उद्देश्य ये भी दिखाना था कि कार्यक्रम में नई तकनीकों, अंतरिक्ष अनुसंधान और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में नवाचार की भूमिका क्या है। और आज 28 मई को मुस्लिम समुदाय ईद उल अदा मना रहा है, जो इस्लामी कैलेंडर के सबसे बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है। ये पर्व पैगंबर इब्राहिम की अल्लाह के प्रति श्रद्धा और समर्पण की याद में मनाया जाता है। इस खास दिन की शुरुआत सुबह की नमाज से हुई, इसके बाद कुर्बानी की रस्म अदा की गई, जो पैगंबर इब्राहिम की आस्था और परीक्षा का प्रतीक माना जाता है। ईद उल अदा का ये त्यौहार परिवार और अपनों के साथ खुशियां बांटने, मेल मिलाप और भाईचारे का संदेश भी देता है। कनमानियों के 44 वर्षीय कुमार आनंद ने से इस समय FCC द्वारा पूछताछ की जा रही है। ये जांच कनाडा इमिग्रेशन प्रक्रिया से जुड़ी कथित धोखाधड़ी के मामले में की जा रही है। आरोप है कि संदिग्ध ने लोगों को कनाडा में नौकरी और वहां भेजने का झांसा देकर कई पीड़ितों से पैसे हासिल किए। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने फर्जी ऑनलाइन फाइल्स का इस्तेमाल कर कई लोगों को निशाना भी बनाया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मई के अंत में पश्चिमी यूरोप, सऊदी अरब और उत्तरी भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। खासतौर पर मक्का में हज यात्रा की शुरुआत के बीच बढ़ती गर्मी लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल रही है। अत्यधिक तापमान के कारण मानव शरीर की तापमान नियंत्रित करने की प्राकृतिक क्षमता प्रभावित हो रही है। इसके चलते लोगों को नई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और समय से पहले मौत के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।

0: शोक समाचार सुनिए। कौलाबू तिया रूज में 88 साल के एडीएड यजोल के श्री लक्ष्मण मोहाबे जिन्हें भाई लक्ष्मण के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 1 बजे उनके बेटे महेंद्र मोहाबेर के घर कौलाबू तिया रूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही ब्रिलिक शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 1 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies.
5: Radio Musti.
6: Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: गुड आफ्टरनून, 2:07 हुए हैं। यो वाइबिंग अभी के लिए बॉम्बे टॉकीज के साथ, जहां हर गॉसिप है, स्पाइसी म्यूजिक है, आइकॉनिक और ड्रामा प्योर बॉलीवुड स्टाइल में। मैं हूं नीलमणि एंड ट्रस्ट मी, आज का प्लेलिस्ट ज्यादा एडिक्टिव है। तो इस आफ्टरनून को बनाते हैं द बेस्ट आपके ही आरएमजू रेडियो मस्ती पर।
1: मोर म्यूजिक इन द मिक्स।
0: आज आजादी है बॉम्बे टॉकीज़ रेडियो मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।

0: Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: वैसे लार परी का तो पता नहीं, लेकिन आज है वर्ल्ड पैशन फ्रूट मार्टिनी डे। वैसे ही बस एक ही दिन बचा है, कह सकते हैं बस कुछ ही आवर्स बचा है फ्राइडे के लिए। तो आज अपने क्रिएटिविटी को यूज कीजिए और प्रिपेयर कीजिए कुछ वर्ल्ड पैशन फ्रूट मार्टिनी डे को सेलिब्रेट करने के लिए। तो प्रिपेयर करना कुछ और इन्जॉय करते हैं साथ में आपके आरएम2 रेडियो मस्ती पर।
1: रेडियो मस्ती इन द मिक्स। Radio Musti feels a musti in the mix.

0: Crikey's
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
3: यस बॉलीवुड गॉसिप टाइम. ऐसा लग रहा है कि रोमांस फिर से ब्लूम कर रही है बी टाउन में. यस रूमर्स ऑफ फ्लाइंग अराउंड कि एक सर्टेन बॉलीवुड एक्टर अपनी को स्टार के साथ लिटिल टू मच टाइम स्पेंड कर रहा है. एम पापराज़ी ने उनको स्पॉट किया है सेम रेस्टोरेंट से निकलते हुए. ये कोइंसिडेंस है या फिर नए कपल का अलर्ट, बिना नाम बताए ही आपने गेस कर लिया होगा ना. यस मैं बात कर रही हूँ हमारे सियारा कपल के बारे में. तो लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे. अभी के लिए उसी मूवी का एक रिमिक्स सुनते हैं और आपके इस आफ्टरनून को बनाते हैं ब्यूटीफुल.
2: रेडियो मस्ती
0: हिट म्यूजिक ओनली
2: फील्स अ मस्ती.

0: माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है।
1: माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा।
0: उनके नाम कीजिए एक मुस्कान, जिन्होंने हर दर्द छुपाकर हमारी हर खुशी सजाई। सुबह की प्रार्थना हो या रात की चिंता, माँ हर पल हमारे साथ चलती है। तो इस मदर्स डे बस एक बार गले लगाकर कह दीजिए, माँ आप हैं तो सब है। हैप्पी मदर्स डे आरएमटू की पूरी टीम की तरफ से।

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Bombay Talkies
1: Radio Musti
2: Radio Musti.
3: तो अभी चेक करते हैं आपके मैसेजेस 5491294 पर जो आपने भेजे हैं। संगर जी फर्स्ट से कनेक्टेड है हमारे साथ, आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ। दीपा जी भी है न्यूगोव से हमें सुन रहे हैं। उनकी बेटी जो है करिश्मा ने हमें मैसेज किया है, वो कह रही है कि वो अपनी मम्मी और मौसी को पैम्पर करने के लिए उन्होंने मसाज बुक किया है। कितने लकी है वो, तैयारियाँ सेट करके रखे हैं आपने, क्या बात है। तो आई होप कि आप उनके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके एंड बड़ी सी झप्पी भी देना हमारी तरफ से। एंड ऐसे ही स्टे ट्यून क्योंकि और भी गॉसिप्स लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट आवर में। फॉर नाउ वो ग्रूव करते हैं गुड म्यूजिक के साथ, व्हिच इज हैपनिंग ओनली ऑन आरएम2 रेडियो मस्ती।
0: आरएम2
2: रेडियो मस्ती।
4: Chez Lolo, saveur marine, gambas, ucette, 1 kg.

RM2. Radio Musty. In the mix.

0: Talkies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: यस, आज है लास्ट डे अपने स्क्रीनशॉट भेजने के लिए। अरे आपको याद नहीं है, 2 टिकट्स हेलीकॉप्टर राइड के लिए जीत सकते हो आप अगर आप डाउनलोड करते हो MBC ऐप 1.0 को। साइन इन करके अपने अकाउंट का स्क्रीनशॉट आपको भेजना है 5499124 पर, एंड शॉर्ट लिस्टेड होकर आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। ट्राई करना जरूर। गुड लक टू यू।
4: À l'occasion lancement MBC Play, préparez-vous pour décoller. MBC, en collaboration avec Mauritius Helicopter Limited, peut offrir à l'essence des grands gagnants pour un pot d'étiquette Saken pour un hélicoptère Joyride exceptionnel dans région Sud-Est, l'île Maurice. Pour participer, download l'application MBC Play et crée un compte. Depuis les 18 jusqu'à les 28 mai, reste à l'écoute ban radio MBC. Chaque jour, ban animateur radio pour inviter ban auditeur à voyer un screenshot de message confirmation qu'ils ont fini recevoir.

0: Cine sunteți în 7 sau acea rapsie și ta? Good afternoon.
1: नमस्कार संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहली स्थानीय खबरें। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनकी पत्नी श्रीमती वीना राम गुलाम ने कल लालमाटी में आयोजित शिव महापुराण की कथा में भाग लिया। इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान भक्तों में शिव भक्ति के महत्व को लेकर आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाया जा रहा है। ये कथा रविवार तक चलेगी। पिछित रिविया में स्थित बेट ऑनलाइन आउटलेट में हुई लूटपाट मामले की जांच में नया खुलासा हुआ है। पिछित रिविया के सीआईडी और एफआईओ वेस्टर्न की टीम ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में जुआ केंद्र का एक कर्मचारी भी शामिल है, जिस पर वारदात में शामिल होने का संदेह है। ये घटना मंगलवार 26 मई की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार चाकू से लैस 2 लोग इस बेट ऑनलाइन केंद्र में घुस आए और करीब 2 लाख मॉरिशन रुपए से भरा लिफाफा लेकर फरार हो गए। इस दौरान कैशियर को कोई चोट नहीं पहुंची। जांच के दौरान पुलिस ने केंद्र के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की। शुरुआती जांच में एक कर्मचारी को पैसे कैश बॉक्स में जमा किए बिना जुआ खेलते हुए देखा गया। पुलिस के अनुसार चारों आरोपियों ने इस नकाबपोश लूट और साजिश में अपनी अपनी भूमिका स्वीकार कर ली है। मामले की जांच अभी जारी है। मॉरिशस में दूरसंचार सेवाएं अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही हैं। इक्टा यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्राधिकरण के पूरे द्वीप में 3G मोबाइल सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की घोषणा की गई है। सरकार द्वारा मंजूर किया गया ये फैसला मोबाइल ऑपरेटरों की मांग के बाद लिया गया है, जिन्होंने अपने नेटवर्क को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। 3G सेवा को पूरी तरह बंद करने की अंतिम समय सीमा वर्ष 2028 तक तय की गई है। इसका उद्देश्य 4G और 5G नेटवर्क के विस्तार के लिए अधिक स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराना है, ताकि लोगों को तेज और अधिक भरोसेमंद इंटरनेट सेवाएं मिल सकें। हालांकि अधिकांश मॉरिशन पहले से ही आधुनिक स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें कोई खास बदलाव महसूस नहीं होगा, लेकिन पुराने उपकरणों का उपयोग करने वाले लोगों को तैयारी करनी होगी। 3G नेटवर्क बंद होने के बाद केवल 3G पर चलने वाले मोबाइल फोन, कुछ वाहन ट्रैकर्स और अन्य कनेक्ट डिवाइस हमेशा के लिए काम करना बंद कर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजरायली सेना के अनुसार दक्षिण लेबनन में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाते हुए कई हवाई हमले किए गए। लेबनन के प्रमुख शहरों में से एक टायर से सामने आए वीडियो में धूल से ढके लोग ढही हुई इमारतों के आसपास जमा दिखाई दे रहे हैं। बुधवार कल को इजरायली डिफेंस फोर्स ने लोगों से जहरानी नदी के उत्तर की ओर जाने की अपील की थी, जो इजरायल सीमा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। IDF ने चेतावनी दी थी कि वह बेहद ताकत के साथ कार्रवाई करेगा। इसराइल और ईरान समर्थित शिया संगठन हिजबुल्ला दोनों ने एक दूसरे पर 17 अप्रैल से लागू युद्ध विराम का उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं। लेबनन की सरकारी समाचार के अनुसार गुरुवार सुबह यानी आज टायर शहर और उसके पूर्वी इलाके में 2 बड़े इसराइली हमले हुए। टायर से प्राप्त फुटेज में दिखाई दिया कि रात भर विस्फोट और आग की लपटें वहां पर सुलग रही थी, जो आज सुबह तक जारी रही। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान की धन्यवाद और नमस्कार।

0: माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है।
1: माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा।
0: उनके नाम कीजिए एक मुस्कान, जिन्होंने हर दर्द छुपाकर हमारी हर खुशी सजाई। सुबह की प्रार्थना हो या रात की चिंता, माँ हर पल हमारे साथ चलती है। तो इस मदर्स डे बस एक बार गले लगाकर कह दीजिए, माँ आप हैं तो सब है। हैप्पी मदर्स डे आरएम2 की पूरी टीम की तरफ से।

0: Techies, Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू बॉम्बे टॉकीज विद निर्मनी। अगर आपने ये गाना सुना हुआ अभी तो बता देती हूँ, इट्स फ्रॉम बैंडिश। बैंडिश देखा है आपने तो आपको पता होगा कि ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और वेस्टर्न म्यूजिक के बीच का जबरदस्त म्यूजिकल बैटल। एक तरफ वी हैव क्लासिकल म्यूजिक की प्योरिटी, डिसिप्लिन और सालों की मेहनत छुपी हुई है, और दूसरी तरफ है वेस्टर्न। एंड यस, इसमें तमन्ना का मॉडर्न म्यूजिक स्टाइल और राधे की क्लासिकल रूट्स बार बार क्लैश करती है, लेकिन वही स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाता है। राधे प्रूव करता है कि क्लासिकल म्यूजिक ओल्ड फैशन नहीं है, टाइमलेस है, और ऑनेस्टली उनकी परफॉर्मेंस सीन से देख के प्यू गूज़बम्स आती है। तो चाहे क्लासिकल अलाप हो या फिर पॉप बीट ड्रॉप, असली म्यूजिक हमेशा दिल को कनेक्ट करता है, जस्ट लाइक इन यू बॉम्बे टॉकीज़। तो यही पर आरएम टू रेडियो बस्ती पर स्टे कनेक्टेड, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही जबरदस्त

0: Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: यस वेलकम गाने के साथ आपको फिर से वेलकम करती हैं, फिर से आपका स्वागत करती हैं। अगर अभी अभी आप कनेक्टेड हुए हैं आरएम जू रेडियो मस्ती के साथ, हे इट्स निर्मनी और चार बजे तक आपके साथ रहेंगे। अपने मैसेजेस डेडिकेशंस 5499124 पर भेजना ना भूले। एंड इफ यू ड्राइविंग राइट नाउ और ड्राइव सेफ स्टे सेफ, और नेक्स्ट गाना आपके नाम करते हैं कुछ पंजाबी मूव्स अगर आता है आपको, तो गेट रेडी साथ में ग्रूव करते हैं।
1: RM2 रेडियो मस्ती
3: फील्स अ मस्ती।
4: Yeah.

0: सांस सिर्फ एक शब्द नहीं पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है।
1: माँ मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा।
0: उनके नाम कीजिए एक मुस्कान जिन्होंने हर दर्द छुपाकर हमारी हर खुशी सजाई। सुबह की प्रार्थना हो या रात की चिंता माँ हर पल हमारे साथ चलती है। तो इस मदर्स डे बस एक बार गले लगाकर कह दीजिए माँ आप हैं तो सब है। हैप्पी मदर्स डे आरएम2 की पूरी टीम की तरफ से।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: हम दोनों तो नहीं है, एक ही निलमनी है जो आपके बॉम्बे टॉकीज में साथ दे रही है। वैसे और गॉसिप्स लेकर आई हूँ। फैंस कन्विंस्ड हो चुके हैं कि श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी सीक्रेटली एक नए प्रोजेक्ट टीजर पर काम कर रहे हैं। एंड यस, डांस वीडियो और स्क्रिप्ट वायरल हो गई है ऑनलाइन। ऑफिशियल कन्फर्मेशन तो अभी तक नहीं आई, लेकिन बॉलीवुड फैंस ऑलरेडी डिटेक्टिव मूड में चले गए हैं। बस क्या होगा आके देखेंगे। अभी के लिए नेक्स्ट गाना करते हैं आपके नाम। स्टे ट्यून्ड ऐसे ही आरएमटू रेडियो मस्ती के साथ। एंड कीप वाइबिंग।
1: आरएमटू रेडियो मस्ती फील्स अ मस्ती।

0: Bombay Talkies
1: Radio Musti
2: Radio Musti।
3: ऐसे अगर कोई प्रश्नों के साथ आला पकड़ के कोई क्वेश्चन पूछेगा तो लट्टू हो जाऊंगी यार। सोनू निगम की आवाज में दावज मैं तो जोगिया जोगिया बना तेरे इश्क में। परफेक्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक हैपनिंग राइट नाउ आपके ही बॉम्बे टॉकीज में। यस, मेरे बाद आने वाली है मनीषमा फॉर द मोस्ट वेटेड गेम। आपको बाद में मनीषमा ज्यादा ब्रीफ करेगी। अभी के लिए लेट्स डाइव राइट बैक मुस्कुराहट के साथ ही आपके आरएम2 रेडियो मस्ती पर।
2: RM2 Radio Musti
0: Hits Music Only
4: Radio Musti Feels a Musti

0: रेडियो मस्ती फील्स अ मस्ती।
1: जाने से पहले आपके लिए कुछ स्पेशल छोड़ के जा रही हूँ। कॉकटेल मूवी से है गाना अरिजीत सिंह की आवाज में। कल मिलेंगे, टिल देन स्टे सेफ, ड्राइव सेफ एंड स्टे कनेक्टेड ऐसे ही आपके आरएमजू रेडियो मस्ती के साथ।

0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
2: RM2.
0: Radio Musti.
2: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
2: Feel the Musti.
3: Time check. शाम के ठीक 4 बजे है. सुनते हैं अभी के लिए संक्षिप्त समाचार अशिता जी के साथ. नमस्कार आपको.
4: नमस्कार मनीष मौशताओं को भी नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है. सबसे पहली स्थानीय खबरें. बलकलावा के निवासी इलाके के पब्लिक बीच के एक हिस्से को लेकर चिंता जता रहे हैं, जिसे सन 2008 में सार्वजनिक तट की श्रेणी से हटाकर एक होटल के लीज में शामिल किया गया था. ये एक ऐसा मुद्दा है जो एक बार फिर मॉरिशस में समुद्र तटों तक सार्वजनिक एक्सेस को लेकर सवाल उठा रहा है. बेलों से रियों बेल के बीच तटों के कई हिस्से हैं जो सार्वजनिक नहीं रहे और जिन्हें निजी परियोजनाओं का हिस्सा बनाया गया है. ये बात जानने योग्य है कि देश के 322 किलोमीटर लंबे समुद्र तट में से आज मात्र 48 किलोमीटर तट आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक है. ऐसे में बीचेस तक जनता की पहुंच का मुद्दा सोच विचार का विषय जरूर बन गया है. पोर्टलिस में 3 दिनों तक चलने वाली चर्चाओं का केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र में गिरमिटिया मजदूरों का इतिहास रहा. बुधवार 27 मई 2026 से शुरू हुए इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में इतिहासकार, शोधकर्ता और विभिन्न संस्थागत प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं. इस कार्यक्रम का आयोजन अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य गिरमिटिया प्रणाली से जुड़े ऐतिहासिक धरोहर और उसके संरक्षण व हस्तांतरण पर चर्चा करना है. उद्घाटन समारोह में कई आधिकारिक वक्तव्य दिए गए, जिनमें कला एवं संस्कृति मंत्री का संबोधन भी शामिल रहा. प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनकी पत्नी श्रीमती वीना राम गुलाम ने कल लालमाटी में आयोजित शिव महापुराण की कथा में भाग लिया. इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान भक्तों में शिव भक्ति के महत्व को लेकर आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाया जा रहा है. ये कथा रविवार तक चलेगी. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मई के अंत में पश्चिमी यूरोप, सऊदी अरब और उत्तरी भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है. खासतौर पर मक्का में हज यात्रा की शुरुआत के बीच बढ़ती गर्मी लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल रही है. अत्यधिक तापमान के कारण मानवीय शरीर की तापमान नियंत्रित करने की प्राकृतिक क्षमता प्रभावित हो रही है. इसके चलते लोगों को कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और समय से पहले मौत के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है. विशेषज्ञों के अनुसार लगातार बढ़ती हीट वेव इंसानी शरीर पर भारी दबाव डाल रही है, जिससे बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों के लिए खतरा बढ़ रहा है. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला. साथ रही सुन पाएगी शुभ समाचार. सुनिए Avenue AI Filao Paime, Avenue AI Filao Paime, 91 साल की, 91 years old की, श्रीमती विलंबाली इलम्मा, श्रीमती विलंबाले इलम्मा, जिन्हें मामांबा के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके घर पाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमिशन टुमोरो एट 1 PM. थ्रुडरुस रोड ब्रह्मस्थान में 44 साल के, 44 years old के श्री महेंद्र सुब्रन, जिन्हें अनूप के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल 2:30 बजे उनके पिता लक्ष्मी प्रसाद सुब्रन के घर ब्रह्मस्थान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमोरो एट 2:30 PM. शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है.
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: Rockstar Vibes, Filmy Rides,
0: RM2.

0: was waiting for this song so many days. अभी तो आ गई है और नया यहाँ पर आपके लिए अजनत चुले मेरी चुनरी सनम आ गई है the best of song selections. वैसे talking about this song, यह जवानी तो इश्क होना है. वरुण धवन featuring of course with मृणाल ठाकुर and माँ की किरदार कौन सी एक्ट्रेस निभा रही है, वो है मोनी रॉय और साथ में है इस गाने में पूजा हेगड़े. क्या बात है, I guess some really really nice track tune in for you. Welcome back, it's your Raftaar Vibes.
1: Raftaar Vibes, filmy rides.
2: RM2
1: Radio Mastery.

0: फिल्मी राइड्स
1: और वेब टू
0: रेडियो मस्ती।

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और M2
2: रेडियो मस्ती।
3: Playing for you, Chaudhary, for you, ladies and gentlemen, the voice of Jubin Nautiyal or Yohani ke vaaz mein saath mein nibhati hai Yohani in the song. वैसे यहाँ पर we're talking about the concert live जो कि होने वाला है on the 30th of May 2026 को SBICC Pi में लगने वाला है ये live concert. वैसे सवाल ये रहा आपको बताना है कि Jubin Nautiyal का birth date कौन सा है. जी हाँ, हमने पिछली बार पूछा था कि कौन से ईयर में उनका जन्म हुआ था, लेकिन आज आपको बताना है कि उसका बर्थडे कब है. बताइए.

वैसे एक हिंट दूं, इसी आने वाले मंथ में है, ऊपर से वार है हमारे कंट्री में। बताइयो कि उनका जन्मदिन कौन है, कौन से दिन पर, और उसकी जो तिथि है, डेट है, बताइएगा ऑन दिस नंबर 5491294 पर। ऑल द बेस्ट विद द फुल नेम एंड एड्रेस। फिलहाल के लिए आप ना एंजॉय कीजिएगा, एक बार फिर से ये गाना चला रही हूँ मैं, चौधरी फॉर यू, हियर वी गो।

क्या बात है. वैसे ये गाना स्पेशली गोज आउट टू ऑल द ब्यूटीफुल म्यूजिक लवर्स एंड ऑल दोस पीपल ट्यूनिंग टू अस राइट नाउ, जो जुबिन नौटियाल को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं. वैसे उसका ये जो बर्थडे है बता दूं कौन सी तिथि पर आ रही है, 14th of June 1989 को उनका जन्मदिन हुआ है. हमारे साथ हमारे लकी विनर है, उनका नाम है करिश्मा. कंग्रेचुलेशन. हेलो जी करिश्मा जी, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो रैपिड इन सेंडिंग द मैसेजेस. एंड यहाँ पर आपको बता दूं कि आप बने हविजयता फॉर प्लैटिनम टिकट टू असिस्ट द स्पेक्टेकुलर जुबिन नौटियाल लाइव कॉन्सर्ट. वैसे साथ ही साथ आपको बता दूं, जॉइन द मैजिकल म्यूजिकल जर्नी ऑन सैटरडे 30th of May 2026 को सुबह के आज रात्रि के 8 बजे से लेकर यू नो देर रात तक होगी ये आपके लिए कंसर्ट एट SBICC 5.

0: वैसे ऑल द बेस्ट गुड टू ऑल दोस्त जो कि अभी तक बस काम कर रहे हैं. वैसे थोड़ा सा ओवर टाइम हो गया ना, कोई बात नहीं. यहाँ पर हम आपको कंपनी करेंगे विद द बेस्ट ऑफ सॉन्ग सिलेक्शंस. वैसे इस आफ्टरनून में एक बात थी हम आपसे शेयर करना चाहते हैं एक बार फिर से. आज आखिरी दिन है जहाँ पर हम एक लक ड्रॉ करेंगे अबाउट द MBC प्ले 1.0 न्यू वर्जन. जी हाँ, द न्यू वर्जन ऑफ MBC प्ले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और प्लीज सेंड मी एन स्क्रीन शॉट ऑफ योर MBC OTT विद द नेम ऑन 5499194 पर. और 5:30 बजे को आप तैयार रहिएगा. एक दो मेहमानों को हम चूज करेंगे यहाँ पर एक लकी ड्रॉ करने के बाद. टू पीपल हु विल बी आस्क ओनली वन क्वेश्चन. दोनों को एक ही टाइम पर जवाब देना होगा और द वन विद द क्विकेस्ट आंसर विल बी चोजन फॉर कल के लिए. कल के लिए आखिरी दिन है जहाँ पर 29th of May को होने वाला है द फाइनल ड्रॉ. क्या बता, आप हो सकते हो अगर आप आज क्वालिफाई हो सकते हैं. वैसे यहाँ पर आगे थे द बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स जैसे कि हमने कहा है. अभी 4:28 हुए हैं. आप जुड़े हैं आरएम जुड़ी रेडियो मस्ती के साथ.
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: आरएम टू रेडियो मस्ती.

0: FM2
1: Radio Musti.
2: Ougain, ça vous pas faire popcorn là là? Astier! Si me dis à Oki Popcorn, c'est une nouvelle façon pour gagner cashback le shopping. Ou sauter tellement content, non? Et ça cashback là, ou capable de transférer direct le compte la banque et l'air là, ou décider que ça n'a pas pour faire content avec sa petite casse là. Allons, pas tarder! Download application Popcorn depuis Play Store ou App Store, scan ou ban récit paiement si, et si dans le panier la man produit qui rapporte tout Popcorn. Ça fait bon! Popcorn! Fais la bouse d'où? Vite! Follow Popcorn Maurice. Slow Facebook.
1: Jubin Nautial. Live in Mauritius on Saturday, 30th of May. At SVICC Pi, winner of the Best Singer Award of 2025. Join us for a rocking concert with the best singer in Bollywood of our time. Do not miss it. Get your tickets at ticketbox.mu or call hotline 214-6464. Another great event organized by Gravity Zero.
3: National Women Entrepreneur Council organise 3 expo ventes à l'occasion Fête des Meilleurs les 28, 29 et 30 mai à Victoria Urban Terminal pour lui depuis 8h matin jusqu'à 5h30 tantôt. Les 29 et 30 mai à Piazza à côté Food Court Tribeca depuis 10h matin jusqu'à 8h soir. Et les 29, 30, 31 mai, le La Place Taxi Flac depuis 9h matin jusqu'à 5h30 tantôt. Bonne femme entrepreneur pour vendre ce produit local et que nous invitons à venir découvrir le savoir-faire mauricien. Entrée gratis. Stay tuned. L'opas Facebook NWEC Mauritius.
0: RM2
1: Radio Musti. Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
4: Sports News, latest updates.
5: Sports News.
1: Radio Musti in the mix.
6: लेते इस आफ्टरनून में स्वागत करते हैं एक बार फिर से अरविंद जी को हर रोज आते हैं गर्मा गर्म खबरों के साथ उपस्थित हैं स्टूडियो में अरविंद जी गुड आफ्टरनून टू यू
7: गुड आफ्टरनून आपको गुड आफ्टरनून रेडियो मस्ती लिसनर्स सो जैसे कल शाम को हम बता रहे थे विला के बाद पैलेस में भी ट्रॉफी आ गई अब तीसरी ट्रॉफी इंग्लैंड आएगी या कहीं और फ्रांस पता नहीं ये तो सैटरडे को पता चलेगा विद द फाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग पेरिस सेंट जर्मेन और आर्सेनल के बीच और द खुशखबरी इज कि ये मैच 8 बजे खेला जाएगा सो देर रात तक जागना नहीं होगा अभी ठंड का मौसम है ना
6: हाँ,
7: और देर रात को मैच देखने के बाद सुबह 5 बजे उठकर रिकॉर्डिंग ये सब यू नो तो 8 बजे वेरी हैप्पी 8 बजे ये मैच खेला जाएगा सैटरडे को और दैट विल बी लाइव ऑन एमबीसी टीवी ये अभी कुछ समय पहले हमें ये खबर ये खुशखबरी प्राप्त हुई है विल टॉक अबाउट इंटरनेशनल मैच आज 2 मैच होंगे इजिप्त का मुकाबला फुटबॉल यूनियन ऑफ रशिया से और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अगेंस्ट कतर इजिप्ट की टीम तैयार हो रही है फॉर द वर्ल्ड कप उसमें कप्तान है मोहम्मद सलाह जिसने लिवरपूल को अलविदा कहा है यूईएफए अंडर 17 चैंपियनशिप के मैच भी आज खेले जाएंगे बेल्जियम स्पेन अभी स्पेन 1-0 से आगे है और दूसरा मैच है एस्टोनिया और क्रोएशिया के बीच फिर कल फ्राइडे को इंटरनेशनल फ्रेंडलीज गाम्बिया ईरान साउथ अफ्रीका निकारागुआ बोस्निया नॉर्थ मैसेडोनिया फिर अंडोरा इराक लेबनन सूडान यूईएफए अंडर 17 चैंपियनशिप के मैच फ्रांस के का जो प्ले ऑफ है निस सेंट एटियन रिटर्न लेग वो भी कल खेला जाएगा और सैटरडे को आज यू नो पेरिस सेंट जर्मेन वर्सेस आर्सेनल ये मैच होगा और इंटरनेशनल फ्रेंडलीज में स्कॉटलैंड को असाओ नाइजीरिया जमैका जिम्बाब्वे इंडिया और बाकी चैंपियनशिप के मैच भी खेले जाएंगे इन दिनों टेनिस अभी काफ़ी मैच खेले जा रहे हैं फॉर द फ्रेंच ओपन अभी सीना 2 सेट जीत चुका है लेकिन अपने फिटनेस को लेकर ही इज नॉट ओके 6-3, 6-2 से उसकी जीत हुई पहले 2 सेट में लेकिन तीसरा सेट सेरिन डोलो जीत गया सीना सीम्स टू बी स्ट्रगलिंग इस मैच में बाकी जो मैच हैं आनली पारी सबालेंका जाकमो के खिलाफ खेलेगी फिर रिंडरनेच बेरेटिनी कुछ मैच समाप्त भी हो गए और कोको गोफ शेरिफ के खिलाफ खेलेगी ओसाका की जीत हुई गेन वेचिच बाकी मैच आज कल सुबह आपको ये सभी रिजल्ट देंगे सो द युवा सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी सभी तरफ चारों ओर बस उसी की चर्चा हो रही है, लेकिन उसकी टीम फाइनल में जाएगी या नहीं ये थोड़ा तो मुश्किल है कहना। अब कल का जो मैच होगा एक वो क्वालिफायर होगा फाइनल के लिए। एक तो फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम पहुंच चुकी है, अब देखना है कि राजस्थान रॉयल्स या फिर गुजरात टाइटंस में से जिसकी जीत होगी ये टीम जाएगी फाइनल में, और फाइनल इसी वीकेंड को खेला जाएगा। सो लेट मी जस्ट कंफर्म दिस, पहला मैच तो रॉयल चैलेंजर्स जीत गया, दूसरा राजस्थान रॉयल्स। सो कल 6 बजे गुजरात टाइटंस राजस्थान रॉयल्स ये मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा जहां पर कल मैच खेला गया, और संडे 31 मई को अहमदाबाद में ये फाइनल मैच होगा। अभी अभी शुरू हुआ था आईपीएल, ऐसे ही पूरा समाप्त हो गया, और हमारे एथलीट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, खासतौर पर हमारा युवा खिलाड़ी फ्रांस में नेशनल चैंपियनशिप इंटर यूनिवर्सिटी में हमारा जो हमवतन है लुकाडियस उसको बैडमिंटन में गोल्ड मेडल मिला है। सो द खुशखबरी इज वी आर गोइंग टू वॉच द चैंपियंस लीग मैच हम सब, और ये मैच 8 बजे होगा
6: सैटरडे को।
7: हाँ 8 बजे ठीक है। और अभी थोड़ी देर बाद विल कम विद द वर्ल्ड कप स्पेशल।
6: Here we go.
0: Get ready for the biggest World Cup ever.
5: 2026 FIFA World Cup.
0: पहली बार होंगी 48 teams, 104 matches. रेडियो मस्ती की टीम के साथ चलिए यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको।
5: रेडियो मस्ती के साथ रोड टू द वर्ल्ड कप।
7: चलो वर्ल्ड कप शुरू होने में 14 दिन रह गए हैं। फीफा पर आरोप है आर्टिफिशियली इन्फ्लेटिंग टिकट प्राइसेस और मिसलीडिंग फैंस। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के अटोर्नीज ने इन्वेस्टिगेशंस शुरू किए। इधर लिवरपूल का खिलाड़ी जेरेमी फ्रिंपोंग नेदरलैंड्स के वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं है। रोनाल्ड कोमैन की टीम में ज्यादातर प्रीमियर लीग के खिलाड़ी हैं। 15 खिलाड़ी वर्जिल वैन डाइक, रायन ग्रेवेनबर्च और कोडी गाक्पो टीम में शामिल हैं। फीफा वर्ल्ड कप में बेहतरीन गोलकीपरों में लेव याशिन, ओलिवर कान, गंडोगी बुफोन और मैनुएल न्यूयर जैसे महारथी चट्टानों के नाम आते हैं। टॉप गोलकीपर अवार्ड गोल्डन ग्लोव अवार्ड कहलाता है, पहले इसको लेव याशिन अवार्ड कहा जाता था। लेव याशिन द ब्लैक स्पाइडर और द ब्लैक पैंथर सोवियत यूनियन नेशनल टीम का गोलकीपर, अभी तक वो अकेला गोलकीपर है बालों दो जीतने वाला। पेनाल्टी किंग, 151 पेनाल्टीज सेव्ड, ये भी रिकॉर्ड है। 270 क्लीन शीट्स, यूएसएसआर के साथ 1956 मेलबर्न ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल, 1960 में इनॉग्रल यूरोपियन चैंपियनशिप वर्ल्ड कप में 4 फीफा वर्ल्ड कप सोवियत यूनियन के साथ, 1958, 1962, 1966

0: or 1970. FIFA Neuse, goalkeeper of the 20th century world team Saman Diatta, or France Football ne greatest goalkeeper of all time. इस प्रकार जो बेहतरीन गोलकीपर रहे पिछली बार कतर में अर्जेंटीना का एमिलियानो मार्टिनेज, 2018 में थिबो कुर्तुआ, 2014 में मैनुएल न्यूयर, उसके पहले इके कासियास, फिर ग्रैंडिगी बुफोन 2006 में, 2002 में ओलिवे कान, 1998 में फाबियन बार्थेज, 1994 में मिशेल प्रुडोम। ओलिवे कान वो अकेला गोलकीपर है जिसने बेस्ट गोलकीपर मतलब गोल्डन ग्लोव के साथ गोल्डन बॉल भी जीता है। तो इस बार 2026 वर्ल्ड कप में बेहतरीन गोलकीपर कौन होगा, एक साथ देखेंगे। सो चलो वर्ल्ड कप की ओर, लिव इट विद एमबीसी।
1: Well, thank you so much for the update, Arvindji. Have a wonderful afternoon.
2: FIFA World Cup 2026, 11 June se 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates

get your wonderful vibes just for all those tuning to RM2 Radio Masti साथ ही साथ जो साथ में drive करे हमारी साथ अर्शिल पराव and सचित तंदन मेरे महबूब for you.

0: रानी गुरु रंधावा हीर की आवाज़ फॉर यू। वैसे जितनी बारी ये गाने हम सुनेंगे यहाँ पर, ये कभी पुराने नहीं हो सकते हैं। जवानी तो इश्क होना है, वैसे इस गाने से पहले ये गाना चला था एंड स्पेशली ये रिलीज हो रही है ऑन RM2 रेडियो। मस्ती तो सीरी हो गई लेकिन कोई बात नहीं, वैसे वो ऑन टाइम है प्लेइंग द सॉन्ग्स फॉर यू। वेलकम बैक इन सेकंड आवर ऑफ योर अवतार वाइब्स। थोड़ा सा ब्रेक देन निकम्मा की आप साथ में गा सकते हैं हमारे साथ।
1: RM2
2: Radio Musti.
1: Pour la fête des mères côte métrique, fais au maman plaisir avec un joli moment de bien-être. Énergie jusqu'à 50% réduction jusqu'au 7 juin dans tout ban showroom métrique pour Mama Deals. Métrique, une enseigne du groupe Carinji.
3: Protézou contre leptospirose. C'est une maladie dangereuse. Ils transmettent à travers les rats, sat, les chiens, CF et BF. Ban symptômes comme douleur musculaire, douleur à la tête, gros la fièvre, frisson, vomissement, diarrhée et clazonis associés à sa maladie-là. Ban symptômes-là, ils apparaissent en 2 à 30 jours. Pour protézou contre sa maladie-là, pas besoin de les ban manger découvert. Protézou ban aliments contre ban les rats et les autres onzeurs. Protézou la main, les pieds, les yeux et néné avec ban équipement comme les gants, bottes, masques et lunettes spéciales, si et tout si vous travaillez aux animaux et accumulation de l'eau. Pour plus de détails sur leptospirose, contactez le ministère de la Santé et Bien-être, le 89 24. C'est un communiqué ministère de la Santé et Bien-être.
1: RM2
2: Radio Musti.
4: Rafter Vibes, Filmy Rides.
1: RM2
4: Radio

बजकर 15 मिनट हो रहे हैं, आप जुड़े हैं आरएमटी रेडियो मस्ती के साथ। हियर वी गो, आई गेट हियर द नेक्स्ट सॉन्ग। काबिल हूं especially in the voice of Jubin Nautiyal, ladies and gentlemen, from the movie Kabil itself. And I've got here the question for the day for you to be able to win this gift voucher. आपको बताना है कि ये जो कंसर्ट है होने वाला है SBICC Pi में रात्रि के कब? What time is it starting the concert? बताइएगा on this number 549912945.

जुबिन वी ऑल टॉकिंग अबाउट जुबिन लेडीज एंड जेंटलमैन कैच द डेट कि ये कब हो रही है कंसर्ट सैटरडे 30th ऑफ मई को और द क्वेश्चन वाज कि कब होने वाला है व्हाट टाइम एंड द राइट आंसर इज 8 बजे यस दिस इज द राइट आंसर एट SBICC पर रात्रि के 8 बजे ये शुरू हो जाएगा कंसर्ट आपके लिए जुबिन नौटियाल सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे ऑन द 14th of June 1989 इन देहरादून उनका ये जो जन्मस्थान है उत्तराखंड में वो पैदा हुए थे ही डेवलप्ड अ पैशन फॉर म्यूजिक फ्रॉम अ वेरी वेरी यंग एज एंड ट्रेन इन क्लासिकल म्यूजिक

0: while learning instruments like guitar, piano, harmonium and drums. वैसे यहाँ पर हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, बस बार बार बात करते रहेंगे. अभी let's talk about the winner जिन्होंने सही जवाब दिया है. उनका नाम है तिशा एलिना सजीवन. Congratulations. अरे वाह, क्या बात है, आप जीत गए हैं आज के लिए आखिरी टिकट. Yes, the last ticket is offered to you, my dear. You got the platinum ticket to assist the spectacular Jubin Nautiyal live concert. Chali ji, the concert is proudly actually organized by Gravity Zero in collaboration with Ticketbox.mu. Book your tickets now on www.ticketbox.mu for reservations. And you can call on the hotline 214-6464. Don't wait the last minute, guys. Okay, do the best way possible. मैं जानती हूँ आप बहुत ही बिजी रहते हैं आजकल, लेकिन सैटरडे को हो रही है, अगर लास्ट मिनट पता नहीं क्या होगा, मिल पाएगा आपको टिकट यहाँ या ना, आई डोंट नो, लेकिन कर लो. यहाँ पर यू नो वो अपनी प्रेजेंस के साथ, अपनी आवाज के साथ अभी ही विल सेलिब्रेट विद अस हियर, ऑफ कोर्स विद द बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ जुबिन हिमसेल्फ लाइव इन मॉरिशियस. So grab your tickets now. Thank you so much for participating. Have a wonderful afternoon.
1: Raftar Vibes, Filmy Rides,
2: RM2,
1: Radio Musti.

0: आपने इतनी प्यार से बुलाया तो मैं आ गई. अभी तो 5:30 बज रहे हैं. वैसे जैसे कि हमने बोला तो था, आपका अनाउंस तो किया है कि यहाँ पर 2 मेहमानों को हम लेंगे ऑन एयर, उनसे डायरेक्टली सवाल किए जाएंगे एंड एक ही सवाल होगा आपके लिए. एंड यहाँ पर इट्स अबाउट द कैंपेन फॉर MBC प्ले 1.0 द न्यू वर्जन. द MBC एक्चुअली मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन इन कोलेबोरेशन विद मॉरिशस हेलीकॉप्टर लिमिटेड ये गेम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. जी हाँ, जहाँ पर कल आप बन सकते हैं विजेता फॉर एन एक्सक्लूसिव हेलीकॉप्टर जॉय राइड एक्सपीरियंस ओवर द साउथ ईस्ट रीजन ऑफ मॉरिशस. तो आज आखिरी ये जो ड्रॉ है हम कर रहे हैं. अभी आप जुड़े रहिए, हम बात करेंगे विद आवर सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स ऑन एयर.
1: Raftaar Vibes, Filmy Rides,
2: RM2,
1: Radio Musti.
0: So we're ready and यहाँ पर हमने try मारा with रिचिता गोवर्धन और उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया. कोई बात नहीं. एंड क्या होता है कि जब कोई जो दूसरा इंसान फ़ोन नहीं उठाता, ऑटोमेटिकली वी हैव द पर्सन जिन्होंने फ़ोन उठाया उनको चांस दिया जाएगा टू आंसर द राइट क्वेश्चन एंड ऑटोमेटिकली शी विल बी क्वालिफाइड इफ शी हैज़ द राइट आंसर फॉर द लास्ट ड्रॉ, यानी कि फाइनल ड्रॉ जो कि 29th of May को होने वाला है शाम को. अभी के लिए इशिका हाय.
3: यस हाय.
0: हाय, हाउ आर यू?
3: आई एम फाइन एंड यू?
0: आई एम ग्रेट. इशिका, आप पहली जो हमारी श्रोता है, आपसे आपसे बात कर रही हूँ मैं. आप स्ट्रेस नहीं हो? आपकी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट लेवल है बहुत ही हाई है. वेरी नाइस. वेरी, आप करती क्या हो जिंदगी में?
3: मैं एक पेरोल ऑफिसर हूँ.
0: अच्छा, इसलिए.
3: Yes, I work at a bank.
0: Very good. Awesome, yes. Awesome. वैसे बड़ी खुशी हुई आपसे बात करते हुए. और यहाँ पर I just want you to be ready for the question. और आज अगर आपके पास सही जवाब है, you'll be qualified for tomorrow. Okay?
3: Okay.
0: जी. और आप shortlisted हो जाएंगी. And be ready for the question. My question for this afternoon is,
3: yes,
0: which messaging platform must participants use to send their screenshot?
3: It's WhatsApp.
0: It's WhatsApp. Congratulations.
3: Thank you.
0: Yes. अब जीती नहीं है, आप बनी है shortlisted for tomorrow. Okay, कल के लिए all the best. आप जुड़े रहना, शाम को हम फोन करेंगे अगर आप लकी ड्रॉ में सिलेक्टेड हुए हो. ओके
3: ओके, थैंक यू.
0: चलिए, कल के लिए ऑल द बेस्ट. ओके, बाय
3: बाय बाय
0: बाय. तो ये रहा, आज आखिरी दिन था फॉर यू टू पार्टिसिपेट एंड कल द फाइनल ड्रॉ एंड हु नोस हु विल बी द विनर फॉर दिस ब्यूटिफुल मेसमराइजिंग वी कैन से पीसफुल एंड also full of adrenaline ride, joyful ride of helicopter, of course sponsored by Mauritius Helicopter Limited with MBC. So all the best for tomorrow, guys. All those jinko humne shortlist kiya hai har roz, please be with your mobile phones, apne paas hi rakho. Okay, kabhi bhi phone aa sakta hai, you never know.
1: Raftaar Vibes, Filmy Rides,
2: RM2,
1: Radio Musti.

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और M2
2: रेडियो मस्ती
1: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। ओके जी, लेट्स टॉक अबाउट फैशन। एंड यहाँ पर एक टिप हम आपको देना चाहते हैं कि प्रिंटेड क्लोथ्स तभी स्टाइलिश लगते हैं जब आप बैलेंस मेंटेन करते हो। अगर आउटफिट में बोल्ड प्रिंट्स रहते हैं तो एक्सेसरीज को थोड़ा सा सिंपल रखो। फ्लोरल स्ट्राइप्स या अब्स्ट्रैक्ट प्रिंट्स को सॉलिड कलर के साथ पेयर करो जो आपको एक क्लासिक लुक दे देते हैं। एंड डे लुक के लिए आप लाइट प्रिंट्स या फिर एक पेस्टल कलर शेड्स आप ऑप्ट कीजिएगा। जबकि अगर शाम के लिए कहीं पर जाना है तो डार्क प्रिंट्स या फिर स्टेटमेंट हील्स या तो एक बैग ग्लैम के साथ ये टच ला देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो फैशन रूल है आप तो जानते ही हैं कि यार कॉन्फिडेंस लेवल और कंफर्ट लेवल दोनों बरकरार रखना चाहिए। वैसे यहाँ पर इस आफ्टरनून में ये थे आपके लिए फैशन टिप।
3: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
4: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
5: लड़की बड़ी अनजानी है।
6: Radio Musti, all the way.
7: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
8: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
6: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: कैसे हुआ फॉर यू कबीर सिंह मूवी से लिया गया ये गाना विशाल मिश्रा की आवाज में फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन। वैसे थोड़ी देर में बस विल एंटर द थर्ड आवर यानी कि लास्ट आवर ऑफ योर रफ्तार वाइब्स। वैसे द नेक्स्ट सॉन्ग इज आर टू ऑल दोस जो कि भूल भुलैया की बड़ी फैन है गिटी हामी जी तुम्हार 3 फॉर यू श्रेया घोषाल की आवाज में। आई होप यू विल लाइक इट।
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2
1: रेडियो

गुरुवार 28 मई के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। देश के 322 किलोमीटर लंबे समुद्र तट में से आज मात्र 48 किलोमीटर तट आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक है। ऐसे में बीच

तक जनता की पहुंच का मुद्दा सोच समझ का विषय बन गया है। बालाक्लावा के निवासी भी इलाके के पब्लिक बीच के एक हिस्से को लेकर चिंता जता रही है, जिससे सन 2008 में सार्वजनिक तट की श्रेणी से हटाकर एक होटल के लीज में शामिल किया गया था। 10 जिले

0: अहमियत का हामिल है। सुबह नमाज ईद के बाद बेशतर मुसलमान सुन्नते इब्राहिम अदा करते हैं। युगांडा ने सीमावर्ती क्षेत्रों में इबोला महामारी के तीव्र फैलाव को देखते हुए कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ अपनी सीमाएं अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। सबसे पहले स्थानीय खबरें। बालाकलावा के निवासी इलाके के पब्लिक बीच के एक हिस्से को लेकर चिंता जता रही हैं, जिसे सन 2008 में सार्वजनिक तट की श्रेणी से हटाकर एक होटल के लीज समय शामिल किया गया था। ये एक ऐसा मुद्दा है जो एक बार फिर मॉरिशस में समुद्र तटों तक सार्वजनिक एक्सेस को लेकर सवाल उठा रहा है। बेलोम्ब से रियोंबेल के बीच तटों के कई हिस्से हैं जो सार्वजनिक नहीं रहे और जिन्हें निजी परियोजनाओं का हिस्सा बनाया गया है। ये बात जानने योग्य है कि देश के 322 किलोमीटर लंबे समुद्र तट में से आज मात्र 48 किलोमीटर तट आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक है। ऐसे में बीच तक जनता की पहुंच का मुद्दा सोच विचार का विषय जरूर बन गया है। इस मुद्दे पर हम पुनः आएंगे। फिलहाल खबरों को आगे बढ़ाते हैं। इस हफ्ते देश के पांचों शहरों के नए मेयर और उप मेयरों ने कार्यभार संभाला। प्रशासनिक बदलावों के साथ शहर के निवासी 22 टीमों से क्या उम्मीद रखते हैं और नगर पालिकाओं के स्तर पर आम जनजीवन में सुधार लाने के लिए कैसे कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर हमारी सहयोगी अंजू ने कुछ लोगों से बात की। विवरण पूजा सुकाल का है।
1: कैट्रोबोन फुटपाथ पर इतने बड़े गड्ढे कि मानो एलिस इन वंडरलैंड यानी नाली जैसी दुनिया में उतर रहे हो। कूड़ेदान ऐसे गायब है जैसे उनका अस्तित्व ही ना हो। नहीं, ये शहर जिसे हम विल दे फ्लेयर मानते हैं, फूल वाली महक तो बिल्कुल ही नहीं है यहाँ।
2: कार्बोनिंग गाते मिन मालंग माल प्रोप कदु पासे लेगा पेना पेना लिजन जिदो कार्बोन
3: प्रॉब्लम से प्लस पार्किंग ए प्लस ला पुबेल तो सा ए एन प्लस चेमिन ट्रो सेरे।
1: बोबासे रोजहिल, यहाँ तो कचरा ज्यादा दिखता है, कूड़ेदान कम। हालांकि पिछले एक साल में प्लास मॉर्जियो के आसपास लगभग 4,60,000 रुपए की लागत से सौंदर्य वाला कार्य चलाया गया है, लेकिन निवासी आज भी विकास कार्य के इंतजार में है।
4: Des poteaux à côté de là, comme un petit plastique, un petit un tas d'appels au chemin.
5: Vous allez un peu plus, moi un peu, j'en ai un peu nettoyé un peu plus partout.
1: वाक्वा का स्वरूप पहले की तरह आकर्षक नहीं रहा, मानो यहाँ माइकल जैक्सन के थ्रिलर नामक क्लिप का सेट बन सकता था।
6: Comme on dit, c'était un événement, mais vraiment c'est beau.
1: यहाँ कैजिनो दूसरी बुनियादी सुविधाओं और मनोरंजन स्थलों से कहीं तेजी से विकसित हुए हैं।
7: Loisir. Plutôt c'est un mall tout bon mall mall tout mall près.
8: Ça voudrait que ça développe un peu plus parce que vu que nous va quoi, ça nous n'est plus une va quoi parce que ne plus trouve non rien.
1: क्यूपिप जहां रोशनी की कमी महसूस की जा रही है, शहर ने अपने रंग ही खो दिए हैं और अब फीका दिखता है। निवासियों के अनुसार विकास रुक सा गया है, ठीक वैसे ही जैसे नगर पालिका के सामने फव्वारे का ठहरा हुआ पानी। चूहों को तो भगा दिया गया है, अब कबूतर और आवारा कुत्ते चैन की नींद ले रहा है। फूल बेचने वाले के बाद अब बारी है सार्वजनिक शौचालयों की बदबू। यहाँ फिलहाल मरम्मत का काम चल रहा है। पोर्टविस के इतिहास में ये पहली बार है कि राजधानी का प्रशासन दो महिलाओं के हाथों में होगा।
9: Le soir, je vois que c'est un gros souci, on peut améliorer dessus.
1: Parking ki samasya khatam hoti hi nahi hai.
9: Si on peut faire des bâtiments comme on fait à Eben, côté parking pour améliorer tout ça.
1: Khofafahon bazar ke paas ye shakhs apne taxi ke paas khada hai, ghombe jaane wale yatriyon ke intezar mein hai.
10: Ça comptait droguer qui est dans la forêt. Droguer, voler, de dormir dans la forêt. Il y a une vingtaine de bars droguer, voler dans la forêt.
1: पांच शहर, अनेक शिकायतें और उम्मीदें अब भी बेहद व्यावहारिक है। शहरवासी अब अपने रोजमर्रा की

0: जीवन में आखिरकार कुछ नया देखना चाहती है।
1: जैसे कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि बालाक्लावा के निवासी इलाके के पब्लिक बीच के एक हिस्से को लेकर चिंता जता रही है, जिसे सन 2008 में सार्वजनिक तट की श्रेणी से हटाकर एक होटल की लीज में शामिल किया गया था। वैसे ही बेलोम व सेरियोंबेल के बीच भी तटों के कई हिस्से हैं जो सार्वजनिक नहीं रहे और जिन्हें निजी परियोजनाओं का हिस्सा बनाया गया है। ऐसे में बीच तक जनता की पहुँच का मुद्दा सोच विचार का विषय जरूर बन गया है। यासीन दिल मोहम्मद की रिपोर्ट पर रजनी बेकर का विवरण।
2: Quand on est en congé public, non, tout ça là, c'est le moment moyen qu'ils sont capables d'y aller à ces bons enfants. Amène-les de la plage, c'est gratuit. Mais à ce stade, ou à l'Pérébert, ou à Montchoisy. Un jour congé. Dis-moi qu'on a déjà sorti dans la boîte, pas qu'à pas mal aussi dans sa plage. Mais qui fait besoin de prendre en cours de la plage?
3: ২০০৮ से बालाक्लावा समुद्र तट के एक हिस्से को हटाया गया है और इसे पास में स्थित एक होटल को लीज पर जोड़ा गया है। तब से कोई भी विकास नहीं हुआ, लेकिन ये चिंता तो बनी हुई है कि किसी दिन एक हिस्से में मशीन काम करने लगे।
4: Moi, mon naissance pointe au Piémont ici. Mon père avait une famille, mon vin là, mon vin distrayement, beau la mer, bons enfants quand vous êtes congé l'école.
5: Il y a un problème, nous avons beaucoup accès pour venir beau la mer, pour nous ramasser, nous mettre la boîte, la pipille, pour nous travailler, comprenez, nous avons accès.
6: Quatre, trois fois par semaine, venir ici, regarder un peu. Nous comptons les mouches, assiser, regarder, respirer un peu. Mais si tu es ça, tu m'as mon chien, qu'est-ce pour aller?
3: Gram Parishad ki star par, yehi baat kahi ja rahi hai.
2: Tout Mauricien des Avines Balaklava, je connais grand DS à la plage qui nous est ici là, minuscule.
3: Ecosuit Namak NGO निवासियों को अपना समर्थन दे रहा है और साथ में ये मांग कर रहा है कि इस भाग को फिर से पब्लिक बीच घोषित किया जाए।
7: 56 mètres à peu près en plus depuis Mirail et il représente à peu près 40% de la plage publique. J'étais un peu inquiet à savoir si l'hôtel pour extend sur l'hôtel ou soit ben même qu'ils ont une PAD, un bout de plage publique.
3: बालाक्लावा एक अलग मामला नहीं है। बेलोम में 19.4 बीघा पब्लिक बीच को 2016 में डी प्रोक्लेम किया गया था। KPMM ग्रुप को एक रियल इस्टेट पर योजना विकसित करना था। 10 साल बाद KPMM का दिवालिया हुआ और जमीन को बिक्री के लिए रखा गया। रियोंबेल में 2007 में एक होटल परियोजना के लिए 4 बीघा पब्लिक बीच को लीज पर एक प्रोमोटर को दिया गया। 2017 में इस लीज को रिकन्वर्ट किया गया 20 से अधिक विला की एक परियोजना के लिए। 2024 के दिसंबर महीने में जिला परिषद की ओर से निर्माण संबंधी परमिट जारी किया गया था।
8: Il y a une portion qui proclamait plage publique. Sauf qu'il n'est pas proclamé dans son entièreté, qui est du monde servi. Donc, du monde servi, mais je ne connais pas qui est une partie là-dedans pour finir en bas béton. À côté de ça aussi, nous trouvons des affaires qui peuvent rétrécir. C'est l'espace, la plage, à cause notamment l'érosion. Finalement, la construction à 30 mètres depuis la ligne de la marée haute, depuis High Water Mark. Mais 30 mètres depuis la ligne de la marée haute. Mais 30 mètres, ça veut dire aussi qu'il nous faut faire qu'il y a la place qui déjà dans l'état lamentable pour écrouler devant nous.
3: इस वृहद परियोजना के चलते पर्यावरण मंत्रालय की ओर से एक एनवायरनमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की मांग की गई। एनवायरनमेंट एंड लैंड यूज ट्राइब्यूनल के सामने प्रोमोटर की तरफ से इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। 50 इकाई से कम वाली परियोजना के लिए कानून इस तरह के अध्ययन की मांग नहीं करता, लेकिन फिर भी मंत्री इसकी मांग कर सकते हैं अगर परियोजना का असर पर्यावरण पर पड़ने का खतरा हो सकता है। ये उसके स्थल और इस पर भी निर्भर करता है कि वहां किस तरह के कार्य किए जाएंगे। मामले को अगले 3 जून को पेश किया जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से ये समझाया जा रहा है कि एक EIA के माध्यम से हम जान सकेंगे कि इस तरह की परियोजना चलाई जा सकती है या नहीं। उदाहरण के तौर पर बाढ़ और मिट्टी के कटने के खतरों को देखना है। इसके अलावा एक EIA के लिए सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता है, जो हुआ नहीं क्योंकि इस परियोजना से इलाके पर प्रभाव पड़ेगा। ये अहम प्रश्न भी उठता है कि मॉरिशस के तटों पर कम ही पब्लिक बीच हैं। बीच अथॉरिटी के मुताबिक टापू के चारों ओर 322 किलोमीटर के तटीय इलाकों में से केवल 48.24 किलोमीटर पब्लिक बीच हैं, यानी करीब 15%। पर्यावरण मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि ये आंकड़ा इससे कम है अगर हम उन इलाकों को न गिने जहां पर जा नहीं सकते या फिर जनता के लिए

0: वहां जाना कठिन है, जैसे कि चट्टाने हैं, साथ में बंगलोज के सामने वाले हिस्से भी हैं। अभी भूमि एवं आवास मंत्रालय में समुद्र तटों पर एक्सेसिबिलिटी के मुद्दे पर चर्चा की जा रही है। इस बीच आमिरा आर्डार्गनी नामक एक मॉरिशन ने अपने अनुभव के बारे में बताया कि किस तरह वे लाप्रेमेज से तमारे पब्लिक बीच तक पैदल गए, ये कैसे रहा, कई विला के बगीचों को पार करना पड़ा, तट के किनारे प्रवेश बंद था, होटलों या विला के स्विमिंग पूल के बगल में ईंट से बने ढांचे भी थे, यहां तक कि कई जगहों पर पत्थर थे जिन पर चढ़ना पड़ा। विला मालिकों ने जानबूझकर अपने विला के सामने बालू जमा करके रखा था।
1: कर्डिन यूनिवर्सिटी के चांसलर और वाइस चांसलर ने आज ट्रेजरी बिल्डिंग पोर्टलिस में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के साथ रस्मी मुलाकात की। उनके साथ ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त केट चैमली भी मौजूद थीं। मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी मॉरिशस के बीच पिछले कई सालों से कायम सहयोग और भविष्य के विकास पर चर्चा की गई। आज 10 जिल इजा की तारीख है और आज के दिन मुसलमान कौम के परिवार ईद उल अदा मना रहे हैं। ये रोज़ हज़रत इब्राहिम की सुन्नत के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है। सुबह ईद की नमाज के बाद बेशतर मुसलमान सुन्नत इब्राहिम अदा करते हैं और आज का दिन रिश्तेदारों और करीबियों के साथ वक्त बिताने का मौका होता है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम और उनकी पत्नी श्रीमती वीना रामगुलाम ने कल लालमाटी में आयोजित शिव महापुराण की कथा में भाग लिया। इस धार्मिक अनुष्ठान के दौरान भक्तों में शिव भक्ति के महत्व को लेकर आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाया जा रहा है। ये कथा रविवार तक चलेगी। गदेवादियों की रिपोर्ट पर रजनी बेकर का विवरण।
0: कुछ दिनों से लालमाटी में भक्तिमय एवं आध्यात्मिक समा बंधा हुआ है। बहुत से भक्त पिछले शनिवार से यहाँ पर शिव महापुराण की कथा में भाग ले रहे हैं। इस तरह भक्त भोलेनाथ की कथा सुनने के लिए जुटे। इस अवसर पर वहाँ देवों के देव महादेव का गुणगान किया जा रहा है, भजन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बुधवार की रात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम और उनकी पत्नी श्रीमती वीना रामगुलाम भी उपस्थित हुए।
2: कदली गर्व संभूतम कपूरम तो प्रदीपितम अरार्तिकम अहम पूर्वे।
0: भारी संख्या में भक्त एकत्र हुए और वे बहुत प्रेम एवं भक्ति तथा श्रद्धा के साथ ध्यान पूर्वक शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे थे।
3: यहाँ सब एक परिवार बन करके लालमाटी के ये कार्य किया जा रहा है, हिंदू के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे मॉरिशस के लिए।
0: शिव महापुराण की कथा आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने और संगठित होने का अवसर है। ये और कुछ दिनों तक जारी रहेगी।
1: शतबन मजदूरी का इतिहास पोर्टलिस में चल रही 3 दिवसीय चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। कल 27 मई से विभिन्न इतिहासकार, शोधकर्ता और कई संस्थाओं की प्रतिनिधि इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग ले रही हैं। ये पहला प्रवासी घाट ट्रस्ट फंड की है। इसके उद्घाटन के लिए कला एवं संस्कृति मंत्री सहित कई वक्ताओं के भाषण शतबन मजदूरी की विरासत और उसके प्रसार पर केंद्रित रहे। वर्षों तक असुरक्षित और दयनीय परिस्थितियों में रहने के बाद सोशल रजिस्टर में दर्ज 20 परिवारों को उनके नए कंक्रीट के घरों की चाबियां सौंपी गई। ये दिन उनके लिए भावनाओं और एक शुरुआत की उम्मीद से भरा रहा। स्क्विंट आई से पीड़ित 200 से अधिक बच्चों और वयस्कों का सफल ऑपरेशन किया गया है। डॉक्टर मिलिन किलेदार के नेतृत्व में भारत की एक मेडिकल टीम ने पिछले अप्रैल महीने में मॉरिशस और रोड्रिग्स के अपने दौरे के दौरान ये ऑपरेशन किए। ये पहल जो अब अपने चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। रोटरी क्लब ऑफ बागातेल और भारत के रोटरी क्लब ऑफ पौंडिचेरी अगराम के सौजन्य से आयोजित की गई है इस स्क्विंट आई 4.0 परियोजना का शुभारंभ 23 अप्रैल 2026 को मोका में हुआ था।

0: और जैसे हम आपको बता रही थी कि आज ईद उल अदा मनाया जा रहा है और आज सुबह ईद की नमाज के बाद बेशत मुसलमान सुन्नत इब्राहिम अदा करती हैं और आज का दिन रिश्तेदारों और करीबियों के साथ वक्त बिताने का मौका रहा। इस पर कृष्ण सिचा की रिपोर्ट पर रजनी बिगल का विवरण पेश है।
1: टर्की सुबह ही मॉरिशस भर की मस्जिदों में रौनक देखने को मिली। मुसलमान कौम ईद उल अदा की इस मुबारक मौके पर ईद की नमाज अदा करने के लिए बड़ी तादाद में मस्जिदों में पहुंचे। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इबादत में मशगूल नजर आए।
2: Parce qu'il nous fait célébrer une sunna d'Ibrahim alayhi salam, il y a un lot pour sacrifier ce garçon, Ismaïl alayhi salam. Alors en mémoire de ça, nous faisons courbani. On dit pas la prière qui commence, tous les jours nous venons nous faire pareil. Ça n'a rien une prière exceptionnelle.
3: À Ibrahim alayhi salam, tu montrais Allah qui. Entre ses enfants et que l'amour ses enfants et que l'amour Allah, il donne des plis contents l'amour Allah. Ça qui Allah fin dit, il fait, il fin fait. Nous prions pour tout. Qu'il y ait la paix dans l'île Maurice, nous vivons bien dans l'île Maurice et qu'il y ait la paix dans le monde aussi.
1: आज 10 जिलहिजा को मॉरिशस का मुस्लिम कौम ईद उल अदा मना रहा है। ईद उल अदा जिसे बकरीद भी कहा जाता है, हजरत इब्राहिम की कुर्बानी और अल्लाह के प्रति उनकी अतूत मोहब्बत की याद दिलाती है। नमाज के दौरान अमन, भाईचारे और देश की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई।
4: तू जुमुन पैना मुआये पुफे कुर्बानी सैन जुमुन मुवासा वासिना जिंगये मुआये लिपे फेला लैला League out and poor, desiam, only bise, pota, suban kamrad, suban fami, os, toasiam and jumun kimizia.
1: नमाज के बाद परिवारों में अच्छे पल बिताए गए। परिवार के सदस्य एक साथ भोजन करते हुए ईद की खुशियां साझा करते हैं, जैसे कि यहां सनुमान परिवार में।
5: Pour moi aujourd'hui c'est très spécial. J'ai mon fils qui est dans mes bras et c'est son premier Eid ul Adha. Déjà c'est un moment magique pour nous. Là on mange du vin micel qui nous appelle Siwai et après nous pour vers Bobassa, que nous ne prenons pas des animaux là-bas, et nous pour assister au sacrifice, et après nous pour faire partage de la viande.
1: मॉरिशस में ईद उल अदा सिर्फ कुर्बानी का एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि ये आपसी प्रेम, साझेदारी और इंसानियत का संदेश देने वाला त्यौहार भी माना जाता है।
0: और जैसे कि आपको पता है कि शरदवन मजदूरी का इतिहास पोर्ट लुइस में चल रही 3 दिवसीय चर्चाओं का केंद्र बना रहा। कल 27 मई से विभिन्न इतिहास का शोधकर्ता और कई संस्थाओं के प्रतिनिधि इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग ले रही हैं। ये पहल अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड की है। इसके उद्घाटन के लिए कला एवं संस्कृति मंत्री सहित कई वक्ताओं के भाषण शरदवन मजदूरी की विरासत और उसके प्रसार पर केंद्रित रहे।
1: मॉरिशस में हिंद महासागर में गिरमितिया कामगारों के इतिहास पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस 3 दिवसीय कार्यशाला में शोधकर्ता, विरासत विशेषज्ञ और राजनयिक प्रतिनिधि एकत्रित हो रहे हैं, जो गिरमितिया कामगारों की स्मृति पर आधारित है। अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के चेयरमैन सुकंद रामदास कहते
6: हैं,
1: इस कार्यशाला का उद्देश्य ऐतिहासिक स्थलों और गिरमितिया कामगारों से जुड़े अभिलेखों के संरक्षण को लेकर इलाकाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और विचार विमर्श को बढ़ावा देना भी है। मॉरिशस की यूनेस्को में स्थायी प्रतिनिधि मारी जैस्मिन टुलूज ओलिविये कहती है,
7: Pour nous capables d'avancer dans nos vies, il est important de nous connaître la racine. L'histoire, les besoins paraissent cachettes. Donc nous dire qu'ils nous besoins racontent l'histoire, que ce soit à l'école ou bien plus petit, parce qu'il est important qu'ils nous connaissent, que nous sortions.
1: Ce Karyashala est un master plan de tayar karne ki disha mein bhi kaam karegi taki virasat ke sanrakshan ko thos roop diya ja sake. Kala aur sanskriti mantri Mahendra Gondia kehte hain,

0: C'est un roadmap qui nous qui pour préparer et ça quand ça sorti, les là pour trouver un travail qui suive après. Parce qu'ils nous pas capable un roadmap il un peu pareil comme un guideline. Si vous payez dans ça, mais qui peut avancer devant. Donc ça est important pour nous préparer ça roadmap là.
1: ये कार्यशाला 29 मई तक जारी रहेगी, जिसमें हिंद महासागर इलाके के विरासत विशेषज्ञों के बीच विचार विमर्श आयोजित किए जाएंगे।
2: और पोर्टलिस में स्थित अल्फा कॉलेज ने अपने 60 साल पूरे कर लिए हैं। अपने छोटे आकार और सीमित छात्र संख्या के बावजूद ये संस्थान बिना किसी भेदभाव या उनकी क्षमताओं को परखे हर पृष्ठभूमि के छात्रों का स्वागत करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युगांडा ने सीमावर्ती क्षेत्रों में इबोला महामारी की तीव्र फैलाव को देखते हुए कांगो लोकतंत्र गणराज्य के साथ अपनी सीमाएं अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की। ये एक एहतियाती उपाय है क्योंकि युगांडा की सरजमीन पर पहले से इबोला के कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इस पर क्वेसी दल की रिपोर्ट पर रजनी बेकर का विवरण।
3: कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला महामारी के बढ़ते मामलों के चलते युगांडा ने इसके साथ अस्थायी तौर पर अपनी सरहद बंद करने का आदेश दिया है। इस कदम का मकसद है इस वायरस को अधिक फैलने से रोकना। पिछले 15 मई को महामारी के लिए औपचारिक घोषणा की गई। युगांडा में इबोला वायरस के बुंदीबुग्यो वेरिएंट के साथ जुड़े 7 मामलों की पुष्टि हुई है। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि केवल इबोला से निपटने वाली टीमों को ही सरहद पार करने की अनुमति होगी, वो भी कुछ सख्त सैनिटरी शर्तों पर। सैनिटरी अधिकारियों के मुताबिक अभी के लिए वायरस के इस वेरियंट के खिलाफ कोई भी निश्चित टीका या इलाज नहीं है। स्थिति के चलते विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सैनिटरी चेतावनी जारी की गई। महामारी के 12वें दिन पर 900 से अधिक संदिग्ध मामले पाए गए। पहले से ही 220 लोगों की मौत दर्ज की जा चुकी है। अधिकारियों के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।
2: बढ़ते हैं अब हम मौसम के हाल की ओर। आम हालत, पूर्व से आने वाले बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, रात के समय और कल सुबह बादल घिर आएंगे और रह रहकर वर्षा होगी, विशेषकर देश के पूर्वी, उत्तर और सेंट्रल प्लाटू वाले इलाकों में। कभी कभार बारिश तेज भी हो सकती है। ऊंचाइयों पर कोहरे छाएंगे। दोपहर बाद में पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में बादल विकसित होंगे और रह रहकर वर्षा होगी। अन्य इलाकों में आसमान में बादल घिरे रहेंगे। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी और कल धीरे धीरे हवा कमजोर पड़ने लगेगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पार सामान्य रहेगा तथा कल सुबह धीरे धीरे समुद्र की स्थिति खराब होने लगेगी और दक्षिण की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठने लगेंगे। खुले समुद्र में सुबह के समय कल न निकलने की सलाह दी जाती है। आज सूर्यास्त शाम 5:38 पर और कल सुबह सूर्योदय 6:37 पर।

इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग मिला, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। कंसल पर हमारे सहयोगी डोमिनिक है, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं और सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हैं अब हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। रॉय रोड लाफ्लोरा में 71 साल की 71 ईयर्स ओल्ड के श्री बिसुंदत किस्तो मोहन, जिन्हें धर्म किस्तो के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनके बेटे कमल किस्तो मोहन के घर लाफ्लोरा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांव वाक शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 9:30 AM। रॉय रोड प्लेन दी रोश में 62 साल की 62 ईयर्स ओल्ड के श्री प्रभाकर बेचू, जिन्हें लेखवा के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनकी पत्नी श्रीमती पद्मिनी बच्चू के घर प्रेंदी रोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही शमशान भूमि ले जाएगी।

0: election tomorrow at 1 p.m. Ramlat Lane, Brisevej, Yami. रामनाथ ने ब्रिजवेजिय में 57 साल की 57 ईयर्स ओल्ड की श्री जगन्नाथ रामनाथ श्री जगन्नाथ रामनाथ जिन्हें अख्तिया रोशन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनकी पत्नी श्रीमती श्यामा रामनाथ के घर ब्रिजवेजिय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोंजे की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। अवनी ए आई फिलाओ पाई में 91 साल की 91 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती वेलम्बाले एलम्मा जिन्हें मामाम्बा के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 1 बजे उनके घर फिलाओ पाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। थोडोडूस रोड ब्रह्मस्थान में 44 साल के 44 ईयर्स ओल्ड के श्री महेन सुब्रन जिन्हें अनूप के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 2:30 बजे उनके पिता श्री लक्ष्मी प्रसाद सुब्रन के घर ब्रह्मस्थान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2:30 PM। कोलाबू तेरूज में 88 साल के 88 ईयर्स ओल्ड के श्री लक्ष्मण मोहावीर जिन्हें भाई लक्ष्मण के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल 1 बजे उनके बेटे महेंद्र मोहावीर के घर कोलाबू तेरूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही ब्रिलिश की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play,
2: RM2
1: Radio Musty.
3: Allons chez Lolo.
4: Chez Lolo, la vache qui rit, 24 portions, 336 grammes, 152,50 €. Basmati Gary Magold, grade 11-21, de 5 kg, 338 €. Mother's Choice, margarine, de 500 grammes, 95,95 €.
5: Lolo Hypermarché.

0: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
1: OM2,
2: रेडियो मस्ती।
1: चलिए जी, यहाँ पर रास्ते में देखो हंसते हंसते कहाँ पहुँच गए हम। 6:33 हुए हैं, जुड़े हैं पैडम टू रेडियो मस्ती के साथ। बस यूं ही मस्ती कीजिए हमारे साथ, रात्रि के 7 बजे तक।

0: ये सवाल तो बिल्कुल आपसे हम नहीं करने वाले हैं कि कैसे दिल जीते आपका, आप ही बता दे हमें रास्ता, क्योंकि रास्ते तो बहुत हैं। दिल से दिल तक पहुंचने के लिए बस प्यार का सहारा ही काफ़ी होता है। 7:07 हो चुके हैं, थर्सडे इवनिंग 28 मई 2026। ऐसे में एक बार फिर से रेडियो मस्ती की लहरों पर दिव्या साथ निभाने के लिए आ चुकी हैं अभी से लेकर रात्रि के 9 बजे तक। ऑफकोर्स इट्स टाइम टू सिट बैक, रिलैक्स एंड कीप इंजॉइंग द ब्यूटीफुल गाने जो हम आप लोगों के लिए चलाने वाले हैं। कुछ हमारे चॉइस के होने वाले हैं और कुछ आपके चॉइस के हिसाब से हम चलाएंगे गाने। अगर आप हमें फ़ोन करते हैं तो फ़ोन करने का बस एक ही तरीका है, दैट इज़ आप हमें याद कर सकते हैं 4028035 पर। आप हमें फ़ोन करिए और आपसे थोड़ी बातें भी हो जाएगी और आप के बारे में कुछ और भी हमें जानने का मौका मिलेगा और साथ में हम ये भी जान पाएंगे कि आपको कौन सा गाना सुनना है। और वक्त निकाल कर आप मैसेजेस के ज़रिए भी हमें याद कर सकते हैं, दैट इज़ 5499-1294, दैट इज़ द मैजिकल नंबर जिस पे आपको हमें याद करना है, 5499-1294। तो चलिए, यहाँ पर दिव्या का साथ है, आप लोगों का भी साथ है शो में। ऑलरेडी 4 चांद लग चुका है तो देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड वंस अगेन खूबसूरत गीतों के कारवां के साथ। और चलिए, अगर आप हमसे बातें करना चाहते हैं हमने बता दिया है, बाकी आपका इंतज़ार कर ही रहे हैं।
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: नहीं सामने वो ये अलग बात है और जब वो सामने नहीं होते हैं तो सच में अलग ही बात होती है। ऐसा लगता है कि तरकारी बिन नमक, ऐसी फीलिंग आ ही जाती है। लेकिन जब वो शख्स सामने आता है या फिर आती है तो ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी खिल उठी है और उनके आने से, उनकी मौजूदगी से हमारी ज़िंदगी और भी खूबसूरत बन जाती है। वेल शायद इसी को प्यार कहते हैं। आई जस्ट होप कि ज़िंदगी में आपको बेशुमार, बेइंतहा, भरपूर प्यार मिलता रहे और अगर आपकी ज़िंदगी में प्यार की कमी नहीं है तो इस प्यार को और भी दुगना करने के लिए हम यहाँ पर हाजिर हो चुके हैं लेकर खूबसूरत गीत और साथ में लेकर मन में बहुत सारा प्यार। 7:20 हो चुके हैं और चलिए आपके कुछ मैसेजेस की ओर हम बढ़ेंगे। एंड डोंट फॉरगेट, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आपके फ़ोन कॉल्स का इंतजार कर रही है ऑन 5499-1294 आपके मैसेजेस। एंड ऑफ कोर्स फ़ोन करने के लिए 4028235 पर आपके मैसेजेस का हम इंतज़ार कर रही है। चलिए यहाँ पर बात करते करते यहाँ पर किसी का फ़ोन भी आ रहा है तो चलिए उनसे हम ज़रूर बात करेंगे और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। एंड चलिए यहाँ पर आई गेस सुनीता जी हैं ऑल द वे फ्रॉम तेहूज। नमस्ते सुनीता जी।
1: नमस्ते,
0: कैसी हैं आप?
1: आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ।
0: आवाज़ से तो लग ही रहा है।
1: मैं सुना, यानी कि रविवार को मातृदिवस है, मैं उसी अवसर पर एक गीत मांगना चाहती हूँ, हम साथ साथ का गाना।
0: हाँ, ये तो सच है,
1: बोल है, ये तो सच है, भगवान है।
0: बहुत ही खूबसूरत। हाँ जी, बताइए बताइए।
1: ये तो सच है, कोई मानते हैं तो माता पिता ही भगवान होता है सबसे पहले, कोई नहीं मानती है तो कुछ भी नहीं, लेकिन जिसके बाद माता पिता है सबसे बड़ा धन दौलत है।
0: ये आपने एकदम सही बात कही है, जिनके माँ नहीं होते हैं
1: पैसा भी सब कुछ।

0: आप कैसे भी रह कर भी पैसा कुछ भी नहीं देते हैं कभी कभी सोचेंगे तो, जिसके पास माँ बाप है माँ बाप के सेवा करना से बहुत सुख शांति मिलती है, वही सबले सच्चा इंसान बनती है।
1: बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। वैसे गाना तो आपने सुना ही होगा, कौन सी है वो चीज जो यहाँ पे नहीं मिलती है, और कहते हैं ना कि सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती है। जिनकी माएँ होती हैं उनको पता है कि माँ कितना मूल्यवान है, और जिनकी माँ नहीं है उनको भी पता है कि मदर्स आर रियली रियली वेरी वैल्यूएबल। और ये एहसास शायद कभी आपको मिले, टाइम मिले ना, तो सब लोगों को बैठ के यही सोचना चाहिए कि माँ हमें धरती पर लेकर आती हैं, इतनी कुर्बानी देती हैं कि इट्स अनबिलीवेबल। और जो उनकी
0: उसके पास लव नहीं होती है कहने के जितना माँ कुर्बानी देती है।
1: ये आपने एकदम सही बात कही है। तो सुनीता जी थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। एंड दो मिनट ही सही लेकिन आपने बहुत ही बड़ी बात कह दी है माँ के बारे में। तो चलिए
0: ये गाना मैं सभी माताओं के लिए मांगना चाहती हूँ, खासकर मेरी दो फूफू है माला और मानती। हाँ मेरी माँ नहीं है लेकिन उन दोनों ने माँ से बढ़कर हम लोगों को देखभाल किया है।
1: How sweet. उनको हमारा प्यार।
0: उन लोगों के माला माला सुदाम रोड से है सैजन विराज, और मेरी बड़ी फूफू है मानती कलाकृति, वो रहते हैं गुल्लक।
1: ओके
0: जी, और आपके लिए आपके मम्मी के भी लिए
1: थैंक यू सो मच,
0: गीत बजा देना।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू सुनीता जी, धन्यवाद आपको, शुभ रात्रि। तो चलिए ये थी हमारी प्यारी सी सुनीता जी ऑल द वे फ्रॉम तेहूज, एंड उन्होंने एकदम सच बात कही है कि माँ तो माँ होती हैं, माँ जैसी दुनिया में और कोई कहाँ। एंड अगर आपकी माँ आपके पास हैं तो आपके पास ज़िंदगी में सब कुछ है। और चलिए माओं के लिए ये अगला गाना खास तौर से एक छोटा सा ट्रिब्यूट, और वैसे माँ तो त्याग का प्रतीक हैं, और जितनी भी सारी माएँ हैं आप लोगों को हम बहुत ही प्यार से याद कर रहे हैं। चलिए बात करते करते एक और कॉलर का फ़ोन आ रहा है तो उनसे हम बात करेंगे ज़रूर। हेलो जी।
2: हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते,
2: प्रणाम।
1: प्रणाम जी, उर्वशी जी
2: कैसे हो?
1: बिल्कुल ठीक ठाक। देखिए आप लोगों की आवाज़ को हम बाय हार्ट पहचान चुके हैं, और मुझे लगता है कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उर्वशी जी बताइए कैसी हैं आप?
2: ठीक हूँ, ठीक हूँ।
1: और खाना खा लिया?
2: जी हाँ जी हाँ।
1: बिल्कुल ठीक बात। और चलिए आज कौन सा गाना सुनेंगी आप?
2: जिंदगी की यही रीत है।
1: ओहो, ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना है। तो चलिए ये गाना हम ज़रूर आपके लिए चलाएंगे, और आज नहीं पूछूंगी कि किसके नाम, क्योंकि आप कहेंगे मेरे नाम तो चलिए आपके नाम स्पेशली हम ये अगला गाना चलाएंगे। थैंक यू सो मच उर्वशी जी, बाय, शुभ रात्रि। तो चलिए ये थी हमारी प्यारी सी उर्वशी जी। एंड चलिए अगर आप भी हमसे बात करना चाहते हैं तो आपके फ़ोन कॉल्स का हम इंतज़ार करेंगे ऑन 4028035। अभी के लिए उन तमाम माओं के लिए जो अभी तक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और आपको टाइम मिले ना तो अपनी मम्मी को ज़रूर दो तीन स्पेशल वर्ड कह दीजिएगा, उनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए ये अगला गाना उनके नाम।
3: Evening Lounge.
4: Evening Lounge.
5: RM2.
3: Radio Musti.

0: एकदम सही बात है दोस्तों, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। वैसे कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, सो कीप ऑन ट्राइंग अंटिल यू सक्सीड। चलिए यहाँ पर हम भी कोशिश में लगे हुए हैं आपके दिलों में घर बनाने के लिए। एंड वैसे बढ़ते हैं आपके कुछ मैसेजेस की ओर। लवली गुड इवनिंग टू यू दिव्या जी, नमस्ते नमस्ते राधा जी, यू ऑल द वे फ्रॉम कनाडा कनेक्टेड विद अस, थैंक यू सो मच राधा जी। एंड आप कहती हैं कि एज यूजुअल लवली प्लेलिस्ट, इफ पॉसिबल प्लीज प्ले द सॉन्ग बरसात सॉन्ग तेरी अदाओं पे मरता हूँ, एंड दिस गाना गोज आउट फॉर ऑल योर फैमिली इन कनाडा मॉरिशस, मेरे लिए और सभी RM2 लिसनर्स के नाम, हर हर महादेव आपको भी। थैंक यू सो मच राधा जी हमारा साथ देने के लिए। एंड साथ में अगला गाना हम खास तौर से बजाएंगे टू हस्बैंड अरशद, आप उनसे कहना चाहते हैं कि नो मैटर हाउ फार यू आर, यू ऑलवेज इन माई थॉट। एंड आप कहते हैं कि दूरी बस तुमसे मिलने के लिए प्रिवेंट कर सकता है, बट नेवर अ फीलिंग आई विली मिस यू टू मच फ्रॉम वाइफ रेबेका। और आपको गाना सुनना है जब कोई बात बिगड़ जाए, तो अगर पॉसिबल हुआ तो हम ये गाना चलाने की कोशिश करेंगे। एंड यहाँ पर किसी ने हमें बहुत ही प्यार से कहा है, हेलो दी, हेलो जी, आपका मैसेज स्पेशली फॉर हबी रवि, ड्राइविंग राइट नाउ विद एवरी ब्रेथ आई टेक, आई प्रोमिस टू लव यू एंडलेसली, यू माई जान एंड आई प्रोमिस टू चेरिश यू फॉर एवर, फ्रॉम करिश। और अगला गाना खास तौर से आपने अपने पति के लिए डेडिकेट किया हुआ है, ऑफ कोर्स दैट्स अ वेरी स्पेशल लव, जहां पर आप रोज रोज अपने चाहने वाले को याद करते हैं। एंड यहां पर आप कहते हैं, हेलो वुड लाइक टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना टू मॉम प्रिया, इट्स अ बर्थडे टूडे। एंड आपको गाना सुनना है लग जा गले, अगर पॉसिबल हुआ तो चलाएंगे। तो आपकी ममा को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत सारा प्यार एंड मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। एंड यहां पर आप कहते हैं, गुड इवनिंग दिव्या जी, संगर आप फ्रांस से, इट्स रियली नाइस टू सी कि अब्रोड से कितने सारे लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कुछ लोग कनाडा से हैं, कुछ लोग फ्रांस से हैं और कुछ लोग इटली से भी हमें मैसेजेस भेजते हैं, सो थैंक यू सो मच। एंड चलिए कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे।
1: इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज,
2: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Evening Lounge.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
0: Radio Musti. शायद आपको जिंदगी में अभी तक प्यार का एहसास नहीं हुआ है या फिर आपको अपना प्यार नहीं मिला है, तो आपको बता देते हैं कि शायद दिल से यही सदा निकलती है कि बस ऐसा कोई जिंदगी में आए जो जिंदगी को जिंदगी बनाए। एंड लेट मी टेल यू कि प्यार का अलग अलग वर्जन होता है हर किसी की जिंदगी में, लेकिन प्यार का बस एक ही डेफिनेशन होता है, दैट इज लव, लव एंड ओनली लव। अगर आपको लगता है कि प्यार में दर्द होता है तो आप गलत इंसान से प्यार करते हैं।

चलिए यहाँ पर उतने ही प्यार से हम साथ दे रहे हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती टिल 9 PM जहाँ पर दिव्या का साथ है। हमारे दिल से भी बस यही आवाज़ निकल रही है कि बस आपका ही साथ हो, आपका ही प्यार मिलता रहे ताकि हम अपनी ज़िंदगी को भी ज़िंदगी बना पाए।

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: प्यार करने कर लेने के बाद दिल में और दिमाग में ये बात कभी नहीं आनी चाहिए कि मैंने क्यों प्यार किया। बस आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि जिंदगी में आपको बेइंतहा बेशुमार प्यार मिल रहा है। वेल रात्रि के 8:07 हो चुके हैं। एक बार फिर से आप सभी का वार्म वेलकम। इट्स अ ब्यूटीफुल थर्सडे इवनिंग और दिव्या साथ देने के लिए आ चुकी है एक बार फिर से ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती टिल 9 PM, जहां पर रेस्ट चल रहा है आपका इवनिंग लाउंज। एक बार फिर से बहुत ही प्यार मन में लेकर आए हैं आप लोगों से मुलाकात करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि इट विल बी फ्रूटफुल। और वैसे क्यों ना हो, आपका प्यार आपका साथ तो मिल ही रहा है ऑन 5499-1294। तो चलिए आपके मैसेजेस हम तक ऐसे ही पहुंचाते रहे ऑन 5499-1294। बात करने के लिए आपके ज़रूर फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार करेंगे ऑन 4028035। कत सौ देखा था पर हम आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार कर रहे हैं।

0: भाई देखिए इसे सेल्फिशनेस नहीं कहते हैं, इसको प्यार ही कहते हैं, जहां पर आपको प्यार मिलता रहता है लेकिन आपको लगता है कि काफ़ी नहीं है। शायद इसलिए सब लोग यही कहते हैं कि थोड़ा सा प्यार हुआ है और थोड़ा और बाकी है। 8:23 और ये जो बाकी प्यार है ना, उसको हम पूरा करने के लिए यहाँ पर खूबसूरत गाने लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। एंड चलिए यहाँ पर आप कहते हैं गुड इवनिंग रेडियो मस्ती टीम, प्लीज़ प्ले द सॉन्ग सैयारा। ये गाना तो हमने ऑलरेडी कल चला लिया था, एंड कल नहीं बल्कि आई गेस हमने इसको ट्यूसडे चलाया था। एंड दिस वन गोज आउट स्पेशली फॉर हस्बैंड अश्विन हु इज़ वर्किंग एट द मोमेंट एंड फॉर वाइफ प्रीतिशा, उनको बहुत ही याद किया जा रहा है। और आप पहले इस पे हौस पीतों से थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए। एंड चलिए यहाँ पर लाइन पर कोई हैं शायद जो हमसे बात करना चाहते हैं, और चलिए देखते हैं कौन है। हेलो जी।
1: हाय दिव्या।
0: हेलो, नमस्ते, आपका नाम?
1: आई एम गुलशन।
0: हेलो गुलशन, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: पिछे काफ़रे।
0: ओहो, आप तो हमारे जाने माने गुलशन जी हैं, कैसे हैं आप?
1: यस, आई एम गुड एंड यू?
0: बिल्कुल ठीक ठाक। सो हमें बताइए कि अभी आप जुड़े हुए हैं? सॉरी,
1: I'm at work.
0: At work, all right. और आप क्या काम करते हैं?
1: Chef.
0: हम तो पेट पूजा करने में बहुत ही बिलीव करते हैं, तो कभी भी आपको मौका मिले ना तो हमें भी थोड़ा बहुत खिला देना।
1: Sure, that's true.
0: तो बताइए गुलशन, अगला गाना किसके नाम और कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मूवी जानवर।
0: हाँ जी,
1: सॉन्ग पास बुलाती है।
0: पास बुलाती है, स्पेशली फॉर योर मदर।
1: यस।
0: ओ माय गॉड, ये बहुत ही दिल छू लेने वाला गाना है। एंड
1: दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू।
0: या तो आई जस्ट होप कि ये गाना सब लोगों को हजम हो, क्योंकि बहुत बहुत ही खूबसूरत गाना है ये। थैंक यू कि आपने इस गाने की फरमाइश की।
1: थैंक यू, बाय बाय।
0: थैंक यू सो मच गुलशन, बाय बाय। तो चलिए, दैट वाज गुलशन ऑल द वे फ्रॉम पिचराफ्रे, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल गाना। और चलिए, माँ की तारीफ में हम क्या ही बोले, माँ शब्द ही अपने आप में ही ब्रह्मांड है और इट्स अ यूनिवर्स। और वैसे कहते हैं ना कि मॉम वर्ड को जब आप उल्टा करते हैं तो इट बिकम्स वाव। सो मॉम इज़ द रिफ्लेक्शन एंड इज़ द मिरर ऑफ वाव, क्योंकि जितना उनको हम थैंक यू कहें उतना ही कम है। जैसे हम शुरुआत में कह रहे थे कि माँ त्याग का प्रतीक हैं और सब लोगों के काम में एट द एंड ऑफ द मंथ उनको तनख्वाह मिलती है, लेकिन माँ का जो फ़र्ज होता है, माँ का काम ही ऐसा है जहाँ पर उनको कोई सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी बिना कुछ कहे, बिना कुछ कंप्लेन किए हुए हंसकर मुस्कुराकर हर एक सामना, हर एक मुश्किल का सामना कर लेती हैं। एंड बिलीव मी, ये ताकत उनको अपने बच्चों से ही मिलती है। जब माँ अपने बच्चों को मुस्कुराते हुए देखती है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी पूरी दुनिया हंस रही है। जब उनके बच्चे ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो उनको लगता है कि ज़िंदगी में साथ साथ वो भी आगे बढ़ रही है। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ज़िंदगी में आप कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, कभी भी अपनी माँ का की उंगली और माँ का हाथ थामना मत भूलना। कभी भी आप इस ज़िंदगी की भाग दौड़ में कितना भी आगे क्यों ना चला जाए, एक दिन आप पीछे

0: थोड़ा सा होकर अपनी माँ की उंगली और अपनी माँ का हाथ थाम कर ही चलिएगा। एंड बिलीव मी, उनको कितना अच्छा लगेगा ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। माँ का प्यार ही ऐसा है, कितना भी रूठ जाए दो प्यारे शब्द उनको मना ही लेते हैं। शायद इसी वजह से कहते हैं कि अगर माँ त्याग का प्रतीक है तो माँ प्यार का भी प्रतीक है। तो चलिए उस प्यार को हम सलाम करते हैं एंड उन्हीं की याद में, उन्हीं के प्यार में ये अगला गाना गुज़ आउट टू ईच एंड एवरी मदर अराउंड द वर्ल्ड।
1: Evening Lounge,
2: RM2
1: Radio Musti।

0: वेल वेल 8:38 ऑलरेडी एंड चल गई यहाँ पर प्यार के बारे में हम बात करते जा रहे हैं एंड ऐसा लगता है कि वक्त थम सा गया है ना, लेकिन हम एहसास नहीं करते हैं कि रेत की तरह धीरे धीरे चुपके चुपके हाथों से फिसलता जाता है ये वक्त है। एंड आई जस्ट होप कि यू आर बीइंग एबल टू मेक इच एंड एवरी मोमेंट एंड वो प्यार से बीता हुआ लम्हा हमेशा प्यार भरा ही बन जाता है। चलिए दिव्या का साथ है ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती टिल 9 PM इन योर इवनिंग लाउंज एंड चलिए यहाँ पर आपको हम याद दिला देते हैं कि सैटरडे को यानी कि 30th May 2026 एज फ्रॉम 8 PM एट SVICC होने वाला है समथिंग वेरी स्पेशल और हम बात कर रहे हैं अबाउट मैजिकल म्यूजिकल जर्नी जो आपको मौका मिलेगा टू विटनेस ऑन सैटरडे एंड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और हम बात कर रहे हैं अबाउट द लेजेंडरी जुबिन नौटियाल के बारे में। सो ऑफकोर्स आप इस कॉन्सर्ट में एक पार्ट बनिए एंड इट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय ग्रेविटी जीरो इन कोलैबोरेशन विद ticketbox.mu एंड आप अपने टिकट्स को बुक करा सकते हैं नाउ ऑन www.ticketbox.mu एंड फॉर रिजर्वेशंस यू कैन कॉल द हॉटलाइन 214-6464। तो वंस अगेन आपको याद दिला देते हैं आपको मौका मिल रहा है टू असिस्ट द कॉन्सर्ट ऑन 30th May 2026 एट SVICC
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: वैसे प्यार में बहुत सारे ऐसे हालात आ जाते हैं जहाँ पर आप खुद से सवाल करते हैं कि दिल को लगाया क्यों जब ये दिल तोड़ना ही था। कुछ लोग बाद में प्यार में बहुत सारे सवाल करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि प्यार एक जवाब है या फिर खुद एक सवाल है। जो भी हो, प्यार प्यार है और इस प्यार के एहसास से कोई बच नहीं सकता है। अभी दिल थोड़ा मजबूर हो जाता है जब उसको थोड़ा और भी प्यार हो जाता है। एंड कितना खूबसूरत सिचुएशन होता है जहाँ पर आप किसी से प्यार करते हैं और आपका ये प्यार और भी ऐड होता है, मल्टीप्लाई होता है और ये प्यार आपको बदले में दुगना मिलता है। तो हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा आपको प्यार मिलता रहे। वैसे आपने सुना ही होगा कि हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी में। ये एकदम सच बात है। जब प्यार नहीं होता है ज़िंदगी में, तभी प्यार का एहसास होता है, प्यार की कीमत हम जान पाते हैं, पहचान पाते हैं। सो आई जस्ट होप कि आपसे आपका प्यार कभी ना रूठे और आपका आपसे आपका प्यार कभी ना छूटे। वेल चलिए, इट्स ऑलरेडी 8:54 एंड इसी के साथ इट्स अ टाइम फॉर मी टू से गुड बाई टू ऑल ऑफ यू। और जाते जाते ये अगला गाना खास तौर से हम डेडिकेट करेंगे टू समवन स्पेशल जो इस वक्त कनेक्टेड है हमारे साथ। वैसे उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा बस ये गाना ऐसे ही चला देना किसी खास के लिए, तो ये गाना हम ज़रूर चलाएंगे उनके नाम। एंड ऑल्सो वी हैव टीना जी जो कनेक्टेड है हमारे साथ, कहती हैं कि आज डार्लिंग हैंडसम बेटा जिनका बर्थडे है आज, उनको बहुत सारा प्यार भेज रही हैं। तो लोड्स ऑफ लव किसेस, हग्स एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम मामा पापा, छोटा भाई है, उनको बहुत बहुत सारा प्यार और हमारी टीम की तरफ से उनको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड इसी के साथ हमारे जाने का टाइम आ गया है, तो कल हमारी और आपकी मुलाकात होगी इसी टाइम लेकिन एक अलग ही मूड के साथ। सो तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाजत, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, शुभ रात्रि, शब खैर।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज, RM2
1: रेडियो मस्ती।

वैसे जाते जाते ये तो जरूर हम कहना चाहते हैं कि कभी कभी प्यार में बस एक पल काफी हो जाता है और कभी कभी जिंदगी काफी नहीं होती है।

की रात है, ऊपर से सर्दी भी है और आपका भी साथ मिल रहा है। हेलो माय डियर लिसनर्स, विशिंग यू ऑल अ लवली इवनिंग। प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम। वंस अगेन नीतू आपके साथ इस तीन घंटों के सुरेले सफर लेट नाइट ग्रूव्स में। व्हाटएवर यू माइट बी, रियली होप आपका दिन अच्छे से गुजरा होगा, आपने बिताया होगा अपनों के साथ, दोस्तों के साथ। थोड़ा सा वक्त हमारे संग हो जाइएगा हमारे हम सफर बनते हुए। सो व्हाटएवर यू माइट बी, रात्रि के 12 बजे तक इट्स योर लेट नाइट ग्रूव्स।

सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेर की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों

वैसे हमेशा प्यार मोहब्बत की बात करते रहते हैं. What is love? वैसे प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं होता, बल्कि जिंदगी को खूबसूरत बनाने वाली एक मीठी सी रोशनी होती है. जब किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाती है तो उसकी हर बात दिल को सुकून दे जाती है. उसकी मुस्कान में खुशी और उसकी आवाज में अपनापन महसूस होता है. इश्क वो जज्बा है जो दो दिलों को बिना किसी शर्त के एक दूसरे से जोड़ देता है.

वैसे मोहब्बत में कभी लफ्जों की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि आंखें ही दिल की बात बयां कर जाती है। किसी खास इंसान का साथ जिंदगी के हर पल को हंसी बना देता है। प्यार वो एहसास है जो उदासी में भी मुस्कान ला देता है और तन्हा रातों को भी रोशन कर देता है।

0: मैं तो नहीं।
1: लवली म्यूजिक, लवली गानियां ऑन रेडियो मस्ती, थैंक यू सो मच। वैसे इश्क में एक अजीब सी कशिश होती है, ये तो आप भी मानते होंगे। इंसान जितना दूर जाना चाहे, दिल जो होता है ना, वो उतना ही उसके करीब जाना चाहता है। मोहब्बत का रिश्ता दिल से जुड़ा होता है, दैट्स व्हाई उसमें ना दूरियां मायने रखती हैं और ना ही वक्त की पाबंदियां।

सच्चा प्यार सच्चा प्यार वो ही होता है जहाँ एक दूसरे की खुशी अपनी खुशी से ज्यादा जरूरी लगती है। मोहब्बत सिर्फ पास रहने का नाम नहीं बल्कि हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाना होता है, चाहे दुख हो गम हो किसी भी सिचुएशन में। एंड इश्क में वफादारी और भरोसा सबसे खूबसूरत एहसास होती है।

0: ऑल राइट इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टरका
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी
1: है।
0: भी तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
0: वाओ,
1: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
0: नॉट लिसनिंग
1: टू यू। कुछ दिन में नजरें इनकी इधर उधर मंडरा,
0: नॉट लिसनिंग टू यू।
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: ओके, आई एम नॉट विद हर।
1: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके, दैट्स इट।

वैसे जब किसी से मोहब्बत हो जाए ना तो उसकी छोटी छोटी बातें दिल को भी छू जाती हैं। उसका नाम सुनते ही चेहरे पर एक स्माइल, एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि इश्क जिंदगी का वो हंसी गीत है जो दिल को हर पल गुनगुनाने पर मजबूर कर देता है।

होता है कभी खुशी कभी गम, that's true, दर्द भी मिलता है, लेकिन सच्ची मोहब्बत कभी नफरत नहीं सिखाती। जो दिल से प्यार करता है वो हमेशा सामने वाले की इज्जत और खुशी का ख्याल रखता है। मोहब्बत इंसान को और भी ज्यादा समझदार और गहरा बना देती है।

थैंक यू सो मच वंस अगेन हमारे हम सफर बनने के लिए इन योर लेट नाइट ग्रूव्स विद नीतू. वैसे इश्क का एहसास बारिश की बूंदों की तरह होती है, ठंडा, सुकून भरा और दिल को भिगा देने वाला. जब कोई बात बिगड़ जाए या फिर जब कोई अपना साथ हो तो जिंदगी की हर मुश्किल आसान लगने लगती है. मोहब्बत में दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है.

You love someone? उसे आप क्या कहते हो? क्या मोहब्बत में सिर्फ I love you कहना ही जरूरी होता है? No. बल्कि सामने वाले की फीलिंग्स को समझना और उसका साथ निभाना भी ये सबसे जरूरी होता है. जैसे कि हमने कहा, खुशी हो, गम हो, अप्स एंड डाउन्स हो, अपने प्यार को कभी अकेला मत छोड़ना. प्यार वो रिश्ता है जहाँ दो दिल एक दूसरे की खामोशी भी समझ जाते हैं.

इश्क में कभी ईगो की जगह नहीं होती है दोस्त, बस अपने ईगो को बाजू में रखिए, क्योंकि जहां सच्चा प्यार होता है वहां माफी और समझदारी अपने आप ही आ जाती है। मोहब्बत दिलों को जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं, समझ गए?

किसी की यादों में खो जाना भी मोहब्बत का एक खूबसूरत हिस्सा होता है। कभी उसकी बातें याद आती हैं, तो कभी उसकी मुस्कान। प्यार वो खुशबू है जो दूर रहकर भी दिल में महकती रहती है।

वाह, देखते ही देखते लास्ट आवर में आ पहुंचे हैं इस लेट नाइट ग्रूव्स में और मोहब्बत की बात चल पड़ी है, देन शेयरिंग लव एंड हैप्पीनेस आपके साथ इन गानों के जरिए। सो मोहब्बत का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, ये तो आप ही मानोगे। इसमें भरोसा और सच्चाई बहुत जरूरी होती है। एक छोटी सी गलत फहमी भी दिल को दुखा सकती है, इसलिए प्यार में हमेशा दिल से बात करनी चाहिए।

लोग इंसान होते हैं, माटी के पुतले हैं, मोहब्बत क्या चीज है, पत्थर क्या है, वो भी पिघल जाता है। तो इश्क जो है इंसान को बदल देता है। जो लोग सिर्फ खुद के बारे में सोचते थे, वो भी किसी और की खुशी के लिए जीना सीखे जाते हैं, क्योंकि मोहब्बत दिल का सुकून है एतबार। मोहब्बत दिल को और भी ज्यादा प्यारा और नरम बना देती है।

प्यार का सबसे खूबसूरत एहसास तब बनता है जब कोई बिना कहे आपकी फीलिंग्स समझ ले। सिर्फ एक नजर या एक मुस्कान ही दिल को खुश कर देती है। मोहब्बत में छोटी छोटी बातें, ये भी बहुत खास लगती है। इश्क में जीना, इश्क में मरना, इश्क में फना हो जाना, प्यार करने वाले बखूबी इन लाइंस को जानते हैं। लेकिन मोहब्बत जो है इश्क में, इंतजार का फल मीठा होता है। किसी खास इंसान के मैसेज या मुलाकात के इंतजार दिल को एक अजीब सी खुशी देता है। मोहब्बत जिंदगी की वो मिठास है जो हर पल यादगार बना देती है।

मोहब्बत की बात करते करते कब वक्त निकल गया पता भी नहीं चला। चलते चलते बस यही कहना चाहेंगे कि सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। वक्त बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन दिल में बसा प्यार हमेशा जिंदा रहता है। इश्क एक ऐसी रोशनी है जो अंधेरों में भी उम्मीद और खुशी का एहसास दिलाती रहती है। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, सोने जा रहे हैं, गुड नाइट, मुलाकात फिर होगी, टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: चलते

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: वेलकम टू RM2।
1: आता है मुझको प्यार में जल जाना।
2: इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक।
3: चेक दिस आउट।
2: रेडियो मस्ती। Radio Musti, feel the musti.
4: Nimura, nimura, nimura.
3: Check this out.
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
0: RM2 रेडियो मस्ती,
2: हिट म्यूजिक ओनली।
3: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: वेलकम टू RM2।
1: आता है मुझको प्यार में जल जाना।
2: इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक।
3: चेक दिस आउट।
2: रेडियो मस्ती। Radio Musti, feel the musti.
4: Nimura, nimura, nimura.
3: Check this out.
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते